एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 की बैशाख माह की 20वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 10 मई 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। उड़ीसा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। विचार बिंदु में आइए सुनते हैं ममता विषय पर आज के विचार।
2: ममता जीव का दैवी गुण है जो सीधे और सपाट रूप से अपनेपन का बोध कराती है। शब्द का यथार्थ बोध मन की भावना स्वहित, स्वार्थ, प्यार, मोह, स्नेह आदि के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन अपनेपन की सार्थकता ये है कि इसमें प्रेम की अजस्र धारा प्रवाहित होती है, जिसमें ममता प्रदर्शित करने वाला भी डूबता है और जिसके प्रति ममता प्रदर्शित की जाती है वो भी उस प्रेम की धारा में डूब जाता है। ये एक ऐसी मूल प्रवृत्ति है जो प्रत्येक प्राणी में सुप्तावस्था में विद्यमान रहती है, लेकिन जिसका हृदय सरल, तरल और कोमल होता है, जिसके हृदय में बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करने की क्षमता होती है, जिसके हृदय में अपनेपन के बोध का आधिक्य होता है, उसके मन में ममता सदैव जागृत रहती है। इसके विपरीत संवेदना शून्य क्रूर कर्मियों के मन में ममता सुप्तावस्था में पड़ी रहती है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों की सोई हुई ममता जब जागती है तो अंगुलिमाल जैसा कठोर प्रवृत्ति का व्यक्ति भी सन्यासी बन जाता है। ममता दो रूपों में परिलक्षित होती है, व्यक्तिनिष्ठ और समष्टिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ ममता की सीमा संकुचित होती है, जहां व्यक्ति ममता का प्रदर्शन केवल अपने प्रियजनों के प्रति ही करता है वो व्यक्तिनिष्ठ ममता कहलाती है। व्यक्तिनिष्ठ ममता को मोह भी कहा जाता है। स्वार्थ पूरित ऐसी ममता का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ऐसी ममता तो पशु पक्षी सभी में विद्यमान होती है। महत्वपूर्ण है समष्टिनिष्ठ ममता। ममता जब सीमा के बंधन को तोड़कर व्यापक रूप ग्रहण कर लेती है, ममता प्रदर्शित करने वाला संसार के सभी प्राणियों को प्रेम के बंधन में बांधकर अपना लेता है। संसार के किसी भी पीड़ित व्यक्ति के प्रति जब उसके हृदय में करुणा का बोध होता है और उसे दूर करने का जब वो मानसिक या शारीरिक प्रयास करता है, तो वहीं समष्टिनिष्ठ ममता प्रदर्शित होती है। इसी व्यापक ममत्व के वशीभूत होकर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने राज्य पत्नी पुत्र का त्याग कर संन्यास ग्रहण किया। स्वामी विवेकानंद ने दरिद्र नारायण की सेवा का व्रत लिया। मदर टेरेसा संपूर्ण विश्व की मां बन गईं और संपूर्ण विश्व को अपनी ममता के आंचल में समेट लिया। यही ममता का वास्तविक रूप है। जब किसी पीड़ित या दुखी व्यक्ति को देखकर यदि दर्शक के हृदय में पीड़ा की ऐसी सहानुभूति उमड़े कि दर्शक के आंखों में आंसू की अविरल धारा प्रवाहित हो उठे, तो वही सच्ची ममता होती है। बुद्ध, विवेकानंद और मदर टेरेसा के साथ ऐसा ही हुआ था। ममता हृदय को जोड़ती, करुणा को जन्म देती है। इसका सीधा संबंध हृदय से होता है। ये बुद्धि और तर्क से परे है। इसका समष्टि रूप ही विश्व में विश्व बंधुत्व और अपनापन ला सकता है, जो विश्व कल्याण के लिए आवश्यक है।
1: विचार बिंदु में अभी आपने सुने ममता विषय पर आज के विचार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

महाबली बजरंग बली की भक्ति का अर्थ है अपने भीतर के भय को समाप्त करना और आत्मबल को जगाना। जो व्यक्ति हनुमान जी के चरणों में शरण लेता है वो न केवल कष्टों से मुक्त होता है बल्कि उसके भीतर सेवा, संयम और अनुशासन जैसे दिव्य गुणों का विकास होता है। तो आइए बजरंग बली की वंदना के साथ आज की आराधना का शुभारंभ करते हैं और सुनते हैं शर्मा बंधु के स्वर में ये भक्ति वंदन।

बांके बिहारी की मोहक और दिव्य छवि को देखकर हमारा ये मन प्रसन्नता से भर जाता है। श्याम वर्ण मोर मुकुट पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण की मधुर मुरली की धुन सुनने से मन को शांति और आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है और हम उस दिव्य परमात्मा की ओर खींचे चले जाते हैं। इसी आनंद और सुख की अनुभूति प्रदान करता ये भजन आइए सुनते हैं किशोरी अमोनकर की स्वर में।

श्रोताओं, असली भक्ति तब शुरू होती है जब इंसान अपना अहंकार त्याग कर स्वयं को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। जब हम अपनी चिंताएं भगवान को सौंप देते हैं और अपने जीवन रूपी इस नाव की पतवार को प्रभु को अर्पित कर देते हैं, तो हम निर्भय और शांत हो जाते हैं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि जो भी होगा वो ईश्वर की कृपा से ही होगा। तो आइए हम भी इस जीवन की डोर को प्रभु को सौंपते हैं और सुनते हैं उषा मंगेशकर के स्वर में ये भक्ति वंदन।

भगवान श्री कृष्ण दया और कृपा के सागर हैं। उनका स्वरूप और उनकी लीलाएं अत्यंत सुखदाई हैं। वे दया के ऐसे तालाब हैं जिसमें स्नान करने मात्र से ही जीवात्मा के सभी दुख और पाप धुल जाते हैं। इस माया रूपी संसार में श्री हरि ही हमारे सच्चे रक्षक और मार्गदर्शक हैं, जो हमें सदैव प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो आइए प्रभु के नाम का गुणगान करते हैं और सुनते हैं उदित नारायण के स्वर में ये भजन।

ईश्वर के प्रति भक्ति हमें एक बेहतरीन इंसान बनाती है। प्रभु की भक्ति हमारे भीतर क्षमा, धैर्य, संतोष और करुणा जैसे गुणों को विकसित करती है। अंततः भक्ति का लक्ष्य ईश्वर को कहीं बाहर ढूंढना नहीं, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को मिटाकर उस परम प्रकाश का अनुभव करना है। तो आइए ईश्वर भक्ति में स्वयं को समर्पित करते हैं और सुनते हैं।

संतोष और करुणा जैसे गुणों को विकसित करती है। अंततः भक्ति का लक्ष्य ईश्वर को कहीं बाहर ढूंढना नहीं, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को मिटाकर उस परम प्रकाश का अनुभव करना है। तो आइए ईश्वर भक्ति में स्वयं को समर्पित करते हैं और सुनते हैं अनुपमा देशपांडे की गाई ये भक्ति रचना।

आप सभी का आज का दिन सुखद और मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज की बात। आज 10 मई है। आइए जानते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन किन महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण दर्ज है। आज की बात कार्यक्रम के साथ हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त शोभा पांडे। आप सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज दुनिया भर में मातृ दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर वर्ष मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अन्ना जर्विस ने अपनी मां को श्रद्धांजलि देने के लिए वर्ष 1908 में की थी। ये दिन मां के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है और ये दिवस हमें अपनी माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनके अनमोल योगदान को याद करने का अवसर प्रदान करता है। श्रोतों, 10 मई का दिन भारत और विश्व के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है, जो मुख्य रूप से 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत के लिए जाना जाता है। इस दिन मेरठ में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी सेना के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था, जो 1857 की क्रांति का आगाज था। इस विद्रोह का नेतृत्व अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने किया था। वहीं नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे सहित कई वीर इसमें शामिल हुए थे। श्रोताओं, विश्व ल्यूपस दिवस हर वर्ष 10 मई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य ऑटोइम्यून बीमारी ल्यूपस के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। ये एक दीर्घकालिक स्वप्रतिरक्षित रोग है, जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही स्वस्थ ऊतकों और अंगों पर प्रभाव डालती है, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों में सूजन और क्षति हो जाती है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य इस गंभीर ऑटोइम्यून बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इसके लक्षणों को समझना और इससे प्रभावित लोगों के जीवन में सुधार लाना है। श्रोताओं, आज ही के दिन 10 मई वर्ष 1503 को क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा कैमेन द्वीप समूह की खोज की गई थी। कोलंबस ने अपनी चौथी और अंतिम वेस्ट इंडीज यात्रा के दौरान इन द्वीपों को देखा था। विलारी शमन्ना केसवन की आज जयंती है। वे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष थे। उन्हें भारतीय ग्रंथ सूची के जनक के रूप में भी जाना जाता है। 10 मई 1909 को चेन्नई में जन्मे बी.एस. केसवन के नेतृत्व में 15 अगस्त 1958 को पहली राष्ट्रीय ग्रंथ

सूची प्रकाशित की गई थी। वे 1947 से 1962 तक भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रमुख रहे और 1963 से 1969 तक नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र के पहले निदेशक बने। उन्हें 1960 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 16 फरवरी 2000 को उनका निधन हो गया। श्रोताओं, 20वीं सदी के भारत के उर्दू कवि, गीतकार और लेखक कैफी आजमी की आज पुण्यतिथि है। उनका जन्म 14 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका वास्तविक नाम अतहर हुसैन रिजवी था। वे अपनी शायरी में सामाजिक बदलाव, महिलाओं के अधिकार और मानवीय भावनाओं को खूबसूरती से पिरोने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हीर रांझा, पाकीज़ा, कागज़ के फूल जैसी कई कालजयी फिल्मों के लिए गीत और संवाद लिखे। साथ ही उनके प्रमुख कविता संग्रहों में झनकार, आखिर शब और आवारा सजते शामिल हैं। 10 मई 2002 को वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। श्रोताओं, ये थी आज की बात। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं मातृ दिवस पर। आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को शोभा पांडे का प्यार भरा नमस्कार। ममता की मूरत संघर्ष की कहानी है, माँ खुदा की दी हुई सबसे अनमोल निशानी है। तपती धूप में वो ठंडी छांव बन जाती है, हर मुश्किल राह में वो उम्मीद बन जाती है। थक कर जब भी हारूं वो हौसला बढ़ाती है, लोरी गाकर रातों में वो मीठी नींद सुलाती है। बिन बोले जो सब समझ ले वो ही तो भगवान है, माँ के चरणों में ही बसता ये सारा जहान है। श्रोतो, माँ की केवल एक शब्द ही नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास की पूरी कायनात है। दुनिया के हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है, लेकिन माँ का रिश्ता सबसे पवित्र माना गया है। इसी निस्वार्थ प्रेम के सम्मान में हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे यानी मातृ दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उस महिला के प्रति आभार व्यक्त करना है जिसने हमें ये जीवन दिया है। एक माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी पूरी दुनिया न्योछावर कर देती है। वो हमारी पहली शिक्षिका, पहली मित्र और मार्गदर्शक होती है। मातृ दिवस के आधुनिक स्वरूप की शुरुआत के पीछे एक दिलचस्प और भावुक कर देने वाला इतिहास है। इस दिन की शुरुआत का श्रेय अमेरिका की अन्ना जार्विस को जाता है। अन्ना अपनी माँ एन रीव्स जार्विस से बेहद प्रेम करती थी। उनकी माँ का सपना था कि एक ऐसा दिन हो जो माताओं की निस्वार्थ सेवा और त्याग को समर्पित हो। वर्ष 1905 में अपनी माँ के निधन के बाद अन्ना ने इस सपने को पूरा करने के लिए एक लंबा अभियान चलाया। उन्होंने 10 मई 1908 में वेस्ट वर्जीनिया के ग्राफ्टन में अपनी माँ की याद में एक स्मारक सभा आयोजित की, जिसे आधिकारिक तौर पर पहला मदर्स डे समारोह माना जाता है। अन्ना जार्विस के प्रयासों के बाद ये दिन धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा। अंततः वर्ष 1914 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने एक कानून पारित किया, जिसमें घोषित किया गया कि हर वर्ष मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे के रूप में मनाया जाएगा। आज ये दिन पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। माँ शब्द सिर्फ एक शब्द ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण ब्रह्मांड है। माँ वो धुरी है जिस

के चारों ओर पूरा परिवार घूमता है। कहा जाता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। माँ हमारे जीवन की पहली गुरु होती है। वे हमें बोलना, चलना और दुनिया का सामना करना सिखाती है और हमें केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं देती बल्कि अच्छे संस्कार, ईमानदारी और मानवता का पाठ भी पढ़ाती है। जब भी हम जीवन की मुश्किलों में हार मानने लगते हैं तो माँ का एक हौसला हमें फिर से जीतने की शक्ति देता है। माँ के महत्व को शब्दों में पिरोना असंभव है। वे कोमलता में फूल की तरह हैं और रक्षा करने में चट्टान की तरह। आज के भागदौड़ भरे जीवन में हम अक्सर अपनी माँ को समय देना भूल जाते हैं। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए और उन्हें ये महसूस कराना चाहिए कि वे हमारे लिए कितनी खास हैं। मातृ दिवस तभी सार्थक है जब हम माँ का सम्मान न केवल एक दिन बल्कि वर्ष के 365 दिन करें। श्रोताओं, आज के विविधा कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: क्रांतिरे ह्यः नूतन सर्वकार रचनाये टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तत्पार्श्वे विंशत्युत्तर शत विधायकानां समर्थनं वर्तते। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनायाः 25वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य मध्यप्रदेशे सीहोर जनपदस्य भैरुंता स्थले अद्य रजत जयंती समारोहः आयोजयिष्यते। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारतीय अर्थ विभागेन आगामिषु द्वित्रेषु दिवसेषु केरल लक्षद्वीप दक्षिण कर्नाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु प्रचंड वृष्टेः संभावना प्रकाशिता। प्रिया श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडा वार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रो जयपुरे आयोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 77 धावनांकैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य राजस्थान रॉयल्स दलं क्षेत्र रक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स दलेन 30-200 धावनांकानां विजय लक्ष्यं स्थापितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेलूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तमिलनाडु में तमिल गवित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठोस नींव बताया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए

0: दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत के गिरमिटिया श्रमिक पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विवरण हमारे केंद्र से आज दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। आज रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम, रात्रि 10:00 रविवासरीय संगीत सभा में विद्वान श्री डी श्रीनिवास का कर्नाटक वीणा वादन, ये दोनों कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। अब से कुछ देर बाद 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस कांड पाठ का भाग 89। बच्चे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बालवाटिका सुनते हैं प्रातः 8:30 पर, जिसमें आज चर्चा के विषय रहेंगे मातृ दिवस पर विशेष 10 मई, मातृ दिवस पर बच्चों की विशेष प्रस्तुति, जीवन की सीख देती प्यारी माँ, माँ को समर्पित एक दिन और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। दोपहर 12:30 पर महिलाएं सुनती हैं अपना कार्यक्रम घर संसार, जिसमें चर्चा की जाएगी घटता जलस्तर बढ़ती चिंता विषय पर। दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे रूपक टैगोर विश्व कवि विश्व मानव विषय पर, प्रस्तुत करता होंगे डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। खेती की बातों का समय रहेगा दोपहर 2:30 पर, जिसमें वार्ता का विषय रहेगा स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न मक्का की वैज्ञानिक खेती। वार्ताकार होंगे डॉक्टर G.S. बिस्ट। युवा श्रोता अपना कार्यक्रम युववाणी सुनते हैं संध्या 5:15 पर, जिसमें आज की बात होगी अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़े विषय पर। 5:45 पर उत्तरायण में कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोकगीतों के फरमाइशी कार्यक्रम बुराश के अंतर्गत चर्चा का विषय रहेगा जल संरक्षण, स्वच्छता एवं पर्यावरणीय प्रबंध क्यों जरूरी। शाम 7:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक संगीत। प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि का समय रहेगा संध्या 7:15 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे धान की सीधी बुआई तकनीक की उपयोगिता पर जानकारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर R.P. मीणा, संचालन करेंगे श्री मनोज भट्ट। भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 6:41 पर। शास्त्रीय संगीत का समय रहेगा दोपहर 11:30 पर। लोकगीत आप सुनते हैं प्रातः 7:30 पर लोकमंजरी में, दोपहर 2:00 उत्तराखंड के लोकगीत में, शाम 5:05 पर शैलस्वर के तहत। सुगम संगीत आपको सुनवाएंगे प्रातः 10:05 पर, दोपहर 1:15 पर, रात्रि 8:00 और रात्रि 9:30 पर सुगम संगीत के तहत। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए प्रातः 9:05 पर गीत निरीक्षण में, सुबह 11:00 सैनिकों के लिए, 12 बजे मेरी पसंद में, दोपहर 2:45 पर

देखी फनकार में अपराह्न 3 बजे सदाबहार फिल्मी गीत में, शाम 7:40 पर और 9:15 पर इंद्रधनुष के तहत। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान पाठ का भाग 89।

राजा जनक की यज्ञशाला में सीता को वरण करने के लिए आए नृप समुदाय ने श्री राम तथा लक्ष्मण को अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार देखा। कुछ को वो वीर रस की प्रतिमूर्ति दिखे तो कुछ ने उन्हें अपने काल के रूप में देखा। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। इसी प्रकार स्त्रियां भी हर्षित होकर दोनों भाइयों को अपनी मन भावन छवि में देख रही हैं। उनके लिए मानो स्वयं श्रृंगार रस मानव का अनुपम रूप धारण कर वहां पहुंच गया है। विद्वानों को प्रभु का विराट रूप दिखा और जनक जी के सगे संबंधियों ने उन्हें अपने कुटुंब के रूप में देखा। रानियों को वो अपने बालक प्रतीत हो रहे हैं तो योगी यति उनमें शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन हुए, किंतु सीता जी जिस भाव से श्री राम को देख रही हैं उसके सुख और स्नेह का वर्णन करना कठिन है। ना तो वो स्वयं उसे व्यक्त कर सकती हैं, ना ही कवि उसके लिए सक्षम है।

श्री रामचरित मानस गान पाठ की संगीतमय प्रस्तुति अभी आपने सुनी। गायिका थी रंजना जोगलेकर और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:20 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गीता नेगी। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पौड़ी के लेंसडाउन में पूर्व सैनिक पर्यावरण उद्यान का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 256 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने लेंसडाउन में रिक्रिएशन सेंटर के निर्माण के लिए 14,90,000 रुपए की प्रथम किश्त जारी की। और केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा, सरकार ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पौड़ी के लेंसडाउन में पूर्व सैनिकों और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित पूर्व सैनिक पर्यावरण उद्यान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इस प्रकार की पहल से पर्यावरण संरक्षण को गति मिलेगी।
1: के अंदर में हमारे रेजिमेंटल सेंटर ने एक बहुत सुंदर कार्य किया है। पर्यावरण के विषय के ऊपर में एक पूर्व सेनानी पर्यावरण पुनर्वास किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कदम है आने वाले समय पे हमारा जो वाटर टेबल है उसको ऊपर लेके आए। बड़ी बात ये है कि हम सबको एक सोल्जर की तरह, एक वॉरियर की तरह क्लाइमेट, वेदर, पर्यावरण के चैलेंजेस की तरफ जागना पड़ेगा और पूरे दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए एक सबक देना पड़ेगा। और हमारे गढ़वाल राइफल सेंटर ने ये बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, क्योंकि पहले जो पानी आता था वो निकल जाता था, अभी ये एक्चुअली वाटर हार्वेस्ट होगा, उसको ठीक से रखेंगे, वाटर टेबल ऊपर आएगा। और मुझे बहुत खुशी है कि इसको एक उद्यान की तरह बना दिया है।
0: उद्यान भ्रमण के दौरान राज्यपाल ने आर्मी पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं और स्थानीय नागरिकों से आत्मीय संवाद भी किया। बच्चों ने राज्यपाल का उत्साहपूर्वक स्वागत किया, जिस पर उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन, शिक्षा और राष्ट्र सेवा के मूल्यों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस बीच राज्यपाल ने ऑल वुमेन कैफे का भ्रमण किया और स्थानीय महिलाओं द्वारा तैयार पहाड़ी व पारंपरिक उत्पादों का अवलोकन किया। राज्यपाल ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार आधारित गतिविधियां महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं और कुंभ मेला 2027 से संबंधित प्रमुख परियोजनाओं के लिए 256 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। सरकार ने राज्य आपदा मोचन विधि के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की अवशेष धनराशि से प्रत्येक जिले को राहत और बचाव मद में 3 करोड़ रुपए, पुनर्प्राप्ति

0: तथा पुनर्निर्माण मद में 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। कुंभ मेला 2027 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 58 से औद्योगिक क्षेत्र तक 4 लेन मार्ग के नवीनीकरण के लिए 2,72,00,000 रुपए की भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने रुड़की नगर निगम क्षेत्र में सुनहरा मार्ग चौराहे का नाम शहीद चौक रखे जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने चमोली के औली में आयोजित सैनिक सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान प्रतिकूल परिस्थितियों में भी राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। औली स्थित माउंटेनियरिंग और स्कीइंग संस्थान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये संस्थान पर्वतारोहण, स्कीइंग, राफ्टिंग और पर्वतीय युद्ध कौशल के क्षेत्र में देश को उत्कृष्ट प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध करा रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
0: गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन स्थित गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर में रिक्रिएशन सेंटर के निर्माण के लिए सांसद निधि से 14,90,000 रुपए की पहली किश्त जारी की है। श्री बलूनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह केंद्र सेना के जवानों के मानसिक और शारीरिक उत्साहवर्धन, मनोरंजन तथा सकारात्मक वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सांसद ने कहा कि देश की सेवा में समर्पित वीर सैनिकों के कल्याण के लिए उनके प्रयास और संकल्प निरंतर जारी रहेंगे। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ स्थित अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती नौटियाल ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। विद्यालयों में आधुनिक संसाधन और बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से छात्र छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा और उनका भविष्य अधिक सशक्त बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नई योजनाओं के माध्यम से विद्यालयों को विकसित करने का कार्य कर रही है। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। अब तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से ऑफलाइन पंजीकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। देश के विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने हरिद्वार और ऋषिकेश में बनाए गए पंजीकरण केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं के लिए सरकार और हरिद्वार जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया है।
2: मेरा नाम विजय भाई नटवरवे पटेल, मैं गुजरात का भरूच जिला से हूँ और हम चार धाम यात्रा के लिए निकलने वाले हैं। इसलिए हमने यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया और रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा जो स्वास्थ्य परीक्षण करना था वो भी करवाया और राज्य सरकार तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री साहब की तरफ से जो भी व्यवस्था की गई है वो सब में हमको बहुत सरलता और बहुत अच्छी तरह से स्टाफ यहाँ के जो लोग हैं उसका भी सहकार बहुत अच्छा मिला है।
3: सीमाबेन जय पटेल से लग रहे हैं तो चार धाम की यात्रा करने के लिए आए हैं और यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, हमको बहुत मजा आया और जल्दी से हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। राज्य सरकार का खूब खूब धन्यवाद है, खूब खूब धन्यवाद है कि बहुत सारी सारी व्यवस्था की है यहाँ।
4: हम यहाँ पे चार धाम यात्रा के लिए आए हैं उत्तराखंड में, यहाँ हरिद्वार में हमने यहाँ रजिस्ट्रेशन करने आए हैं तो यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है उसका धन्यवाद करते हैं।
5: मैं अशोक भाई पटेल गुजरात से भरूच जिले से हूँ और उत्तराखंड चार धाम यात्रा के जा रहे हैं, हरिद्वार में आए हैं और यहाँ जो सरकार राज्य सरकार जो अच्छी जो व्यवस्था है एकदम बढ़िया है।
0: देहरादून जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के कुल 9,080 मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सीमा डुंगराकोटी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालतें त्वरित, सरल और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से आपसी सहमति, सौहार्द और संवाद की भावना को बढ़ावा मिलता है जिससे समाज में शांति और सामंजस्य स्थापित होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क

0: योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर आज मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंडा में राजा जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार को आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला लिखता है, बंगाल में अब शुभेंदु सरकार। इस खबर पर दैनिक जागरण का शीर्षक है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन पर हिंदुस्तान लिखता है, तमिलनाडु में विजय की ताजपोशी आज। नवोदय टाइम्स की सुर्खी, रेड के बाद पंजाब के निकाय मंत्री संजीव अरोड़ा ईडी द्वारा गिरफ्तार। प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान पर दैनिक जागरण लिखता है, कल से पहाड़ों में भारी बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पौड़ी के लेंसडाउन में पूर्व सैनिक कल्याण उद्यान का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 256 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने लेंसडाउन में रिक्रिएशन सेंटर के निर्माण के लिए 14,90,000 रुपए की प्रथम किश्त जारी की। और केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा, सरकार ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं संत राम और आनंदी देवी का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं संतराम और आनंदी देवी की गाई ये छपेली।

लोक मंजरी कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं संत राम और आनंदी देवी के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी। कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए संत राम और आनंदी देवी की गाई ये छपेली।

0: गिरीश सिंह बरगली के गाए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ हमारा आज का कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मंकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
1: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डो जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को

0: आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
1: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरपू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस, वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
2: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
6: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेती हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H1B

0: H1B1, E3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
2: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी, ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।

0: Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to visit Karnataka and Telangana today to launch multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Centre operationalizes 4 labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration test of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under 15 and Under 17 Championships in Tashkent. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल वाटिका।
2: जय हिंद बच्चों।
3: जय हिंद।
2: रविवार की सुबह है आई, संग में प्यारी न्यारी माँ को समर्पित मातृ दिवस का शुभ अवसर भी साथ है लाई। यूँ तो हर दिन माँ के होने से खास हो जाता है ना, पर आज बाल वाटिका लाया है प्यारी माँ के सम्मान में मातृ दिवस विशेषांक। तो चलिए शुरू करें आज की बाल वाटिका कुछ ऐसे।

प्यारे बच्चों, आज की बाल वाटिका में मैं आपकी दीदी मेघा रावत करती हूँ आप सभी का स्वागत सत्कार, और कीजिए स्वीकार मेरा स्नेह भरा नमस्कार।

0: समा।
1: क्या बोलूं माँ तेरे बारे में, मेरी तो शब्द कोशिका ही कम पड़ जाए जब जिक्र तेरा किया जाए। हाँ तो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, माँ एक शब्द नहीं पूरी दुनिया है ना। और माँ का चंद शब्दों में बखान हो पाना तो मुमकिन ही नहीं है, है ना। माँ जीवन का पहला शब्द है जिससे जीवन का आरंभ होता है। तभी तो कहते हैं ईश्वर हमारे साथ हमेशा नहीं रहते हैं, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया। और माँ के महत्व, स्नेह, बलिदान, उसके त्याग को सम्मानित करने के लिए हर साल मई माह के दूसरे रविवार मातृ दिवस मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, कहते हैं हर रिश्ते में हमने कुछ खामियां देखी हैं, कच्चे रंगों से उनकी सजावट देखी है, लेकिन सालों साल देखा माँ को, न कभी उसके आंखों में कोई थकान देखी, न ममता में कोई कमी देखी, है ना। और हम सब कह रहे हैं कि आज माँ का दिन है, अरे पर कोई हमें ये तो बताए कि आखिर माँ के बिन कौन सा दिन है, है ना। तो चलिए बच्चों, बाल वाटिका की ओर से भी सभी प्यारी न्यारी ममता मई माताओं को मातृ दिवस की
2: हार्दिक

प्यारे बच्चों, माँ और बच्चे का रिश्ता सबसे खास और अनमोल होता है ना। जिसमें एक महिला जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो जन्म से पहले ही उससे शारीरिक और भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है ना। जब बच्चा माँ की कोख में 9 महीने तक रहता है तो माँ और शिशु के बीच एक अटूट रिश्ता बन जाता है, और तभी से ही माँ के अंदर अपने बच्चे के लिए प्रेम, त्याग, समर्पण का भाव उत्पन्न हो जाता है ना। और बालक के जन्म के बाद

बाद तो मानो माँ को पूरी दुनिया ही मिल जाती है। और बच्चों, बस तभी से एक माँ अपने बच्चे की खुशी, उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा, उसके सपनों को पूरा करना, उसे हर बुरी नजर से बचाना, यही माँ के जीवन का संकल्प बन जाता है ना। और जिसे पूरा करने के लिए वो हर प्रयास भी करती है। तभी तो बच्चों, माँ के इस अटूट प्रेम, त्याग, समर्पण को सम्मानित करने के लिए हम मई माह के दूसरे रविवार विश्व भर में मातृ दिवस मदर्स डे मनाते हैं। वैसे तो बच्चों, हमें माँ के सम्मान में हर दिन को

माँ के इस अटूट प्रेम त्याग समर्पण को सम्मानित करने के लिए हम मई माह के दूसरे रविवार विश्व भर में मातृ दिवस मदर्स डे मनाते हैं। वैसे तो बच्चों हमें माँ के सम्मान में हर दिन को मातृ दिवस की तरह मनाना चाहिए, लेकिन फिर भी मई माह के दूसरे रविवार पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम के साथ मातृ दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों माँ के प्रति प्रेम और सम्मान हर पल हमारे मन में रहता है, लेकिन बच्चों जो स्नेह माँ के प्रति हम रखते हैं उसे जताकर हम अपनी माँ को कितना खास अनुभव करा सकते हैं, है ना? और इसी को महसूस कराने के उद्देश्य से हम मातृ दिवस मनाते हैं। जो आज माँ को समर्पित इस दिन पर चलिए आप नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुतियों का शुभारंभ करते हैं। प्यारी दुलारी माँ के स्नेह ममत्व को समर्पित करते इस सुमधुर गीत के साथ, जिसे लेकर हमारे साथ हैं नन्नी सखियां।

0: धन्यवाद।
1: तो प्यारे बच्चों, अभी आपने नन्ही सखियों से माँ के प्रेम को समर्पित ये सुमधुर गीत सुना। बच्चों, हमें भी हमेशा अपनी माँ के प्रति सम्मान, त्याग, समर्पण का भाव जरूर रखना चाहिए, और केवल मदर्स डे पर ही नहीं, हर दिन अपनी माँ को स्पेशल फील जरूर कराना चाहिए।

प्यारे बच्चों, वैसे तो माँ को शब्दों में बांध पाना असंभव है। ये ममता का वो सागर है जिसमें भावनाएं हिलोरे लेती रहती हैं। तभी तो कहते भी हैं बच्चों, पेन की स्याही भी खत्म हो जाती है जब माँ तेरी दास्तां लिखी जाती है। प्यारे बच्चों, आज विश्व भर में मातृ दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है ना। और आप नन्हे मुन्ने बच्चे भी आज के दिन अपनी माँ को खास तो जरूर महसूस करवाते हैं, है ना। और वो कैसे करवाते हैं, चलिए जानते हैं आप नन्हे मुन्ने बच्चों से ही।

0: मेरा नाम दिव्यांशी है। आज मदर्स डे है और आज के दिन अपनी माँ को उनके फेवरेट फ्लावर, चॉकलेट या और गिफ्ट देते हैं। हम अपनी मम्मा के साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं और कभी कभी अपनी माँ के संग मूवी देखने जाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। आप सभी को भी मदर्स डे जरूर मनाना चाहिए।
1: प्यारी माँ, मम्मा।
2: मेरा नाम निहारिका है और मैं आज आपको मदर्स डे पर प्यारी माँ के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ।
3: माँ न केवल हमें प्यार करती है बल्कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। माँ हमें सबसे अच्छी तरह समझाती है और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करती है।
4: नंदिनी पंत है। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिश्री जैसी, सारे जग से न्यारी हो। मेरे मन में जोश तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश, मुझ में

मेरा नाम शिवाय है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है मदर्स डे और आज के दिन अपनी मम्मा को स्पेशल फील कराना तो बनता है। आज के दिन मैं अपनी मम्मा के लिए सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाता हूँ और न हो सके अपनी मम्मा को बिल्कुल भी दुखी नहीं करता, और ऐसे मैं मदर्स डे बनाता हूँ। और आप कैसे बनाते हैं? आप सभी अपनी मम्मा को रिस्पेक्ट जरूर करें, उनकी सारी बात माने, और केवल मदर्स डे पर ही नहीं, रोज अपनी मम्मा को स्पेशल फील जरूर करवाएं।

0: मेरा नाम ज्योत्सना है, खुशियों का पिटारा है माँ, लगती सबसे न्यारी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ। मदर्स डे के दिन हम अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करते हैं, है ना, केक लाते हैं, कभी नए कपड़े लाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर हम हर दिन अपनी माँ को सम्मान दें, उनकी सब बात माने, तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा, है ना। और जब हम ऐसा करेंगे तभी तो हमारी माँ का हर दिन स्पेशल होगा, है ना।
1: शाबाश बच्चों, यूं ही अपनी माँ के प्रति स्नेह भाव सदा जरूर बनाए रखें और कभी भी किसी भी तरह का अपनी माँ को दुख ना पहुँचाएं। और जितना हो सके आज के दिन ही नहीं, हर दिन अपनी माँ को स्पेशल फील कराना बिल्कुल भी ना भूलें।

0: क्योंकि बच्चों माँ ही है जिसके रहते जिंदगी में कोई कमी नहीं खलती, और माँ बस सर पर हाथ फेर ले जिंदगी में कोई गम नहीं लगते, है ना। तो बच्चों माँ के प्यार और आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है कि मात्र उसकी आवाज भर सुन लेने से ही दुनिया की बड़ी से बड़ी तकलीफ भी दूर हो जाती है। एक माँ त्याग प्रेम करुणा का असीम भंडार होती है, है ना। और उसकी ममता का सागर तो इतना विशाल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तभी तो बच्चों कहते भी हैं, माँ के है रूप अनेक, कभी भोली सी कभी शक्ति स्वरूपा, तो कभी चंचल सी है माँ। माँ तेरे हर रूप में बसी मनमोहक छवि सी है, और माँ हमारे जीवन का एक ऐसा आशीर्वाद है जिसकी ममता की छाव तले जीवन का आधार है, और जिसकी उंगली थाम हम जीवन का पहला कदम रखते हैं, जिसके आंचल में हर सुख मिल जाता है, और जिसके बिना जीवन कितना अधूरा सा लगता है, है ना। वो माँ ही तो है जिसका प्रेम निस्वार्थ है, और उसकी दुआओं का असर कुछ ऐसे होता है कि जहाँ भी जाऊँ वहाँ रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। और आज इन्हीं भावों को अपनी कविता में बयां कर रही हैं नन्ही प्रियांशी।
1: माँ के हैं रूप अनेक, माँ है एक आशीर्वाद, वो कभी देवी कभी साधिका, उसकी ममता की छाँव में हर दर्द हर तकलीफ भी साधिका। माँ है हिम्मत का प्रतीक, कभी वो एक शक्ति की देवी, जब तक आप गिरते हैं बार बार वो उठाने वाली अपनी महिमा। माँ है वो धारा जो बहती सदियों से जीवन की राह पर, कभी आशीर्वाद कभी दुख उसका रूप बहुविधा हमारे हर पहलू पर। माँ है वो अज्ञेय शक्ति जो समझाए बिना सब कुछ सिखाए, माँ एक साधिका एक सखा हर रूप में साकार हो जाए।
0: सच है बच्चों, माँ के प्रेम को शब्दों में सिमटा पाना तो मुमकिन ही नहीं है, है ना। माँ का प्रेम न घटे न बढ़े, बस समय के साथ धीरे धीरे गहरा होते रहता है।

0: बच्चों, माँ कभी नींद में हमारा ध्यान रखकर धूप से अपने आंचल में हमें छुपाती है, तो कभी भूख लगने पर अपना निवाला भी हमें दे देती है ना। और बड़ी से बड़ी मुसीबत को एक जादू की झप्पी देकर तो यूं चुटकियों में गायब कर देती है ना। और बच्चों, हमें काबिल बनाने के लिए तो वो कठिन से कठिन संघर्ष करने से भी घबराती नहीं है, और फिर भी मुस्कुरा कर जीवन में हमें आगे बढ़ने की सीख देते रहती है। जैसे आज नन्ही तनुश्री अपनी कविता से हमें बता रही हैं।
1: माँ तेरा प्रेम है अमर कविता जो हर सांस में गूंजती रहती है, बचपन की थपकियों में नींद की लोरी बन बहती है, तेरे आंचल की छांव तले जैसे हर दुख भी मुस्काता है, तेरी एक मुस्कान से ही जीवन नया पाता है, तू थकी नहीं कभी मेरे लिए हर पीड़ा में भी हंसती रही, मैं गिरा तो तेरा रसाया मेरे संग ही चलता रहा, तेरा प्रेम न शब्दों में सिमटे न समय की सीमा माने।
0: सच है बच्चों, माँ हमारे जीवन की एक ऐसे शिक्षक हैं जिनकी हर बात से ज्ञान की अनुभूति होती है ना। बच्चों, माँ संघर्ष का दूसरा नाम है जिसमें प्रेम, त्याग और बलिदान छिपा होता है। एक माँ अपनी सारी खुशियाँ, अपने सारे सपने, सब कुछ अपने बच्चे के लिए न्योछावर कर देती है। चाहे कोई भी हालात हो, जीवन में एक प्यारी सी मुस्कान लिए वो कभी भी हार नहीं मानती है, है ना। और माँ के संघर्षों को तो शब्दों में बांध पाना बेहद ही मुश्किल है। तो चलिए, जहाँ बात हम माँ के संघर्षों की कर ही रहे हैं, तो नन्ही कनिका का क्या है कहना, चलिए जानते हैं उनकी इस कविता से।
2: माँ वो पहले शिक्षक होती, हर बात में ज्ञान समेटे होती, लोरी में भी पाठ सिखाती, ममता की मिसाल बन जाती, छोटे छोटे कदमों से चलना, गिरकर भी फिर से संभलना, उसकी उंगली थामे सीखा हर मुश्किल में कैसे जीना, भूख लगे तो पहले खिलाना, खुद के हिस्से से हटाना, सीख यह कि त्याग है जीवन, प्यार में नहीं कोई है बंधन, गलती पर डांटे भी माँ पर आँखों में आंसू भी छुपा लेती माँ, सिखाती है सच बोलना, ईमान से ना कभी डोलना, संघर्षों में जब सब छूटे माँ की सीख तब छूते।
0: सच है बच्चों, माँ हमारे जीवन की एक ऐसी शिक्षक होती है जिसकी हर बात में ज्ञान की अनुभूति होती है ना। एक माँ खुद को भूलकर अपने हर दर्द को मिटाकर अपने बच्चे को संवारती है, और उसका ये बलिदान अमर है, अनमोल है।

0: बच्चों, आप नन्हे मुन्ने बच्चे भी अपनी माँ की हर बात तो जरूर मानते होंगे, है ना? और उन्हें कभी दुख ना पहुँचाएं। प्यारे बच्चों, माँ का जीवन त्याग और समर्पण का प्रतीक है। जैसे जैसे बच्चों उम्र बढ़ने लगती है तो माँ की चिंताएं भी हमारे लिए बढ़ने लगती हैं। माँ की चिंताएं हमारे स्वास्थ्य, हमारे करियर, भविष्य को लेकर धीरे धीरे और भी गहन होने लगती हैं। तो बच्चों, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, जीवन के शिखर तक पहुंच क्यों ना जाएं, हमें माँ की जरूरत, माँ के त्याग, समर्पण, प्रेम को तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए। माँ को हमेशा वही प्यार, वही सम्मान, वही आदर देना चाहिए जिसकी कि वो हकदार हैं। जो वो पूरी जिंदगी हमारे लिए समर्पित करते आई हैं, वो हमें उन्हें जरूर देना चाहिए। क्योंकि बच्चों, हमारे जीवन की असली ताकत और प्रेरणा तो हमें माँ से ही प्राप्त होती है। और अपनी प्यारी माँ को मदर्स डे पर आज के दिन स्पेशल तो जरूर फील करवाएं। तो चलिए, वो हम कैसे करा सकते हैं, चलिए जानते हैं युवान की इस कविता से।
1: बाबा मूरत है जिसमें बसते हैं भगवान, जिसके आंचल में छुपा है सारा।

0: कहा है इद्याए, हर पल उसका ऋण है, हर सांस उसकी सांव। नींद से पहले जो कहानी सुनाए, भूख लगे तो खाना भूल जाए, थक कर भी जो मुस्कुराना ना भूले, बचपन की गलियों में जो साया बने। जननी है, अन्नपूर्णा है, शक्ति का रूप, हर दुख में ढाल, हर खुशी में स्वरूप। क्यों ना करें हम हर दिन उसका मान, माँ का एक दिन नहीं हर दिन करें सम्मान।
1: सच है बच्चों, हमें ऐसा वचन तो आज के दिन जरूर लेना चाहिए, जिससे हर दिन माँ के लिए कुछ विशेष हम जरूर कर सके। और बच्चों, माँ के प्रेम, ममता, त्याग इतना विशाल, इतना गहरा और इतना अनमोल है कि हम उसका शब्दों में तो बखान कर ही नहीं सकते हैं, है ना। हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, माँ के ममत्व को हम शब्दों में तो बता ही नहीं सकते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों, आप भी मातृ दिवस के दिन ही नहीं, हर दिन अपनी माँ का सम्मान जरूर करें, उन्हें स्पेशल फील जरूर करवाएं।

0: तो प्यारे बच्चों, ये तो हमने जानी बहुत सी बातें मातृ दिवस पर। तो चलिए, आज मातृ दिवस का है खास अवसर, तो हम मातृ दिवस आखिर क्यों मनाते हैं, ये बात जानते हैं मीनाक्षी से।
1: भारत में हर साल मई के महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है मदर्स डे। अमेरिका में मदर्स डे की शुरुआत एना जार्विस ने की थी। एना एक अमेरिकन एक्टिविस्ट थी, उन्हें अपनी माँ से बहुत लगाव था। जार्विस अपनी माँ के साथ ही रहती थी। माँ के गुजर जाने के बाद एना ने माँ के प्रति प्यार और सम्मान जताने के लिए मदर्स डे की शुरुआत की थी। तभी से हर साल मई माह के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। मातृत्व दिवस को मनाने की शुरुआत औपचारिक रूप से 9 मई 1914 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने की थी। मदर्स डे से जुड़ी एक कहानी यह भी है कि मातृत्व दिवस मनाने की शुरुआत पुराने ग्रीस से हुई है।
0: तो प्यारे बच्चों, आज हमने मातृ दिवस के इस शुभ अवसर पर मातृ दिवस हम क्यों मनाते हैं, इस बारे में मीनाक्षी से कितना कुछ जाना, है ना। तो बच्चों, माँ का सम्मान जरूर करें और उन्हें कभी भी किसी भी तरह का दुख ना पहुँचाएं।

तो बच्चों ये तो बात हुई प्यारी न्यारी ममता मई करुणा मई माँ के बारे में। और अब बच्चों ऐसा भी कहते हैं कि जो माँ है ना वो किसी भी परिवार की धुरी होती है जो संपूर्ण परिवार को प्रेम रूपी धागे से जोड़े रखने का प्रयास करती है और परिवार के सभी सदस्यों के मध्य प्रेम भावना को भी बनाए रखने का पूरा प्रयास करती है। तभी तो बच्चों कहते भी हैं माँ के बिना परिवार की कल्पना भी अधूरी होती है ना। और एक माँ ही है जो परिवार को एक मोती की माला की तरह जोड़े रखती है। और इस परिवार के महत्व को समझने के लिए 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी मनाया जाता है। प्यारे बच्चों संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को समाज में परिवारों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने और उनके सामने आने वाले आर्थिक सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाने का निर्णय लिया था। और 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की घोषणा की थी। और तब से बच्चों प्रत्येक वर्ष 15 मई को ये दिन विश्व भर में बड़ी ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और बच्चों परिवार

परिवार दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि परिवारों के महत्व, उनके सामने आने वाली चुनौतियों और आपसी प्रेम भाव योगदान को महत्व देना। परिवार जिसमें कि कई रिश्ते समाये होते हैं और ये सभी रिश्तों को और इन सभी रिश्तों का अपने आप में अनूठा संबंध होता है ना। और हमारे देश भारत में तो संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, ऐसे परिवारों की परंपरा है ना। और परिवारों को तो बच्चों हमेशा एक साथ जरूर रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों यही है जो हमारे साथ हर मुसीबत में खड़े रहते हैं, है ना। और परिवार है तो हमारे लिए सहारा है। और बच्चों ऐसा भी कहा जाता है कि एक परिवार में जितनी सकारात्मक और खुशनुमा वातावरण रहता है, उतना ही उस परिवार के बच्चों को आशीर्वाद और स्नेह मिलता है ना। और हम सभी परिवारजनों से बहुत कुछ सीखते भी हैं, है ना। तभी तो कहते भी हैं, धन दौलत क्या चीज है अगर रिश्ते साथ हो हमारे। इसीलिए सबसे पहले समझो तुम ये बात, परिवार ही है जीवन की असली सौगात। और हमारे देश भारत में तो संयुक्त परिवार की परंपरा है, जिसमें कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलजुल कर प्रेम भावना के साथ रहते हैं। और बच्चों ऐसा भी कहा जाता है कि एक परिवार में जितना सकारात्मक और खुशनुमा वातावरण रहता है, उतना ही उस परिवार के बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों आप भी अधिक से अधिक समय अपने परिवार के साथ जरूर बिताएं। और बच्चों परिवार में रहकर तो हम सभी परिवारजनों से बहुत कुछ सीखते भी हैं, है ना। और तभी तो बच्चों कहते हैं, धन दौलत क्या चीज है अगर रिश्ते साथ ना हो हमारे। इसीलिए सबसे पहले समझो तुम ये बात, परिवार ही है जीवन की असली सौगात। और जब आपसी रिश्तों में अटूट प्रेम होता है, तभी तो हम ये गुनगुना भी पाते हैं।

0: और अब बच्चों, बात जहां हमने परिवार पर करी ही है, तो चलिए अब बात हो जाए घूमने फिरने की। तो बच्चों, आज आओ सैर करें क्रम में आपको लिए चलते हैं नागालैंड की सैर पर श्वेता के साथ।
1: नागालैंड राज्य जितना प्राकृतिक दृष्टि से सुंदर है, उतना ही यहाँ के जीवन शैली में खूबसूरती और विविधता देखने को मिलती है। बात करें त्योहारों की, तो यहाँ का हॉर्नबिल नामक त्योहार इस राज्य का खास आकर्षण होता है। नागा समुदाय के लोगों की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध। उत्तर में नागा पहाड़ियाँ ब्रह्मपुत्र घाटी से अचानक लगभग 610 मीटर की ऊंचाई तक उठती हैं, और उसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा में इनकी ऊंचाई 1800 मीटर तक हो जाती है। म्यांमार सीमा के पास ये पहाड़ियाँ पटकोई पर्वत श्रृंखला से मिल जाती है, और यहाँ इनकी सबसे ऊँची चोटी माउंट सारामती है। यह क्षेत्र कई नदियों द्वारा गहरे रूप में विभक्त है। नागा जनजाति का प्रमुख खाद्य पदार्थ चावल है। इस राज्य में महिलाओं के प्रमुख परिधान में स्कर्ट, लोथा, सुंको टेप्सु इत्यादि शामिल होते हैं।
0: आज आओ सैर करें क्रम में हमने श्वेता से नागालैंड के बारे में कितना कुछ जाना, है ना? और अब बच्चों, वक्त हो चला है बालवाटिका कार्यक्रम से विदा लेने का। और भी नन्हे मुन्ने बच्चे जो बालवाटिका कार्यक्रम से जुड़ना चाहें, अपनी रचनाएं, अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करना चाहते हैं, तो इसके लिए नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी balwatika1986@gmail.com। और अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9411001122। और पत्र भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम बाल वाटिका द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अल्मोड़ा, पिन कोड संख्या है 263601। और अब बच्चों, मैं आपकी दीदी मेघा रावत लेती हूँ आपसे

0: विदा। अब बच्चों मिलेंगे अगले रविवार एक नए अंक में आप नन्हे मुन्ने बच्चों की विविध प्रस्तुतियों के संग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।
1: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल वाटिका। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
2: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में स्वर्ण युग में है। तमिलनाडु में तमिलगर वित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 120 विधायकों के समर्थन के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा।
4: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। श्री रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
5: श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। इसके अनुसार दैनिक वेतन शिफ्ट समाप्त होने तक, साप्ताहिक वेतन साप्ताहिक अवकाश से पहले, पाक्षिक वेतन पखवाड़े की समाप्ति के 2 दिन में और मासिक वेतन का भुगतान अगले महीने के 7 दिन में हो जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों को सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है। ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर बाद 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स

0: से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त शोभा पांडे का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में एक सुकून भरा एहसास है माँ। तपती धूप में ठंडी छाँव और हर मर्ज की दवा है माँ। कहीं मंदिर की आरती है वो, कहीं अजान की पाक दुआ है। जिंदगी की मुश्किल राहों में सबसे मजबूत हौसला है माँ। आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं माँ के निस्वार्थ प्रेम को समर्पित ये गीत राजा और रंग फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

कार्यक्रम के आरंभ में अभी आपने सुना राजा और रंग फिल्म का ये गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आवाज़ थी लता मंगेशकर की। इस गीत को सुनना चाहते थे कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सिटी दीवाना, जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर आकृति ज्योति जयप्रकाश राहुल और प्रियंका, यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, योगेश मालाकार और इनका समस्त परिवार, मोटका माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम देवी किशन, भावना मनमानस और कनिका पटेल। इसी गीत की फरमाइश हमें की थी गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन ने। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा ने। दोस्तों, ईश्वर हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया। माँ का आंचल वो सुरक्षित किला है जहाँ पहुंचकर दुनिया के सारे डर खत्म हो जाते हैं। ये प्यार का वो बंधन है जो समय के साथ और भी गहरा और मजबूत होता जाता है। तो आइए माँ से जुड़े इसी बंधन को बयां करता ये गीत सुनते हैं करण अर्जुन फिल्म से। गीतकार हैं इंदेवर, संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने और आवाज़ें हैं कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक की। इस गीत की फरमाइश हमें की है अजीत नगर मलोट पंजाब से चिंदर सिंह चिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और रौनकदीप कौर ने। जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामचरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। लेहगांव रेलवे महाराष्ट्र से दीपक कुरहाड़े, आशीष कुरहाड़े, कुमारी कल्पना कुरहाड़े और वंदना कुरहाड़े ने। इसे गीत को सुनना चाहते हैं रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे और ऋषि शिंदे।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: इंस्पिरेशन बिल्ट इनटू एवरी अराइवल, दिस मे ड्राइव होम योर फेवरेट नेक्सा कार एंड अनलॉक न्यू पॉसिबिलिटीज।
6: मीट द मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, द एसयूवी दैट्स बिग ऑन स्टाइल एंड स्मार्ट ऑन वैल्यू, विद इट्स बोल्ड डिजाइन एंड स्पेशियस कंफर्ट। इट्स बिल्ट टू इंप्रेस एवरी सिंगल डे,
5: एंड नाउ इट्स योर्स एट एन इफेक्टिव प्राइस ऑफ जस्ट ₹6.70 लाख।
6: यस, ₹6.70 लाख, वैलिड टिल 31st May। डोंट मिस आउट, विजिट योर nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
5: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
7: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्जल। कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए संजीव दर्शन के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा आशिक फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की। इस गीत को सुनना चाहते हैं नंदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी वर्मा, राहुल वर्मा, गोपी वर्मा। बहरामपुर जिला खारगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, भगवती वर्मा, अभिषेक सीमा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन सुभाष, संतोष और इनके सभी साथी। सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा और आयुषी वर्मा। राजबिराज नेपाल से श्याम कुमार हाकू, तारा देवी हाकू, राजन हाकू, कल्पना हाकू, सनी, पिंकी, खुशबू, श्रुति और पूजा हाकू। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, विशाल सपकाल और सायरा सपकाल।

0: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
1: दस लाख की लॉटरी मुझे
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
4: गीत नजर कार्यक्रम की अगली पेशकश में सुनिए 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का ये गीत जावेद अख्तर के लिखे बोलो को सुरों में पिरोया है आर डी बर्मन ने और आवाज है कविता कृष्णमूर्ति की। इस गीत की फरमाइश हमें की है जिला झारखंड गांव सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश तांती, निशा, रेशमा, प्रीति और देवीन तांती। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु प्रिया, मेघा, राशि, माधुरी और इनके सभी साथियों ने। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिराही, मेहराज जहां। कटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशे, सुषमा सुरेशे, परिधि सुरेशे और मायरा सुरेशे ने। लीजिए सुनिए आप सभी का पसंदीदा 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: इंस्पिरेशन बिल्ट इनटू एवरी अराइवल। दिस मे ड्राइव होम योर फेवरेट नेक्सा कार एंड अनलॉक न्यू पॉसिबिलिटीज।
4: मीट द मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, वेयर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मीट्स प्रीमियम कंफर्ट एंड सेफ्टी। नाउ एट एन इफेक्टिव प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹9.72 लाख।
3: यस, ₹9.72 लाख। ऑफर वैलिड टिल 31st May। ओन दिस स्टाइल आइकन एट एन EMI ऑफ जस्ट ₹8.99 पर मंथ।
4: एक्सपीरियंस लग्जरी विद अ पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360-degree व्यू कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
5: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
6: को
7: प्लीज तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
6: दिमाग चार्ज कर रखना।
8: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
6: देखा
7: पापा, रुको मैं पे करता हूं। नो सिग्नल।
8: अब क्या करोगे?
7: फ्री वाईफाई है ना?
6: बुद्धू सुधर जा।
8: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
7: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
8: RBI कहता है
2: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

गीत नजर कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए आ अब लौट चलें फिल्म का ये गीत। शब्द रचना समीर की है, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने, आवाजें हैं अलका याग्निक और जसपिंदर नरूला की। इस गीत को सुनना चाहते हैं दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, सन्नू साबरी, इरम साबरी और अमन साबरी, ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार और पूजा खटक, ऑरेंज सिटी नागपुर से विट्ठल जाधव, अनसुईया जाधव, पवन राज जाधव, छत्रपति संभाजीनगर से मंगेश इंगले, संध्या इंगले, स्वराज विराज और इनके सभी साथी।

नरुला जी, इस गीत को सुनना चाहते हैं दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, सन्नू साबरी, इरम साबरी और अमन साबरी, ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार और पूजा खटक, ऑरेंज सिटी नागपुर से विट्ठल जाधव, अनसुईया जाधव, पवन राज जाधव, छत्रपति संभाजीनगर से मंगेश इंगले, संध्या इंगले, स्वराज विराज और इनके सभी साथी।

0: कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: गीत निर्जय कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं सलीम सुलेमान का संगीतबद्ध किया आजा नचले फिल्म का ये गीत। आवाज़ है सुनिधि चौहान की और शब्द रचना जयदीप साहनी की है। इस गीत की फरमाइश हमें की है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू, साजदा रानी, हिना कौसर, मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, सनावत जिला खारगोन मध्य प्रदेश से हुकुम चंद्र कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, कृष्णा विराज अर्णव, कृतिका, काव्यांशी और प्रभा कटारिया, बिहार स्टेट डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, बलाई छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया, गौरैया जालंधर से अशोक जाटव और प्रमीला जाटव, डॉडी लोहारा छत्तीसगढ़ से शिबू बंछोर, प्रियंका बंछोर रघुवीर नगर दिल्ली से श्रुति ओबेरॉय, सृष्टि ओबेरॉय रिंगनी छत्तीसगढ़ से सुनील कुमार और आशा देवी। लीजिए सुनिए आप सभी के फरमाइश पर आजा नचले फिल्म का ये गीत।
5: Dhan dhan chik chik ta ga dhan ta dhan ta chik chik ta ga dhan ta dhan ta chik chik ta ga dhan ta dhan ta chik chik ta ga dhan ta dhan ta chik chik ta ga dhan ta dhan ta chik chik ta ga dhan ta dhan ta chik chik ta ga dhan ta dhan ta chik chik ta ga dhan ta dhan ta chik chik ta ga dhan ta dhan ta chik chik ta ga dhan ta dhan ta chik chik ta ga dhan ta dhan ta chik chik ta ga dhan ta dhan ta chik chik ta ga dhan ta dhan ta chik chik ta ga dhan ta dhan ta chik chik ta ga dhan ta dhan ta chik chik ta ga dhan ta dhan ta chik chik ta ga dhan ta dhan ta chik chik ta ga dhan ta dhan ta chik chik ta ga dhan ta dhan ta chik chik ta ga dhan ta dhan ta chik chik ta ga dhan

0: ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: देखा?
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: कार्यक्रम की अगली पेशकश इन सभी श्रोताओं की पसंद पर। नई दिल्ली से स्वीटी छापड़ा, इंद्रजीत कौर छापड़ा, पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिमी गोप और दीपाली गोप, ग्राम बठीना पाटन छत्तीसगढ़ से परमेश्वर साहू, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश साहू और रेशमा साहू, सिद्धार्थनगर दरियापुर वावली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और स्वाति येले, शेरी वडनेर अकोला से बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर, दरबार कॉलोनी सुनावत से किशोर कुमार सांवले, रेखा सांवले, हिमांशु अनुराग, सुलोचना और चारवी सांवले, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, रजनीश, मनीष, नीतीश, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी। आप सभी सुनना चाहते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर का लिखा, अनु मलिक का संगीतबद्ध किया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म का ये गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, कहीं प्यार ना हो जाए फिल्म से। गीतकार हैं सुधाकर शर्मा और राजेश मलिक, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया और आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। इस गीत को सुनना चाहते हैं।

फुल चिंचौली पंढरपुर से जाकिर मुलाणी, सुमैया मुलाणी, सुबान मुलाणी, सलमा मुलाणी, मुमताज मुलाणी और दलशाद मुलाणी। सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर और आसमा श्याम कुंवर। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, अनोखेलाल वर्मा। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से शंकर कोलाम, संतोषी कोलाम, संजय कोलाम, संध्या कोलाम, शिवम कोलाम। श्रीरामपुर से अशोक कुंभार, अविका, जीविका, सानू कुंभार। दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति वर्मा, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा। लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश पर कहीं प्यार ना हो जाए फिल्म का ये गीत।

गीत के साथ हमारा आज का फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मिर्च है यहीं पर संपन्न होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी दोस्त शोभा पांडे को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मिर्च है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक यात्रा के दौरान बेंगलुरु पहुंच गए हैं और वे इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: पहली वर्षगांठ मनाई है, और कल सुबह 11 तारीख को मैं गुजरात के सोमनाथ में रहूंगा। वहां सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं। मैं आज आपके बीच बंगलुरु की इस धरती से माता अन्नम्मा उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
0: बाद में प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में भी शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय अब से कुछ देर में चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा।
2: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। श्री रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। तिरुपति में आज संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में सफल और शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। और IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर बाद 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके साथ ही

0: अच्छा, बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं रिद्धि के गाए इस गीत के साथ।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
6: को तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
7: दिमाग चार्ज कर अपना।
8: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
7: देखा
6: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
8: अब क्या करोगे?
6: फ्री वाईफाई है ना?
7: बुद्धू सुधर जा।
8: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
6: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
8: आरबीआई कहता है,
9: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
10: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सप्तरंग। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए अनुराधा पौडवाल और जसवंत सिंह का गाया ये नगमा।

0: to every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
0: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
1: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: 10 लाख की लॉटरी मुझे
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए
7: दादी कौन सा प्लांट है
8: टेंजरीन बहुत मीठा होता है तोड़ना नहीं है
9: फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक अभी करता हूँ
7: दादी रुको लिंक में क्लिक मत करना
9: क्यों
7: ये SMS स्कैम है क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी
9: थैंक्स गप्पू बचा लिया ये ले तेरी समझदारी का फल
10: RBI कहता है स्मार्ट बनो
11: कूल रहो

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे। वाओ।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: इंस्पिरेशन बिल्ट इनटू एवरी अराइवल। दिस मे ड्राइव होम योर फेवरेट नेक्सा कार एंड अनलॉक न्यू पॉसिबिलिटीज।
5: मीट द मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, वेयर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मीट्स प्रीमियम कंफर्ट एंड सेफ्टी। नाउ एट एन इफेक्टिव प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹9.72 लाख।
4: यस, ₹9.72 लाख। ऑफर वैलिड टिल 31st May। ओन दिस स्टाइल आइकन एट एन EMI ऑफ जस्ट ₹8.99 पर मंथ।
5: एक्सपीरियंस लग्जरी विद अ पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री व्यू कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले and 6 airbags as standard.
4: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
6: ये देख कैसे?
2: Happy birthday, bhai.
6: दिखा? हाँ, मेरा favorite color.
2: हमेशा shopping.
7: I know, ma. But खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
8: Saving करने की भी यही उम्र है.
9: I know, pa. Save करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा.
7: I know, ma.
9: RBI कहता है
10: तरो से ही शुरुआत, बनो financially smart.
11: सबरन कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए आबिदा परवीन की गाई ये गजल

आबिदा परवीन के गाए इस नगमे के साथ हमारा आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप गीता नेगी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कल गोविंद वल्लभ पंत अभियांत्रिकी व प्रौद्योगिकी संस्थान की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बीओजी की बैठक ली। डॉक्टर रावत ने संबंधित अधिकारियों के साथ संस्थान के विकास, शैक्षणिक गुणवत्ता व प्रशासनिक सुधार पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सभी निर्माण कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण रूप से पूरा करने और रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने कलेक्ट्रेट स्थित नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC कार्यालय के नवनवीनीकृत परिसर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि NIC शासन और प्रशासन की डिजिटल व्यवस्थाओं की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा, कार्यालय के सुदृढ़ीकरण से ई गवर्नेंस से जुड़ी गतिविधियों को नई गति मिलेगी और विभिन्न विभागों के कार्यों का संचालन और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि विशेष रूप से निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के सफल और सुचारू संचालन में ये व्यवस्था अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी ने कहा कि शासन की विभिन्न डिजिटल सेवाएं अब अधिक सुगमता, पारदर्शिता और दक्षता के साथ आम जनता तक पहुंच सकेगी, जिससे इस पहल का प्रत्यक्ष लाभ नागरिकों को मिलेगा। चंपावत जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में सशस्त्र सीमा बल और नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय निशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया। सशस्त्र सीमा बल 5वीं वाहिनी के कमांडेंट सुरेंद्र विक्रम ने बताया कि नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत नेपाल से लगी सीमा पर आमरा गांव में आयोजित शिविर में 40 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वहीं रियासी में 53 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक दवाएं निशुल्क वितरित की गईं। उन्होंने बताया कि इस दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिवस के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीणों और उच्च माध्यमिक विद्यालय रियासी के छात्र छात्राओं को टीबी के लक्षण, बचाव, उपचार व सरकार द्वारा उपलब्ध निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक कम होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। दैनिक वेतन शिफ्ट समाप्त होने तक साप्ताहिक वेतन, साप्ताहिक अवकाश से पहले, पाक्षिक वेतन पखवाड़े की समाप्ति के 2 दिन में और मासिक वेतन का भुगतान अगले महीने के 7 दिन में हो जाना चाहिए। ITBP व पशुपालन विभाग उत्तराखंड के बीच हुए समझौते के अंतर्गत जिला चंपावत के स्थानीय पशुपालकों ने 36वीं बटालियन ITBP लोहाघाट को 376 किलो जिंदा मुर्गियों की आपूर्ति की गई। इस दौरान प्रभारी मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. TP यादव व सप्लाई ऑफिसर डॉ. दीपक कुमार ने मुर्गियों के स्वास्थ्य, गुणवत्ता और मानकों का परीक्षण किया, जिससे निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप ही आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। यह पहल स्थानीय पशुपालकों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी साबित हो रही है, जिससे उन्हें अपने उत्पादों के लिए एक सुनिश्चित बाजार उपलब्ध हो रहा है। साथ ही सरकारी विभागों व सुरक्षा बलों के सहयोग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। पशुपालन विभाग द्वारा बताया गया कि भविष्य में भी इस प्रकार की व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाते हुए स्थानीय उत्पादकों को संस्थागत बाजार से जोड़ने के प्रयास जारी रहेंगे, जिससे स्वरोजगार और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिल सकेगा। ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ मंदिर पर्व में शामिल

0: होंगे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में। सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी नगमे। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त शोभा पांडे का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रीय राग सिर्फ मनोरंजन ही नहीं

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त शोभा पांडे का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रीय राग सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, ये तो भावनाओं का एक समंदर है। कहते हैं ना, जब शब्द थक जाते हैं तब संगीत शुरू होता है। संगीत के सात सुर सारे गामा पधनी जब एक खास नियम और अनुशासन में बजते हैं तो एक राग का जन्म होता है। राग वो है जो सुनने वाले के मन को रंजित करे, यानी उसे आनंद से भर दे। इन्हीं रागों में से एक राग है राग भूपाली। भूप का अर्थ होता है राजा। ये राग कल्याण परिवार का एक राजसी राग है और एक प्राचीन राग है। कर्नाटक संगीत प्रणाली में इसे राग मोहन या मोहनम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषता इसकी मिठास और एक स्थिर प्रवाह चरित है। आइए सुनते हैं इस राग पर बना ये गीत सिलसिला फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं बात करें राग शिवरंजनी की, तो ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक अत्यंत लोकप्रिय और भावपूर्ण राग है। अपनी सरल संरचना और करुण रस के कारण ये राग न केवल शास्त्रीय संगीत बल्कि फिल्मी और सुगम संगीत में भी बेहद पसंद किया जाता है। शिव और रंजनी के युग्म से बने इस राग की उत्पत्ति के बारे में ये मान्यता है कि जब शिव अपना तांडव कर रहे थे तो उन्हें शांत करने के लिए साधु संतों ने ये राग गाया था। शास्त्रीय संगीत में ये राग शांत रस में दुख विरह और गहरे प्रेम को प्रकट करता है और आत्मिक अनुभूति प्रदान करता है। आइए सुनते हैं इस राग पर बना एक दूजे के लिए फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुड्ढू।
3: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तू समझ गई ना, रिलैक्स।
2: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: श्रोताओं, बात करें राग पहाड़ी की तो ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का बेहद ही लोकप्रिय और मधुर राग है। इसे अक्सर लोक संगीत की आत्मा कहा जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति हिमालय की पहाड़ियों के लोक गीतों से हुई है। ये राग सुनने में बहुत ही शांत, सरल और मनमोहक लगता है, जिसकी उत्पत्ति बिलावल थाट से मानी जाती है, लेकिन इसकी प्रकृति के कारण इसमें कई अन्य रागों की झलक भी मिल जाती है। ये राग श्रृंगार रस और शांति का अनुभव कराता है, जिसे सुनकर पहाड़ों की वादियों और ठंडी हवा का एहसास होता है। आइए सुनते हैं राग पहाड़ी पर आधारित ये नगमा राम तेरी गंगा मैली फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की।

श्रोताओं, बात करें राग भीमपलासे की तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के लोकप्रिय रागों में से एक है। इसकी मधुरता और गहराई इसे फिल्म संगीत और गीतों के लिए संगीतकारों की पहली पसंद बनाती है। ये राग काफ़ी थाट से निकलता है। इसकी प्रकृति बेहद ही गंभीर और शांत है, जो मन को एकाग्र करती है। ये राग करुण रस और भक्ति रस से ओतप्रोत है। दोपहर के समय जब तेज धूप होती है, तब इस राग का आलाप मन को शीतलता प्रदान करता है। गीतों में अक्सर विरह, समर्पण और गहरे प्रेम को व्यक्त करने के लिए भीमपलासे का चुनाव किया जाता है। आइए सुनते हैं इस राग पर आधारित ये गीत क्रिमिनल फिल्म से कुमार सानू की आवाज़ में।

श्रोताओं, बात करें राग दरबारी कान्हड़ा की तो कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक मियां तानसेन ने इस राग की रचना की थी। कान्हड़ा का प्राचीन रूप पहले से ही मौजूद था, लेकिन तानसेन ने उसमें अपनी साधना घोलकर उसे जो नया स्वरूप दिया वो इतना भव्य था कि उसे दरबारी कहा जाने लगा, यानी वो राग जो दरबार की गरिमा के अनुकूल हो। आइए सुनते हैं राग दरबारी कान्हड़ा पर बना ये गीत मेरे हुजूर फिल्म से मनाडे की आवाज़ में।

इसी गीत के साथ हमारा आज का शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार यहीं पर संपन्न होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी दोस्त शोभा पांडे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम के आरंभ में अभी आपने सुना शहीद फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी, राजेंद्र मेहता और मन्ना डे की आवाज़ों में। कार्यक्रम की अगली पेशकश में सुनिए कभी अलविदा ना कहना फिल्म का ये गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। जावेद अख्तर की शब्द रचना को संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
1: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। कार्यक्रम की अगली पेशकश में सुनिए आरजू फिल्म का ये गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

1920 एविल रिटर्न्स फिल्म के इस गीत के साथ आज का सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। सैनिक भाइयों, जय हिंद।

एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर पूनम जोशी का गाया राग अहिर भैरव।

0: डॉक्टर पूनम जोशी से सितार पर बजाया राग अहिर भैरव अभी आपने सुना। आपके साथ तबला संगत की थी तरुण रॉय ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ।
1: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
4: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। दोपहर के ठीक 12 बजे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

आज का मेरी पसंद प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त रेखा सिलोरी। आप सभी का प्रोग्राम में बेहद स्वागत और साथी कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज एक ख़ास दिन है, आज है मातृ दिवस यानी कि मदर्स डे। तो आज का हमारा मेरी पसंद समर्पित है अपनी प्यारी माँ को। श्रोताओं, माँ की ममता छाँव है प्यारी, उसके कदमों में जन्नत का सुकून है। हर दर्द से वो हमें बचा लेती है, दुआ बन के सर पर रह जाती है। और जब वो हमें बेटा कह के, जब वो हमें बेटी कह के प्यार से पुचकारती है, तो लगता है कि दुनिया की सारी खुशियाँ हमारे कदमों में आ गई।

माँ के बिना जहाँ अधूरा सा लगता है, माँ की ममता में ही तो सारा जहाँ बसता है। दुआओं की वो छांव है, ममता की वो मूरत है, कठिन से कठिन राहों में माँ ही तो सुकून की सूरत है। माँ का आंचल दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, इसमें छिपा हर दर्द भी सबसे प्यारी इबादत है। श्रोताओं, जब दवा असर ना करे तो वो नज़र भी उतारती है, ऐसी होती है माँ। माँ केवल एक शब्द नहीं बल्कि प्रेम, त्याग, ममता और सुरक्षा का दूसरा नाम है। भारतीय संस्कृति में माँ को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। यही कारण है कि हिंदी फिल्मों में माँ का किरदार हमेशा भावनाओं का केंद्र रहा है। कभी वो संघर्ष करती हुई दिखाई देती है तो कभी अपने बच्चों के लिए हर दर्द को सहती है, तो कभी प्रेरणा बनकर उनके जीवन को दिशा देती है। और हमारे हिंदी सिनेमा जगत में ऐसे कई गीत हैं जो माँ को भगवान का दर्जा देते हैं।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: फिल्म संगीत का प्रोग्राम मेरी पसंद इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। श्रोताओं, आज का मेरी पसंद समर्पित है माँ को। सुने जो मुझे समझ सके, ऐसा न कोई दिखता है। सुने जो मुझे समझ सके, ऐसा न कोई दिखता है। मन को मेरे पढ़ ले ऐसा, माँ का ही ये बस एक रिश्ता है। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा ने माँ की अनेक रूपों को बड़े ही भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। पुरानी फिल्मों में माँ को त्याग और संस्कार की प्रतिमूर्ति के रूप में दिखाया गया है, जैसे मदर इंडिया में नरगिस का किरदार। ये फिल्म भारतीय माँ की शक्ति, संघर्ष और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गई है। श्रोतो, माँ की तरह कोई और ख्याल रख पाए, ये तो बस ख्याल ही हो सकता है। लेकिन अपने बच्चों का दुख, अपने बच्चों का दर्द समझ सके, वो बस माँ होती है।

किसी ने हमसे पूछा कि स्वर्ग कहाँ है। हमने मुस्कुराते हुए कहा, जिनके घर में माँ है वो जगह स्वर्ग है। श्रोतो, हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन साल दर साल बदलती देखे, लेकिन माँ को बदलते ना देखा। उसके चेहरे पर कभी भी थकावट ना देखी, ना ममता में कभी मिलावट देखी। जो हिंदी सिनेमा ने माँ के अनेक रूपों को बेहद ही खूबसूरत तरीके से पेश किया है। इसके बाद कई फिल्में ऐसी आई हैं जिनमें माँ के किरदार को कुछ अलग ही तरह से दिखाया गया है, जिसमें माँ बेटे के रिश्ते को विशेष महत्व दिया गया। जैसे श्रोताओं, फिल्म दीवार का प्रसिद्ध संवाद है कि मेरे पास माँ है, आज भी लोगों के दिलों में बसता है। ये केवल एक संवाद नहीं, बल्कि माँ के महत्व का एहसास है।

माँ की ममता का नहीं कोई जवाब, उसके प्यार में छिपा है सारा संसार। धूप में छांव बनकर साथ निभाती है, माँ ही तो जीवन को खूबसूरत बनाती है। इसलिए हमेशा अपनी माँ को प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए और आदर दीजिए। और आज के इस प्रोग्राम से अब अपनी रेडियो दोस्त रेखा सलूरी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर की 12:30 हुई हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार।

स्वागत है मैंने आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम घर संसार के आज के अंक में। सभी श्रोता सखियों को आपके सखी किरण बिष्ट का प्यार भरा नमस्कार। चलिए करते हैं आज के अंक की शुरुआत। आज के दिन की बात और मैंने साथ ही बात होगी आज घटते जल स्तर के बारे में। और आज के विशेष सेगमेंट में गैर संचारी रोग के अंतर्गत हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। तो बहनों ज़्यादा देर न करते हुए बात करेंगे आज के दिन के बारे में। बहनों आज मई माह का दूसरा रविवार है और आज का दिन पूरी दुनिया की हर माँ के नाम अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हर माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए बिना किसी स्वार्थ के हर जिम्मेदारी निभाती है। ऐसे में साल का ये खास दिन उनकी ममता, त्याग और प्यार को दिल से धन्यवाद कहने का मौका देता है। मैंने हमें माँ के द्वारा हमारे लिए किए गए उन अनगिनत त्याग और संघर्ष के पलों को न केवल आज के दिन बल्कि जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि वो माँ ही होती है जिसने हमें ये सुंदर संसार दिखाया, जीवन की हर कठिन डगर पर सावधानी से और सुरक्षित चलना सिखाया। तो चलिए कार्यक्रम में आज की क्षेत्र संकलित बातचीत में आपको सुनाते हैं।

0: माँ जीवन का आधार विषय पर श्रीमती बबीता सहलोनी से हमारी ये बातचीत।
1: माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं तो कुछ नहीं। माँ से अलग जीवन अधूरा है, रिक्त है। धरती पर ईश्वर का सबसे प्यारा रूप है माँ। त्याग, सहनशीलता और प्रेम की धूप है माँ। शिशु की पहली शिक्षिका, ममतत्व और वात्सल्य की मूरत, धैर्य, सेवा, त्याग की प्रतीक है माँ। माँ के बिना हम संसार की कल्पना नहीं कर सकते और हर बच्चे के लिए उसका संसार ही होती है माँ। तो बहनों, आज राष्ट्रीय माता दिवस के अवसर पर श्रीमती बबीता सहलोनी, सचिव कुर्मांचल सांस्कृतिक परिषद देहरादून से हम हर माँ से जुड़ी कुछ बातें की अपनी आज की क्षेत्र संकलित बातचीत के माध्यम से कर रहे हैं।
2: स्वागत है बबीता जी आपका हमारे कार्यक्रम घर संसार में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो बबीता जी, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये होगा कि परिवार में माँ की भूमिका को आप किस तरह से देखती हैं?
3: देखिए, कोई भी माँ है वो परिवार की धुरी होती है, क्योंकि परिवार का कोई मुखिया कोई भी हो, लेकिन सब लोग माँ से कनेक्टेड रहते हैं। हस्बैंड है, चाहे बच्चे हैं, चाहे दादा दादी हैं, या और भी कोई बुआ वगैरह, चाचा वगैरह कोई भी हैं, वो माँ से कनेक्टेड रहते हैं। क्योंकि लड़की जब शादी हो जाती है, उसके बाद वो अपने सास ससुर को माँ बाप के रूप में ही देखती है, अपने देवर, अपने जेठ जी, अपने ननद, उनको भाई बहनों के रूप में। पति उसके लिए सर्वस्व हो जाता है, और फिर बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे तो कहते हैं कि मुँह से ज़्यादा ब्याज पैदा होता है, तो सब कुछ से ज़्यादा बच्चे प्यार हो जाते हैं। तो एक धुरी की तरह संभालती है एक माँ, क्योंकि जब भी कभी मेरे विचार से जब भी किसी लड़की का जन्म होता है, तो उस समय सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी ये रहती है, लड़की हो गई, मुझे लगता है लड़की हो गई चाहे पुराने जमाने में आज हो, कहीं ना कहीं ये उस माँ को पता होता है कि मेरी बेटी हुई है, तो उसने दो जगह की जिम्मेदारियां निभानी है, वो अपने मायके की भी और ससुराल की।
2: अच्छा बबीता जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर जब भी कोई महिला माँ बनती है तो, और खासतौर पर बेटी की माँ, तो उन्हें समझ में आता है कि अब उनकी जो बच्ची है उसे दो परिवारों की जगह संभालनी है, दो परिवारों की वो धुरी है। तो एक माँ का त्याग और मेहनत और साथ ही संघर्ष हमें खुद माँ बनकर समझ आता है, तो आप इस बात को सही कितना मानती हैं?
3: हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक हम लोग अनमेरिड होते हैं, शादी नहीं होती है, तो हमें हम जो भी फैसले लेते हैं वो ये सोच के हमें लगता है कि हम जो भी सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आपको माँ बनते हैं तो कितनी चीज़ों में, बहुत से ऐसे न्यूमरस एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमें लगता है कि नहीं, मेरी बेटी के लिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ये ज़्यादा बेटर है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसके जीवन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो या कोई भी आगे का भविष्य का सवाल हो, तो माँ उसकी उसका जो हल है वो बेहतर निकालेगी।
2: पिताजी, अपने जीवन में आप आज जिस मुकाम पर है उसमें आप अपनी माँ का कितना योगदान मानती हैं?
3: मैं तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे लिए तो मेरी माँ मेरा भगवान है, और मेरी माँ मेरे साथ है, और मैं यही बोलती हूँ कि मेरा तो सारे जितने तीर्थ और हैं, ये चारों धाम है, तो सब मेरी माँ है। अपने माँ को अच्छे से मुखातर कर लूँ, उसको सुन लूँ, उसकी मनकी कर लूँ, और वही सबसे बड़ी इस समय मेरे लिए अपनी माँ के प्रति उसके लिए प्यार या वो सब कुछ होगा जो उसने किया है। क्योंकि मेरी लाइफ में कभी, मुझे याद है बचपन से लेकर आज तक, कभी किसी चीज़ के लिए मुझे कोई ऑब्स्टिकल कुछ नहीं मिला, ये नहीं आप ये नहीं करना है या ऐसा नहीं करना है वैसा नहीं करना है, कोई भी समस्या आई, कुछ भी हुआ, तो हमेशा ही बोला गया कि मैं हूँ, मैं कर लूँगी सब कुछ, जो भी है सब कुछ मम्मी का ही दिया हुआ है।
2: आपको आज के समय की माँ और अपने समय की माँ के जीवन में क्या अंतर महसूस होता है?
3: देखिए, माँ तो माँ है, चाहे पुराने समय की बात करें या आज के समय की। एक बहुत बड़ा जो एक अंतर है वो ये है कि आज सुविधाएं बहुत है, आज की माँ के पास स्वतंत्रता और सुविधाएं, ये दो चीजें बहुत ज्यादा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि पहले के टाइम पर लोग गैस सिलेंडर नहीं होता था, आजकल तो हमारे पास इंडक्शन, गैस सिलेंडर और प्लस मैं कितनी चीजें

0: मैं कर लूंगी सब कुछ, जो भी है सब कुछ मम्मी का ही दिया हुआ है।
1: आपको आज के समय की माँ और अपने समय की माँ के जीवन में क्या अंतर महसूस होता है?
0: देखिए माँ तो माँ है, चाहे पुराने समय की बात करें या आज के समय की। एक बहुत बड़ा जो एक अंतर है वो ये है कि आज सुविधाएं बहुत है। आज की माँ के पास स्वतंत्रता और सुविधाएं, ये दो चीजें बहुत ज्यादा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि पहले के टाइम पर लोग गैस सिलेंडर नहीं होता था, आजकल तो हमारे पास इंडक्शन गैस सिलेंडर और प्लस मैं कितनी चीजें, एयर फ्रायर, बहुत ही हमारे पास इतनी फैसिलिटीज हैं आजकल, इतने इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं किचन, क्योंकि खाना तो खाना ही है कोई भी इंसान है। और एक टाइम ऐसा भी था उस समय की माए बेचारी, वो लकड़ियाँ पहले तोड़ के लाना फिर उस पर पकाना, हमारी नानी लोग करते थे ऐसा, हमने देखा है। और फिर उसके बाद उस पर खाना बनाना, कितना धुआं धूप, मतलब बहुत एक बहुत हार्श लाइफ थी। लेकिन आजकल के टाइम पर सबसे बड़ा जो मुझे अच्छा लगता है, सबसे बड़ी क्रांति, क्रांतियां बहुत आई लेकिन सबसे बड़ी क्रांति किचन क्रांति आई है, मुझे जो हमेशा लगा है मेरे नानी के टाइम से लेकर अभी हमारा देखा कि हमारे किचन में इतने अपरेटस हैं, हमें इतना इजी है कि गैस सिलेंडर में भी प्रॉब्लम हो गई तो आप इंडक्शन में बना लो, एयर फ्रायर में बना लो या माइक्रोवेव में बना लो। लेकिन पुराना टाइम आप भी याद कीजिए और मुझे भी लगता है कि बहुत टफ था। तो ये एक बहुत बड़ा एक बेसिक अंतर बता रही हूँ मैं, गरीब से गरीब, चाहे कोई किसी के पास कितना अमीर हो कितना ही पैसा हो, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। कुकर, कुकर नहीं थे, मतलब मम्मी बताती है बहुत सी चीजें हैं, यानी कि कुकर जब से आया ना ये भी एक बहुत बड़ी क्रांति आई। मैंने कहा मम्मी कुकर, तो बोली हाँ, क्योंकि इन दैट टाइम वो लकड़ी में बनाना है, गीली लकड़ियां हैं और बहुत परेशानी होती थी, बहुत देर में खाना बनता था। आजकल आप लगाओ आपको दाल चावल कुछ भी बनाना है, आपके पास दो कुकर है, आपने 10 मिनट में आपका पूरा खाना रेडी हो जाता है। तो बहुत छोटी चीजें हैं ये कुकर, ये गैस स्टोव, ये इंडक्शन, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी क्रांति लाई है महिलाओं के लिए। वॉशिंग मशीन बहुत महिलाओं के लिए बहुत बड़ा, कैसे कपड़े धोना कितना वो टफ होता था और सूखते नहीं थे कपड़े। और देखिए आज आप कितना ही ठंडा इलाका हो, मुनस्यारी साइड का हाई अल्टीट्यूड एरिया हो, इजीली आप वॉशिंग मशीन में सब ड्राई हो जाता है और
1: बिल्कुल
0: सूख के कपड़े बाहर निकलते हैं, तो बहुत इजी अब कहीं ना कहीं ये हुआ है। ये सारी चीज तो महिलाएं आजकल बहुत कुछ कर पा रही हैं, महिलाओं को
1: बिल्कुल
0: सुविधा है, जॉब करने की सुविधा है, बहुत सी चीजें हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बेसिक अंतर से जो है समझ में आता है। स्वतंत्रता बहुत है,
1: बिल्कुल
0: पहले निकलने देते थे, जॉब नहीं करने देते थे, आजकल तो प्रायोरिटी है आपका लड़का और लड़की हो एक इक्वल प्रायोरिटी है, लड़कियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है आजकल ये चीज।
1: देखिए बबीता जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि आज के दौर में एक माँ ने बहुत क्रांति देखी है, जैसे कि पहले जिस तरह से बहुत सारी दिक्कतें होती थी उन्हें अपने रोज के जीवन में, और आज बहुत सारी सुविधाएं माँ को मिल रही हैं। आज
0: बिल्कुल
1: के दौर में माँ न केवल बच्चे संभाल रही है बल्कि बाहर जाकर काम भी कर रही है और
0: बिल्कुल
1: घर भी संभाल रही है, परिवार भी देख रही है, और इस दोहरी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। लेकिन ऐसे में कई बार क्या होता है कि दोहरी जिंदगी जीते हुए कई बार हम जो माए हैं, हमें ये गिल्ट फील होने लगता है कि हम अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं जितना हमें
0: जी।
1: देना चाहिए। तो माँ के लिए इस तरह से गिल्ट फील करना क्या सही होगा?
0: देखिए गिल्ट फील तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हैं, बाहर का भी देख रहे हैं और कहीं ना कहीं घर तो सफर करेगा, बच्चे छोटे हैं वो भी सफर तो 100% करेगा। तो यहाँ पर प्रायोरिटी क्या है हमारी, वो हमें फिक्स करना पड़ेगा कि हमें ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, क्योंकि बच्चों का एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। आप 10th और 12th लोगों को नरिश करना होता है, उसके बाद बच्चों ने निकलना ही है, वो कोई भी आजकल के दौर की बात कर रही हूँ, तो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो इफ पॉसिबल हम लोग अगर दे सके, क्योंकि मैक्सिमम 10th तक बच्चे मेच्योरिटी आ जाती है उसके बाद। और अगर हम फिर भी नहीं दे पा रहे हैं तो गिल्ट तो नहीं फील होना चाहिए, क्योंकि तो अगर हम बाहर जा रहे हैं और अर्निंग बनी स्पेशली, तो फिर बच्चों के लिए उस तरह से हमें होम ट्यूशंस, बाकी जो भी एक्टिविटीज हैं जो भी बच्चा लाइक करता है वो सब प्रोवाइड करानी बहुत जरूरी है, क्योंकि पैरेलल पाठअप होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि सारी चीजें भी सफर हो रही है, बच्चा पढ़ भी नहीं पा रहा, हमने ढंग के होम ट्यूशंस या फर्दर कुछ और असिस्टेंस उसको नहीं दिया हुआ है, उसकी लाइकिंग के अकॉर्डिंग उसको हम भेज नहीं पा रहे हैं, वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, पेंटिंग में जाना चाहता है, म्यूजिक के कहीं भी, वो सब हम नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर ऐसे बाहर जाके कुछ भी करने का भी कोई फायदा नहीं है।
1: बबीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम से

0: जुड़ी और आपने हमारे साथ बात की।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: माँ जीवन का आधार विषय पर अभी आप बहनों श्रीमती बबीता शाह लोनी से हमारी ये क्षेत्र संकलित बातचीत सुन रहे थे। आइए बहनों आप कार्यक्रम में आगे सुनते हैं दुनिया की हर माँ के नाम ये मधुर गीत।

आइए बहन, अब कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं और आज के गैर संचारी रोग सेगमेंट के अंतर्गत आज हम आपसे बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। बहन, ब्रेन स्ट्रोक जिसे

0: मस्तिष्क आघात भी कहा जाता है एक चिकित्सा आपातकालीन स्थिति है, जिसमें मस्तिष्क के किसी हिस्से में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है या फिर मस्तिष्क की रक्तवाहिका फट जाती है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें हर मिनट कीमती होता है। बिना स्ट्रोक के कारण मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं और स्ट्रोक के कारण ही मस्तिष्क के प्रभावित हिस्से के अनुसार विभिन्न शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि बोलने, चलने या सोचने में कठिनाई होना। ब्रेन स्ट्रोक के कारण तेजी से और सही उपचार न मिलने पर गंभीर और स्थायी नुकसान हो सकता है, जिसमें शारीरिक विकलांगता, याददाश्त की कमी हो सकती है और कभी कभी ब्रेन स्ट्रोक के कारण व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसलिए ब्रेन स्ट्रोक के लक्षणों की पहचान कर तुरंत चिकित्सा सहायता लेना महत्वपूर्ण होता है। ब्रेन स्ट्रोक के कई लक्षण हो सकते हैं, अचानक चेहरे या हाथ पैर में कमजोरी या सुन्नपन आ जाना, विशेष रूप से शरीर के एक हिस्से में, तो ऐसे में देरी ना करें, तुरंत चिकित्सक के पास जाके इलाज करवाएं। इसके अलावा व्यक्ति को कई बार अचानक बोलने में कठिनाई हो सकती है, उसकी बोली अस्पष्ट हो सकती है और कई बार ये स्थिति लंबे समय तक बनी रह सकती है। यानी कि आप अपने रोज़मर्रा के कामों में आप ध्यान दोगे कि कभी कभी आपको आपके शब्द पूरे नहीं हो रहे हैं, या आप किसी वस्तु को पकड़ रहे हैं, किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं घर में काम करते हुए, तो आप उस वस्तु को अच्छे से नहीं पकड़ पा रहे हैं, आपकी पकड़ मजबूत नहीं है, तो ये सब कारण ब्रेन स्ट्रोक के हो सकते हैं, जो कि धीरे धीरे बढ़ता है। इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक से एक या फिर दोनों आंखों से अचानक दृष्टि बाधित हो सकती है, कई बार हमें धुंधला दिख सकता है या फिर कई बार हमें चीज़ें दो दिखाई देने लगती हैं। इसके अलावा अचानक संतुलन खोना, चक्कर आना, जिससे कि व्यक्ति अचानक गिर जाए, कई बार हम इसे कमजोरी का लक्षण मान करके यूं ही नज़रअंदाज कर जाते हैं, लेकिन यह भी ब्रेन स्ट्रोक का कारण हो सकता है। और इसके बाद कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक से हमारे सिर में दर्द होता है, तो हम उसे गैस या फिर माइग्रेन मान लेते हैं, लेकिन वह भी ब्रेन स्ट्रोक के कारण हो सकता है। इसके अलावा अचानक हमारी मानसिक स्थिति में बदलाव आ सकता है, व्यक्ति भ्रमित हो सकता है, निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। तो मैंने ये कुछ कारण हैं ब्रेन स्ट्रोक के। अब इन ब्रेन स्ट्रोक की रोकथाम के लिए हमें नियमित रूप से बीपी और शुगर की जांच करानी चाहिए, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना चाहिए और नियमित व्यायाम तो ज़रूरी है ही। इसके अलावा धूम्रपान और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए, साथ ही तनाव मुक्त रह करके जीवन जीना चाहिए, क्योंकि तनाव ही आजकल सभी बीमारियों की मुख्य जड़ है। तो बहनों, ये थे आज के गैर संचारी रोग के अंतर्गत ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जानकारी। आइए अब कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं महत्वपूर्ण संदेश।
1: Built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
2: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
4: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for Rs. 10.99 lakh with a battery EMI of just Rs. 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
2: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
2: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 8999 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa.
0: बहनों, धरती पर जीवन जीने के लिए जितनी हवा, सूर्य की रोशनी, अन्न जरूरी है, उतना ही आवश्यक है जल। जल जो हर जीव को जीवन देता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव से लेकर विषय

कोशिकाएं जीवों, वनस्पति और हम मानवों के लिए भी जल महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल हमारी रोजमर्रा के कामों के अलावा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। जल का क्या महत्व है, कभी उस सूखे बंजर खेतों में खड़े किसान से पूछा जो जल की कमी के कारण खेतों को बंजर छोड़ने पर मजबूर है। पर बहनों, हमेशा से ऐसा नहीं था। हमारे देश में भी सदा निरा नदियां थी जो हमेशा साफ चमकते पानी के साथ भरी हुई कल कल बहती थी। सुंदर तालाब थे और भूमिगत जल की कोई कमी नहीं थी। पर समय बीतने के साथ आज घटता जल स्तर एक गंभीर समस्या बनता चला जा रहा है। हमारी पहाड़ी क्षेत्रों में भी देखो तो नौलों धारों में हमेशा पानी भरा रहता था। सभी लोग 12 महीनों उन नौलों धारों के ठंडे मीठे पानी का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने घरों में पानी के नल लगाने शुरू किए, विकास के कार्य शुरू किए, तो वो नौलों और धारों को भूलने लगे। परिणाम स्वरूप नौले धारे सूखने लग गए और उनके सूखने का कारण उनका प्रयोग कम होना नहीं बल्कि उन नौलों धारों को रिचार्ज करने वाले पेड़ों, बांज और उतीश का कटान और साथ ही जगह जगह बिल्डिंगों के निर्माण से उन भूमिगत जल स्रोतों तक जाने वाले पानी के भूमिगत चैनलों का क्षतिग्रस्त होना भी है। मैदानों में फसलों के लिए अत्यधिक मात्रा में भूमिगत जल को ट्यूबवेलों के माध्यम से सिंचाई के लिए जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से भी भूमिगत जल स्तर घट रहा है। जिस तेजी से जल स्तर घट रहा है उस तेजी से वर्षा जल उसकी कमी पूरी नहीं कर पा रहा, क्योंकि वर्षा जल खुले कच्चे आंगन और मैदानों में गिरकर भूमि के भीतर अवशोषित होता है। लेकिन आजकल हर जगह फर्श पर सीमेंट और टाइल लगे होने से वर्षा जल जमीन पर अवशोषित न होकर सीधे नालियों, सड़कों से होता हुआ निकल जाता है। साथ ही वनों की कटाई होने से वर्षा होने में भी कमी आई है। वर्षा के जल को सही तरीके से प्रबंधन न करना और उपलब्ध जल स्रोतों का संरक्षण करा करना भी घटते जल स्तर के लिए जिम्मेदार है। बहनों, घटते जल स्तर के कारण पेयजल की समस्या का सामना हम कर रहे हैं। सिंचाई के लिए पानी न मिलने से फसल उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा भी खतरे में है। भूमिगत जल स्तर में भारी गिरावट से कई इलाके सूखे की चपेट में आ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए? तो बहनों, सबसे पहले तो हमें पेड़ों को कटने से रोकना होगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे ताकि पेड़ वर्षा को आकर्षित करें और वर्षा हो, पहाड़ों पर बर्फबारी हो ताकि ग्लेशियरों पर बर्फ जमे और नदियों का जलस्तर बढ़े। भूमिगत जल स्रोतों के आसपास साफ सफाई और पेड़ पौधों का रोपण ताकि भूमिगत जल स्रोतों में पानी का स्तर बढ़े। साथ ही वर्षा जल के संचय के लिए हमें अपने घरों में वर्षा जल को जमीन में सोखने के लिए पेबल ड्रेन बनाने चाहिए ताकि पानी जमीन में अवशोषित हो सके और भूमिगत जल का स्तर बढ़ सके। मैंने जिस तरह हमें अपने भविष्य के लिए हम रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी की बचत करके रखते हैं ताकि हम अपना भविष्य, अपना बुढ़ापा अच्छे से काट सकें, ठीक उसी तरह अगर हमें धरती पर जीवन को बचाना है तो जल को बचाना होगा, क्योंकि जल है तो कल है।

मैंने उस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी दीपिका पंत। बहनों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? इस विषय पर आप अपने विचार हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411100122 पर भेज सकते हैं। आपके सुझावों, आपके विचारों को प्रत्येक माह घर संसार कार्यक्रम के अंतिम अंक में शामिल किया जाएगा। और बहनों, इसी के साथ आज के घर संसार कार्यक्रम से अपनी सखी किरण बिष्ट को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी मैंने सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का

0: पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: आंखों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उधम सिंह नगर जिले के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया और देहरादून में पुलिस द्वारा वीकेंड पर विशेष यातायात प्लान लागू किया गया है। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में सफल और शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त दो दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। उन्होंने आज सुबह तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर मंदिर की पूजा अर्चना की। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा, अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। बागेश्वर जिले की सुंदरडुंगा घाटी में 15,092 फीट ऊंचे कनकाटा दर्रा को युवा ट्रैकर्स की टीम ने कठिन परिस्थितियों के बीच 3 दिनों में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कनकाटा दर्रा को सुंदरडुंगा घाटी के सबसे कठिन और रोमांचक ट्रैकों में गिना जाता है। दुर्गम पहाड़ी रास्ते, बर्फ से ढके ट्रैक और ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी जैसी चुनौतियों के बावजूद टीम ने साहस, धैर्य और मजबूत टीम भावना का परिचय दिया। ट्रैक के दौरान कई बार खराब मौसम ने मुश्किलें बढ़ाई, लेकिन टीम के सदस्यों ने संयम और आपसी तालमेल के साथ हर बाधा को पार किया। माउंटेन गाइड और अभियान दल के लीडर जीतू दानू ने कहा कि इस तरह की साहसिक अभियान युवाओं को एडवेंचर टूरिज्म की ओर आकर्षित करते हैं, साथ ही इससे बागेश्वर जैसे पर्वतीय क्षेत्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है।
1: कनकाटा पास ट्रैक था ये, टोटल 4 लोग थे इसमें, 3 लोगों ने कनकाटा पास पूरा किया और एक जो मेंबर थे हमारे वो सुखराम से वापस आए, उसी रूट से सामान लेकर वापस आए, वो बैकअप टीम में थे। और इसमें एक एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट थे, प्रकृति के प्रेमी थे, वो चंदन नयाल जी थे नैनीताल से, और एक मोहन सिंह डानू थे वाछम से, और एक मैं था जो लीड कर रहा था। और इसमें पूरी सेफ्टी के साथ पूरा सेफ्टी गियर हमारे पास उपलब्ध था और इसको हमें पूरा करने में जातुली 3 दिन लगे। 5 तारीख से ये शुरू किया था हमने और 7 तारीख को कंप्लीट हो गया था ये हमारा। और इस पर थोड़ा सा हमें रिसर्च भी करना था। अभी देखो तो क्लाइमेट चेंज की कोई बात नहीं कर रहा है, इसका प्रभाव काफ़ी पड़ा है पहाड़ों में। आने वाले समय में अगर हम अवेयर नहीं हुए, पूरे सारे लोग, मतलब विभाग से लेकर हमारे लोकल लोगों से लेकर सभी लोग अगर अवेयर नहीं हुए, तो हमारे पहाड़ ख़त्म हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इस टाइम पर जितना हैवी स्नोफॉल वहाँ पर हुआ है, जो स्नो हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो पहले ऐसे हुआ नहीं करता था।
0: मुख्यमंत्री के निर्देशों पर संपूर्ण प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर दून पुलिस द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अभियुक्तों के साथ साथ नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ड्रंक एंड ड्राइव के विरुद्ध विशेष अभियान चलाते हुए पुलिस द्वारा अलग अलग थाना क्षेत्र में विगत 2 दिनों में शराब पीकर वाहन चलाने वाले 67 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा सभी वाहनों को सीज किया गया है। इसके अतिरिक्त अलग अलग थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 35 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा थाने लाया गया, जिन्हें थाने पर सख्त हिदायत देते हुए उनके पुलिस एक्ट में चालान किए गए।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उधम सिंह नगर जिले के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें आपसी सुलह समझौते के आधार पर एमवी एक्ट और पारिवारिक मामलों, प्री लिटिगेशन और बैंकों से लिए गए ऋण के मामले सुलझाए गए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में वादकारियों को कोर्ट फीस वापसी की सुविधा भी प्रदान की गई। वहीं विभिन्न बैंकों के ऋण ओर से ऋण संबंधी मामलों के निस्तारण के लिए स्टॉल लगाए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ममता पंत ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आम जन को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है, जिससे बेहतर परिणाम भी देखने को मिले हैं।
3: राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है नालसा के तत्वाधान में। इसमें शमनीय अपराध, एमवी एक्ट, पारिवारिक मामले सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे। त्वरित न्याय के लिए ही लोक अदालत लगाई गई है। सिविल वादों के समय अगर समझौता होता है, ये बेनिफिट मिल सकता है पार्टी को कि कोर्ट फीस इसमें वापस हो जाती है। साथ साथ हमने प्री लिटिगेशन मामले, जैसे बैंक के लोन के संबंधित, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लोन संबंधित हमने प्री लिटिगेशन मामले लगाए गए हैं। विभिन्न विभिन्न बैंक द्वारा अपना स्टॉल लगाया गया है। काफी नोटिसेस, करीब 2-3 हज़ार के करीब नोटिसेस मेरे साइन से गए हैं और लोगों का काफी अच्छा सहयोग मिल रहा है।
0: विशेष प्रांतों, जनपदों से देहरादून शहर होते हुए मसूरी, ऋषिकेश, चकराता आदि स्थानों पर वीकेंड के दौरान पर्यटकों एवं स्थानीय नागरिकों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर पुलिस द्वारा वीकेंड पर विशेष यातायात प्लान लागू किया गया है, जिसमें शहर में यातायात संचालन को प्रभावी एवं

0: व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से यातायात के दबाव वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त ड्यूटी पॉइंट चिन्हित करते हुए वहां पुलिस बल को नियुक्त किया गया है। पुलिस द्वारा लागू किए गए विशेष ट्रैफिक प्लान का असर वीकेंड की शुरुआत में ही दिखा है, जहां बाहरी प्रदेशों जनपदों से भारी संख्या में पर्यटक वाहनों के जनपद में आने के बाद भी जनपद में कहीं भी यातायात के दबाव अथवा जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है। अल्मोड़ा जिले के सल्ट स्थित झीमार क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रहे हॉट मिक्स प्लांट पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्लांट को सील कर दिया है। संयुक्त निरीक्षण टीम को जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं मिली, जिसके बाद मौके पर ही कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि पिछले करीब 2 महीने से झीमार क्षेत्र में नियमों को दरकिनार कर हॉट मिक्स प्लांट का संचालन किया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने प्लांट से पर्यावरण और सुरक्षा को खतरा बताते हुए प्रशासन से शिकायत की थी। मामला मुख्यमंत्री पोर्टल तक पहुंचने के बाद प्रशासन, खनन विभाग और संबंधित अधिकारियों की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि प्लांट संचालक ने बिना आवश्यक अनुमति के संचालन शुरू कर दिया था। खनन अधिकारी राहुल नेगी ने बताया कि कई नियमों के उल्लंघन और गंभीर खामियों को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से प्लांट को सील कर दिया है।
1: मौके स्थल पर पाया गया कि इनके द्वारा CTO और CDA की परमिशन नहीं ली गई थी और पोर्टल भी नहीं खोला गया है खनन विभाग से, जिस कारण से इसको अवैध मानते हुए इसको मौके स्थल पर सीज किया गया एवं अग्रेतर कार्रवाई हुई, तो SDM साहब पर इसमें रिपोर्ट दी गई है। खनन विभाग है और आपका लोक निर्माण विभाग है और आपका पॉल्यूशन कंट्रोल आई है, और जो भी विस्तृत इसकी रिपोर्ट होगी SDM साहब को दी जाएगी। तब तक प्लांट बंद रहेगा और प्लांट सीज करके सुपुर्दगी के लिए हमने दी है और अग्रेतर कार्रवाई तक किस्मत नहीं होती है तो न प्लांट खुला जाएगा नहीं फुट फुट यहाँ पर किया।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उधम सिंह नगर जिले के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया और देहरादून में पुलिस द्वारा वीकेंड पर विशेष यातायात प्लान लागू किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। दोपहर के 1:15 हुए हैं। लीजिए पेश है प्रोग्राम सुगम संगीत। सुगम संगीत प्रोग्राम का आगाज हम कर रहे हैं उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की गाई इस गजल के साथ।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: सुगम संगीत प्रोग्राम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। इस प्रोग्राम में लीजिए पेश है जावेद अख्तर का कलाम। गुलकारा हैं लता मंगेशकर।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: सुगम संगीत प्रोग्राम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। इस प्रोग्राम में अभी आप सुन रहे हैं कुमार सानू का गाया ये नगमा।

0: कुमार सानू से अभी आप सुन रहे थे सुरेंद्र सागर का कलाम। इसी के साथ आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है रूपक। टैगोर विश्व कवि विश्व मानव। प्रस्तुति है डॉक्टर संजय सिंह वर्मा की।
1: प्रस्तुत है गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के कुछ प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित रूपक विश्व कवि विश्व मानव। आलेख और प्रस्तुति डॉक्टर संजय सिंह वर्मा।
2: मैं दूरस्थ वस्तुओं के निमित्त अशांत और पिपासा कुल हूं। मेरी आत्मा सुदूर धुंधले क्षितिज का स्पर्श करने को आतुर होकर दौड़ पड़ती है।
3: जदि तोर डाक सुने क्यों ना आसे तबे एकला चलो रे। जदि तोर डाक

0: राष्ट्रता स्थापित करने में प्रयत्नशील थी। यद्यपि वो हमारी प्राचीन संस्कृति के कट्टर हिमायती थे, इस बात को समझने में उन्हें देर ना लगी कि विभिन्न संस्कृतियों के समन्वय द्वारा ही व्यापक राष्ट्रीयता को जन्म दिया जा सकता है।
1: वे न केवल कवि और नाटककार थे, अपितु शिक्षक, गंभीर चिंतक, समाज सुधारक, चित्रकार, रंगमंच निर्देशक, संगीत प्रणेता, राष्ट्रवादी और अंतरराष्ट्रीयवादी थे। किंतु उनके इन विभिन्न क्रियाकलापों का एक ही प्रेरणा स्रोत था और वो था प्रखर आशावाद। इस देश की आत्मा में समाहित होते हुए भी उनका दृष्टिकोण वैश्विक सार्वभौमिक था। क्या था रविंद्र का विश्व मानव? लेखक और चिंतक प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी।
2: विदेश में जो कॉस्मोपॉलिटिज्म का नारा लगा था, विश्व नागरिकता, उसका अर्थ ये था कि आपको विश्व नागरिक बनना है, अपने देश के सब कुछ से मुक्त होकर विश्व का नागरिक बनना है। इसको रविंद्र ने कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, जो देश है उसको आप छोड़ नहीं सकते, देश के आधार पर ही आप विश्व नागरिक बन सकते हैं। अपनी जो संस्कृति है, अपना जो देश है, अपने देश का जो इथॉस है, उससे हटकर विश्व नागरिकता की बात नहीं की जा सकती।
3: आओ आर्य अनार्य पधारो, हिंदू मुस्लिम भाई, आओ हे अंग्रेज आज तुम, आओ बंधु ईसाई, आओ ब्राह्मण कर पवित्र मन, सबके कर धर लाओ, आओ पतित हर्ष पुलकित चित, सब अपमान भुलाओ, आज मातृ अभिषेक चलो झट, लाया नहीं गया मंगल घट, सबके सरस परस से पावन तीर्थ सलिल भर, इस भारत के महा मनुज के सागर तट पर।
0: विश्व मानव रविंद्रनाथ का जन्म मई 1861 में जोड़ा सांको कोलकाता में हुआ। पिता दार्शनिक और समाज सुधारक महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर और माता शारदा देवी की 14वीं संतान रविंद्र का लालन पालन अभिजात्य परिवेश में परंतु कठोर अनुशासन में किया गया।
1: वो अपने आत्मलीन स्वभाव के कारण बेहद संवेदनशील थे। घर की चार दीवारी में बंद बालक कवि को संस्कृत शिक्षक शाकुंतलम और अंग्रेजी शिक्षक मैकबेथ पढ़ाते थे, साथ ही बांग्ला पद्यांशों का पाठ भी जारी था।
0: आरंभिक शिक्षा ओरिएंटल सेमिनरी तथा नॉर्मल स्कूल में हुई, मगर घर के साहित्यिक और बौद्धिक वातावरण का प्रभाव इन पर सबसे ज्यादा पड़ा और रविंद्र में साहित्यांकुर फूटने प्रारंभ हो गए। आरंभिक कुछ लेख और निबंध ज्ञानांकुर नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए, जिन्हें बाद में स्वयं गुरुदेव ने मात्र पद्य प्रलाप की संज्ञा दी।
1: ये पद्य प्रलाप शीघ्र ही सुंदर आलाप में रूपांतरित हो गया। मात्र 12 साल की उम्र में तत्व बोधनी जैसी प्रौढ़ पत्रिका में उनकी अभिलाषा शीर्षक कविता का छपना कम विस्मयकारक नहीं है। कुछ समय बाद राधा कृष्ण के अनन्य प्रेम को निवेदित भानु सिंह ठाकुरेर पदावली का प्रकाशन हुआ।

गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का उदय बंगाल में उस समय हुआ जबकि प्राची और प्रतीची का सम्मेलन प्रारंभ हुआ था और पाश्चात्य सभ्यता भारतीय सभ्यता के ऊपर अपनी श्रेष्ठ

0: इस कृति के भारतीय पत्रिका में प्रकाशन के बाद तो सारे बंगाल का ध्यान इस कवि भानु सिंह पर गया, जो और कोई नहीं बल्कि स्वयं रविंद्र थे।
1: लगभग इसी समय अपने पिता महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर के साथ रविंद्र को एक लंबे प्रवास पर अमृतसर और डलहौजी जाना पड़ा। यात्रा में पिता उन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, धर्म, आध्यात्म और खगोल विज्ञान की शिक्षा भी दिया करते थे।
0: कविता, साहित्य और प्रकृति प्रेम तो उनके खून में था ही, हिमालय में उसे और तराशा। कुछ पंक्तियां उनकी आरंभिक रचना प्रभात जागरण से।
2: अंधियारी कंदरा में पंछियों का गान पसार रहा है पांखें, जाने कैसे संभव हो गया कि गहरी नींद से जगकर जीवन आज खोल रहा है आंखें। बहता जाऊंगा धरती पर कल कल छल छल, गाता जाऊंगा प्रकृति की करुणा का गीत। कितना प्रखर है सूर्य का आलोक और कितना मधुर खग संगीत।
1: चार महत्वपूर्ण उपन्यासों चोखेर बाली, नौका डूबी, प्रजा पातार निबंधों और गोरा का लेखन भी इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रख्यात लेखिका मृदुला गर्ग।
3: मुझे गोरा इसीलिए बहुत दिलचस्प लगता रहा है और बहुत महत्वपूर्ण कि वो एक यात्रा को कथ्य बनाता है, एक विवेक की यात्रा को, अंतर चेतना की यात्रा को। मुझे लगा कि उपनिवेशी काल का

0: प्रजा पातार निबंधों और गोरा का लेखन भी इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रख्यात लेखिका मृदुला गर्ग।
1: मुझे गोरा इसीलिए बहुत दिलचस्प लगता रहा है और बहुत महत्वपूर्ण कि वो एक यात्रा को कथ्य बनाता है, एक विवेक की यात्रा को, अंतर्चेतना की यात्रा को। मुझे लगा कि उपनिवेशी काल का सबसे अंतर्भेदी उपन्यास है और सबसे बहुआयामी उपन्यास है।
2: यही नहीं, कई नाटकों, हास्य कौतुक, व्यंग्य कौतुक, बाल कविताओं का संग्रह, शारदोत्सव, चार विशिष्ट काव्य संकलनों, नैवेद्य, शिशु, खेरा और गीतांजलि के प्रकाशन के साथ वो बांग्ला साहित्य के सर्वप्रिय, अनन्य और अप्रतिम हस्ताक्षर के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। एक कवि के अलावा वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने इतने अनुशासनों को एक साथ साधा हो। कवि और चिंतक अशोक वाजपेयी।
3: रवीन्द्रनाथ ठाकुर, मैं समझता हूँ कि भारतीय साहित्य के इतिहास में एक अभूतपूर्व प्रतिभा है। उनसे बड़े साहित्यकार पहले हुए हैं, कालिदास, वाल्मीकि, लेकिन रवीन्द्रनाथ की तरह वो इतनी विधाओं में मूर्धन्य नहीं थे जितना अकेले रवीन्द्रनाथ थे। कविता में, उपन्यास में, गल्प में, चिंतन में, शिक्षा में, कला में, संगीत में, नृत्य में, रंगमंच में कोई ऐसा व्यक्ति भारतीय परंपरा में नहीं हुआ। दिलचस्प बात यह है कि रवीन्द्रनाथ का प्रभाव समकालीन विश्व साहित्य पर जो पड़ा वो भी पहले कभी किसी का नहीं पड़ा।
2: १९१० में रचित गीतांजलि, जिसे इन्होंने स्वयं अंग्रेजी में अनुवादित किया, 1913 के विश्व के सर्वोच्च साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रचना है।
4: मैं बांसुरी बजाऊं मुझको दिया यज्ञ में भार, गीतों में गूंथता फिरूं मैं हंसी रुदन का हार।
0: कवि के अनुसार उनके ये गीत निराभरण हैं, जिनमें परिधान और अलंकार का व्यर्थ अहंकार नहीं है। गीतांजलि के कुछ पद बांग्ला गायक अनिरुद्ध नायक के स्वर में।

0: ये देखकर आश्चर्यचकित और गर्वित होना स्वाभाविक ही है कि दो दो राष्ट्रों भारत और बांग्लादेश को राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक और ओ आमार सोनार बांग्ला प्रदान करने वाले रविन्द्रनाथ ही एकमात्र ऐसे भारतीय कवि हैं जो निर्विवाद रूप से विश्व कवि भी हैं। बांग्लादेश की अस्मिता के साथ गुरुदेव का एक अनन्य रिश्ता है। बांग्लादेश सरकार के सूचना प्रसारण सचिव श्री अब्दुल मलिक,
1: तिनी तो विश्व कवि, बांग्लादेशेर सकल मानुष सबाई थाके श्रद्धार असीम श्रद्धार चोखे देखें, तिनी आमादेर जातीय संगी।
2: वो तो विश्व कवि है, बांग्लादेश के सभी लोग उन्हें असीम आदर और श्रद्धा से देखते हैं। उन्होंने हमारे राष्ट्रगान की रचना की है और हम अपने राष्ट्रगान के लिए गौरवान्वित हैं। वो हमारे कवि हैं, उनके प्रति हमारा गर्व अपरिसीम है।
3: प्रखर राष्ट्रवादी रविंद्र का मन 1905 की बंग भंग की घटना से घोर व्यथित हो उठा। देशभक्ति में रंगे रविंद्र ने सभाओं और रैलियों की झड़ी लगा दी। उनकी लेखनी देश के लिए आग उगल रही थी। उनके गीत बंगाल का बच्चा बच्चा गा रहा था। दमनकारी गोरे शासन ने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकालना प्रारंभ कर दिया। तब कवि ने महर्षि

0: अरविंद घोष को साथ लेकर स्वदेशी शिक्षा संस्थाएं भी खोली। इतिहासकार मृदुला मुखर्जी,
1: पॉलिटिकली वो बिल्कुल मूवमेंट में थे। इन्होंने आइडिया दिया था कि सबसे पहले जो मीटिंग हुई कलकत्ते में मूवमेंट को इनॉग्रेट करने के लिए, स्वदेशी मूवमेंट को, कि हर कोई जो है एक दूसरे के हाथ में राखी बांधे, एक सॉलिडारिटी। राखी को इन्होंने एक सॉलिडारिटी का सिंबल बना दिया कि एक तरह से हम प्लेज ले रहे हैं कि हम सब एक साथ है। तो सड़कों पे उतर पे सब लोग एक दूसरे के हाथ में राखी बांधते थे।
2: आंदोलन के हिंसक हो जाने की वजह से बाद में रविंद्रनाथ ने इससे किनारा कर लिया, परंतु अपने गीतों और लेखों के माध्यम से राष्ट्रीयता के अलख को जगाए रखा। और 1919 के जघन्य जलियांवाला बाग की घटना के बाद ब्रिटिश सरकार से मिली सर की उपाधि लौटा दी।
3: अब समय आ गया है जबकि अपमान के बेमेल संपर्क में सम्मान के तमगों से हमारी लज्जा और भी बढ़ जाती है, और मैं सब विशिष्टताओं को छोड़कर अपने उन भाइयों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो कि अपनी तथा कथित नगण्यता के कारण अमानुषिक अपमान सहने के लिए बाध्य हैं। इन्हीं कारणों से मैं दुखपूर्वक ये कहने के लिए विवश हूं कि आप मुझे सर की पदवी से मुक्त कर दें।
0: वे तत्कालीन शिक्षण पद्धति को लेकर बड़े चिंतित रहते थे। इसी कारण दिसंबर 1901 में शांति निकेतन में एक आश्रम शुरू किया। नाम रखा गया ब्रह्मचर्य आश्रम। 5 छात्र और इतने ही शिक्षकों के साथ प्रारंभ हुए इस आश्रम में प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक माना गया। पाठ्यक्रम की पुस्तकें स्वयं गुरुदेव ने लिखी थीं। 1921 आते आते इसका नाम विश्व भारती हो गया, जिसके द्वार पूरी दुनिया के लिए खुले थे। विश्व भारती के शिक्षक डॉक्टर रामेश्वर मिश्र,
4: शिक्षा की जो शांतिनिकेतन में व्यवस्था की वह बालकों के परिपूर्ण विकास की ओर उनकी दृष्टि थी कि बालक यहाँ प्रकृति के सानिध्य में रह करके शिक्षा ग्रहण करेंगे, वे केवल पुस्तकीय शिक्षा में आबद्ध नहीं रहेंगे, प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करेंगे, समाज से शिक्षा ग्रहण करेंगे, ग्रामीण जनजीवन से शिक्षा ग्रहण करेंगे और साहित्य, समाज, संस्कृति, कला, संगीत, इन सब पर उनकी रुचि होगी।
2: रवींद्रनाथ एक महान यायावर थे। उन्होंने अनेक देशों की यात्रा की, विभिन्न संस्कृतियों के लोगों से वो सदा आकर्षित रहते थे। इसलिए नहीं कि उनमें भिन्नता थी, वरन इसलिए कि उनमें समानता थी, क्योंकि वे भी वैसे ही मानव थे। वो जहां जहां भी गए वहां उन्हें मानवता की ही उपलब्धि हुई। विश्व भारती के रूप में मानव की इसी एकात्मकता को सामने रखा। सुशांत दास गुप्ता, पूर्व कुलपति, विश्व भारती।
5: टैगोर didn't want to call it विश्व भारती यूनिवर्सिटी और विश्व भारती विश्वविद्यालय, बिकॉज विश्व इज यूनिवर्स एंड सो यूनिवर्स कनोट्स टू यूनिवर्सिटी एंड भारती हैज मल्टीपल मीनिंग्स। भारती कैन बी थॉट ऑफ द नेम ऑफ गॉडेस सरस्वती, व्हिच इज आवर गॉडेस ऑफ लर्निंग एंड विजडम, एंड भारती ऑल्सो कनेक्ट्स टू भारत इंडिया। So Vishwabharati is a world university, though located in Shantiniketan, but is a place where East meets the West. That is what he felt.
0: सुप्रसिद्ध साहित्यकार बनारसी दास गुप्त शांति निकेतन के अपने संस्मरणों के साथ।
6: मई सन 1918 की बात है। दीनबंध सीएस एंड्रूज के आदेश अनुसार मैंने शांत निकेतन की तीर्थ यात्रा की थी। सौभाग्य से बुधवार का दिन था, क्योंकि वहाँ प्रत्येक बुधवार को प्रार्थना मंदिर में गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का प्रवचन हुआ करता था। मंदिर में हम सब इकट्ठे थे, विद्यार्थी समाज, अध्यापकगण और अतिथि लोग। हम सब गुरुदेव की प्रतीक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे वे पधारे

0: और वेदी के निकट बैठ गए। गुरुदेव का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। उनका दिव्य मुखमंडल दर्शक को मंत्रमुग्ध सा कर देता था। दीनू बाबू और उनकी पार्टी ने बड़े मधुर स्वर में गुरुदेव का कोई गान गाया और तत्पश्चात गुरुदेव का प्रवचन हुआ। वाणी की वो तेजस्विता, स्वर का वो उतार चढ़ाव, शब्दों का वो चयन, सभी चीजें निराली थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि हम उपनिषद काल के किसी ऋषि का प्रवचन सुन रहे हों।
1: आइए हम भी सुनें ऋषि रविंद्र को उनके ही स्वर में।
2: India's great achievement, which is still thought deep within her heart, is waiting to unite within itself Hindu, Muslim, Buddhist, and Christian, not by force, not by the apathy of resignation, but in the harmony of active cooperation. Ananda Devaka.
3: गुरुदेव के विस्तृत रचना संसार ने हिंदी और बांग्ला फिल्मकारों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। विमल राय ने उनकी रचना दुई बीघा जोमी पर दो बीघा जमीन फिल्म बनाई। चोखेर बाली, नौका डूबी और काबुलीवाला जैसे कुछ अन्य चलचित्र भी रविंद्र की रचनाओं पर आधारित हैं।

0: जीवन के उत्तरार्ध में गुरुदेव का ध्यान चित्रकला की ओर गया और उन्होंने 3000 से ज्यादा चित्रों की रचना की। ये एक विशिष्ट शैली के चित्र हैं, जिसमें भारतीय तथा पश्चिमी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। नेशनल बुक ट्रस्ट की पूर्व निदेशक और साहित्यकार वर्षा दास,
1: भारत की प्रथम आधुनिक कला रविंद्रनाथ में देखी जाती है। वो कहते थे कि मेरे चित्रों का प्रारंभ कोई अनुशासनबद्ध शिक्षा में नहीं हुआ या किसी परंपरा में भी नहीं हुआ, वो तो पांडुलिपि में रद्द किए गए भाग जब एक पापी की तरह अपनी मुक्ति के लिए रोने लगे तो मैं फिर अपना स्वाभाविक कार्य छोड़कर उनको मोक्ष देने की ओर मुड़ जाता था। ये जो काट छाट थी वो असुंदर ना लगे इसलिए रविंद्रनाथ उसे कुछ आकार देते थे। तो इसमें हम देखते हैं कि कहीं पे कोई पक्षी बन गया है, तो कहीं पे कोई पेड़ बन गया है, कोई फूल बन गया है। वे कागज और स्याही से चित्र करते थे, तैल रंगों का उपयोग नहीं करते थे। उनकी शैली अपनी व्यक्तिगत और लाक्षणिक शैली थी कि दूसरा कोई भी कलाकार उसका अनुकरण नहीं कर सकता।
0: रविंद्रनाथ की विराट प्रतिभा का महत्वपूर्ण अंग रहा है संगीत, जो उनके विपुल और विविध रचनाओं का अनिवार्य अंश रहा है। रविंद्र संगीत में गीत भाव, लय, छंद, स्वर और सुर का अद्भुत ससंजन है, बता रहे हैं सुविख्यात कर्नाटक गायक और संगीतज्ञ डॉ. के. वागीश।
2: उन्होंने अपना रविंद्र संगीत में कई जानर्स ऑफ म्यूजिक, लाइक वेस्टर्न म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक, शब्द, क्लासिकल म्यूजिक, सब चीजों का प्रयोग करके एक अपना ही ढंग से उसको प्रस्तुत किया। उन्होंने वो आनंद लोके, मंगला लोके गाया, इट्स अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग रविंद्र संगीत में। और

0: ये ट्यून मैसूर का पैलेस का एंथम था। वो गाना सुनेंगे आप तो आपको ताजुब होगा कैसे उन्होंने लिया है। कायौं श्री गौरी करुणा लहरी तो ये जाक्षी, देखिए वही, ही हैज टेकन द सेम ट्यून। कायौं श्री गौरी, थोड़ा रिदम चेंज किया है उन्होंने, आनंद लोके, सो सम स्लाइट अडॉप्टेशन ही हैज मेड इन हियर सॉन्ग।
1: बचपन से पूरे जीवन काल तक सुरगंगा अलग अलग रूपों में रविंद्रनाथ की देह के भीतर बहती रही। कभी जोड़ा सांकों के बड़े आंगन में ये परिवार संगीत बन गया, तो कभी बाउल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के लोक धुनों से निकली मिठास, कभी शांति निकेतन में सुबह की उम्मीद भरी धुन, तो कभी एक के बाद एक अपनों की विदाई से उपजा संध्या संगीत, तो कभी विस्तृत पश्चिम की परदेसी सरगम। जब इसने गुरुदेव के दिल और दिमाग को झंझनाया तो फूटी संगीत की अलौकिक धारा रविंद्र संगीत। कुछ सुर कुछ स्वर प्रसिद्ध बांग्ला गायिका प्रतिमा मलिक से।
2: आप सोचिए, अब घर में अकेला है, बहुत क्लाउडी स्काई, आपको थोड़ा सा उदास ऐसे लग रहा है,

वेंटेज है, दूसरा टाइप का सॉन्ग, काजरी चैती जैसे कोई एक ठो सीजन को लेके होता है, तो इधर रविंद्रनाथ का भी सब सीजनल सॉन्ग्स है।

0: आइए जानें कि गुरुदेव की रचनाओं में व्याप्त भारतीयता को निष्णात कवि और चिंतक गंगा प्रसाद विमल किस तरह देखते हैं।
1: रविन्द्रनाथ ठाकुर के समूचे साहित्य विमर्श में अगर कोई चीज उभर करके सामने आती है तो भारत ही है, और भारत का इतना अद्भुत परिदर्शन अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। कवि के रूप में, भारतीय कथाकार के रूप में, भारतीय नाटककार के रूप में, भारतीय चित्रकार के रूप में, भारतीय संगीतकार के रूप में एक अद्वितीय बेजोड़ टैगोर जो हैं वो सब तरफ से भारत की स्थापना करते हैं।

अपने अंतिम समय में गुरुदेव अत्यंत रुग्ण हो गए थे, परंतु शांति निकेतन से पहले की तरह ही उनका जुड़ाव बना रहा। 31 जुलाई 1941 को कलकत्ता में उनका ऑपरेशन किया गया, परंतु ये सफल नहीं हो सका और 7 अगस्त 1941 को दिन में 12 बजे इस महापुरुष ने महाप्रयाण किया। ऐसा लगा मानो

0: इस दिन इस विश्व मानव की आत्मा वाकई परमात्मा से एकाकार हो गई हो।
1: चाहे साहित्य, चाहे रविंद्र संगीत, चाहे विश्व भारती या कैनवस पर उतरे विभिन्न रंग, हर जगह हमें बस इसी विश्व मानव के दर्शन होते हैं जो एक प्रबल आशावाद साथ लेकर चल रहे थे। प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी,
2: जीवन भर जिस यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म या विश्व मानव के वो पक्षधर थे, जीवन के अंत तक आते हुए उन्हें ऐसा लगा कि सारे विश्व में झगड़ा, फसाद, हत्या, युद्ध, स्वार्थ का प्रसार हो गया है। 1941 में दूसरे महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, चारों ओर मौत का हाहाकार सुनाई पड़ रहा है, तो वो अपने को बड़े असहाय मानने लगे थे। उसी बीच उन्होंने आशा का स्वर भी हमें सुनाया कि जीवन का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसी को पकड़े रहना है, उससे अपने को हटाना नहीं है। भले ही तुम्हें कहीं रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा हो, चारों ओर अंधकार है, उस अंधकार में जो दिया लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं वो दिया बुझ गया है, फिर भी घबराओ नहीं, अकेले चलो, अकेले चलो।

0: विश्व कवि विश्व मानव गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के कुछ प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित रूपक अभी आपने सुना। वाचक स्वर राजश्री त्रिवेदी और मनोज माइंडकर, प्रतिभागी स्वर राजीव कुमार शुक्ल और जैनेन्द्र सिंह, प्रस्तुति सहयोग नवोदिता मिश्रा, आलेख संपादन और प्रस्तुति डॉक्टर संजय सिंह वर्मा।
1: किसान भाइयों,
2: रविंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित विश्व कवि विश्व मानव रूपक अभी आपने सुना। प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तराखंड के लोकगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ गढ़वाली लोकगीत। कार्यक्रम के पहले लोकगीत को स्वर दिया है नरेंद्र सिंह नेगी ने।

उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। इस कार्यक्रम में जो लोकगीत आप सुन रहे हैं उसे स्वर दिया है बीना तिवारी ने।

उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ गढ़वाली लोकगीत। कार्यक्रम के समापन में लीजिए प्रस्तुत है माधुरी वर्थवाल और अनिल भारती के स्वर में ये लोकगीत।

बखी मुल्योला बखी पैरोला चले स्याली बाजारे बखी मुल्योला बखी पैरोला चले स्याली बाजारे अठान्यू न की सभुरियूंच चवान्यू न रुमाले अठान्यू न की सभुरियूंच चवान्यू न रुमाले चले

0: अनिल भारती और माधुरी बर्थवाल से अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। इसी के साथ आज का उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। आज इस कार्यक्रम में आपने सुने कुछ गढ़वाली लोकगीत। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। अब समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक

0: रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
0: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु अरसिन முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரியவருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: ஸ்ரீ விஜய் கே சாத் 9 மந்திரியோ நே பி சபத் லீ ஹே. இன்மே கே ஜி அருண்ராஜ், ஆதவ் அர்ஜுன், என் ஆனந்த், செல்வி எஸ் கீர்த்தானா ஆர் டாக்டர் டி கே பிரபு ஷாமில் ஹே. இஸ் அவசர் பர் லோக்சபா மே விபக்ஷ் கே நேதா ராகுல் காந்தி ஆர் தமிழ் ஃபில்ம் உத்யோக் கி கை ஹஸ்தியாம் மௌஜூத் தீ. முக்கியமந்திரி சி ஜோசப் விஜய் நே फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
3: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का

0: शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाई जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। 1 सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर GST के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडी विन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था, वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
3: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर IPL क्रिकेट में

0: आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
1: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद ये जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पूर्व प्रसारित वार्ता। विषय है स्वीट कॉर्न तथा बेबी कॉर्न मक्का की वैज्ञानिक खेती। वार्ताकार है डॉक्टर GS बिस्ट।
3: किसान भाइयों, मक्का विश्व की प्रमुख धान्य फसलों में से एक है। भारत में धान एवं गेहूं के बाद मक्का सबसे महत्वपूर्ण धान्य फसल है। यह व्यापक रूप से उपभोग करने वाली धान्य फसल भी है। सामान्य मक्का के अतिरिक्त मानव भोजन के रूप में नाना प्रकार की विशिष्ट मक्का जैसे क्यूपियम, पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न इत्यादि, इसके उपयोग प्रकार इसे हल्के नाश्ते, स्नैक्स का एक स्वास्थ्यकर व पसंदीदा विकल्प बनाते हैं। विविध जलवायु हेतु अनुकूलन क्षमता के कारण मक्का समुद्र तल से लेकर 3000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। उत्तराखंड में मक्का खरीफ की एक महत्वपूर्ण फसल है। यहाँ लगभग 22,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मुख्यतः हरे भुट्टे के लिए मक्का की खेती की जाती है। उत्तराखंड पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है। वर्ष भर यहाँ पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है। सैलानियों के आगमन से पर्यटक स्थलों व वहाँ पहुँचने वाले रास्तों में हरे भुट्टे की बहुत मांग रहती है। विगत कुछ वर्षों से राज्य में बेबी कॉर्न व स्वीट कॉर्न का उपयोग भी बढ़ रहा है और यह प्रायः स्थानीय बाजारों में देखने को मिल जाते हैं। वर्तमान में इनकी आपूर्ति पश्चिमी उत्तर प्रदेश व हरियाणा से हो रही है। किसान भाइयों, वर्तमान वैज्ञानिक युग में जहां खेतीबाड़ी केवल जीवन निर्वाह का साधन न होकर एक व्यवसाय के रूप में उभर रही है, आवश्यकता है अधिक से अधिक मुनाफा देने वाली फसलों को उगाया जाए ताकि अधिक लाभ अर्जित किया जा सके। बेबी कॉर्न व स्वीट कॉर्न की खेती भी एक अच्छा विकल्प है। किसान भाइयों, आज हम बेबी कॉर्न व स्वीट कॉर्न की उत्पादन तकनीकी व व्यावसायिक खेती पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम यह जान लें कि बेबी कॉर्न व स्वीट कॉर्न क्या है। बेबी कॉर्न मक्के का अनिषेचित भुट्टा है जिसका आकार उंगली नुमा होता है। इसे सिल्क निकलने के 1 से 3 दिन के अंदर तोड़ लिया जाता है। इसमें सिल्क 2 से 3 सेंटीमीटर तक लंबे रहते हैं। इसे

सलाद, सब्जी, पकौड़े, खीर इत्यादि के रूप में खाया जाता है। इसके अतिरिक्त इससे अचार, मुरब्बा, जैम इत्यादि भी बनाए जाते हैं। छिलका रहित बेबीकॉर्न की उपयुक्त लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर व व्यास 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, लोहा व विटामिन्स के अलावा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। स्वीट कॉर्न एक विशिष्ट मक्का है जिसमें सुक्रोज की मात्रा 16 से 24% तक होती है तथा यह खाने में मीठी होती है। एक या अधिक जीन की उपस्थिति स्वीट कॉर्न को सामान्य मक्का से अलग करती है। स्वीट कॉर्न की कटाई दानों की दुधिया अवस्था में की जाती है। स्वीट कॉर्न संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और अन्य विकसित देशों में सर्वाधिक लोकप्रिय सब्जियों में से एक है। भारत में स्वीट कॉर्न के हरे, उबले, मक्खन लगे भुट्टे बड़े चाव से खाए जाते हैं। मक्का गर्म जलवायु की फसल है। इसकी बढ़ावर के लिए अधिक तापमान व नमी की आवश्यकता होती है। अच्छे जमाव के लिए 21 डिग्री तथा बढ़ावर के लिए 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। घाटियों व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में अप्रैल प्रथम सप्ताह तक जमाव हेतु आदर्श तापमान मिल जाता है। व्यावसायिक खेती व सफल उत्पादन हेतु उपयुक्त किस्मों का चयन महत्वपूर्ण है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित अतिशीघ्र पकने वाली संकुल किस्म VL बेबीकॉर्न 1 व संकर किस्म CM VL बेबीकॉर्न 2 में से चुनाव कर सकते हैं। संस्थान द्वारा विकसित इन प्रजातियों की अप्रैल प्रारंभ में बुआई कर जून के प्रथम सप्ताह में बेबीकॉर्न की तुड़ाई की जा सकती है। इन किस्मों के अतिरिक्त अन्य केंद्रों द्वारा विकसित किस्में HM4 इत्यादि की खेती भी की जा सकती है। स्वीट कॉर्न हेतु संस्थान द्वारा हाल ही में विकसित संकर किस्म CM VL स्वीट कॉर्न 1 के अतिरिक्त अन्य प्रमुख किस्मों माधुरी, प्रिया, मधुमक्का, सुगर 75, प्रेम, विन ऑरेंज स्वीट से उपयुक्त किस्म का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, स्वीट कॉर्न व बेबी कॉर्न की खेती सामान्य मक्का की भांति रेतीली भूमि से लेकर चिकनी मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन दोमट से भारी मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ व नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक हो तथा जल निकास का उचित प्रबंध हो मक्का की खेती के लिए सर्वोत्तम रहती है। खेत की तैयारी के लिए एक गहरी जुताई करनी चाहिए तथा बाद में बुआई से पूर्व एक जुताई और करनी चाहिए। खेत पूरी तरह समतल हो तथा उसमें जल निकासी का उचित प्रबंध हो। मिट्टी की भौतिक स्थिति को दुरुस्त रखने व उसकी जल ग्रहण क्षमता बढ़ाने हेतु पहली जुताई के समय 2.5 से 3 कुंतल प्रति नाली की दर से गोबर की खाद डालनी चाहिए। फॉस्फोरस व पोटास की आवश्यकता हर खेत में समान नहीं होती, अतः बुआई से पूर्व मिट्टी की जांच कर उर्वरकों की उचित मात्रा डालनी चाहिए। स्वीट कॉर्न व बेबी कॉर्न हेतु गोबर की खाद के अतिरिक्त 100 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फॉस्फोरस व 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर पर्याप्त है। उर्वरकों की यह मात्रा 2.664 किलोग्राम DAP, 3.34 किलोग्राम यूरिया व 1.33 किलोग्राम MOP प्रति नाली से पूरी की जा सकती है। DAP व पोटास की पूरी मात्रा व यूरिया की एक तिहाई मात्रा बुआई से पहले खेत में मिला देनी चाहिए। यूरिया की शेष मात्रा का आधा भाग पौधे की घुटने तक की अवस्था व शेष भाग नरमंजरी या बल्लर आने पर टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालना चाहिए। कुर्मुला तथा तनाभेदक कीट, कटवम इत्यादि का प्रकोप हो तो 500 ग्राम फोरेट 10G प्रति नाली अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। किसान भाइयों, उपयुक्त किस्मों के प्रमाणित बीज ही बोने चाहिए। बुआई कतारों में करनी चाहिए। स्वीट कॉर्न हेतु कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर व कतार में पौधों से पौधों की दूरी 25 सेंटीमीटर रखने से प्रति हेक्टेयर पौधों की आदर्श संख्या 65,000 से 67,000 रखी जा सकती है। बुआई के समय भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। बीज 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई में बोना चाहिए। एक नाली क्षेत्रफल में 1300 से 1400 पौधे रखने चाहिए, जिसके लिए 200 से 225 ग्राम बीज पर्याप्त है। बीज के फफूंदी लगने से जमाव प्रभावित होता है तथा प्रारंभिक अवस्था में पौधों की जड़ें व तना सड़ने लगते हैं। इससे बचाव के लिए कवकनाशी थीरम 3 ग्राम या कार्बनडाइजियम 2 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर बोना चाहिए। चूंकि बेबी कॉर्न पुष्पावस्था में तोड़ ली जाती है, अतः इससे प्रति इकाई क्षेत्रफल में सामान्य मक्का से दुगने पौधे रखे जाते हैं। पौधों के आदर्श घनत्व हेतु दो लाइनों के बीच 50 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इस तरह प्रति नाली 2,500 से 2,700 पौधे रखे जा सकते हैं, जिसके लिए 800 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। खेत में यदि पौधे घने हों

तो बुआई के 10 से 12 दिन के पश्चात कतारों में पौधों की छटाई कर कमजोर पौधों को निकाल लें। प्रारंभिक अवस्था में फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना आवश्यक होता है। खरपतवारों के नियंत्रण हेतु बुआई के तुरंत बाद अंकुरण से पूर्व एट्राजिन 50% चूर्ण के 40 ग्राम या एलाक्लोर 50 EC के 80 मिलीलीटर का 15 से 16 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रतिनाली छिड़काव करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो जमाव के 15 से 20 दिन में गुड़ाई कर खरपतवार निकाल लेने चाहिए। जब पौधे घुटने तक ऊंचे हो जाएं, यूरिया की 1/3 मात्रा डालकर पौधे में मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। पौधों में नर मंजरी निकलते समय शेष बची 1/3 यूरिया से टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। किसान भाइयों, भरपूर उत्पादन के लिए फसल का

0: रखना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो जमाव के 15 से 20 दिन में गुड़ाई कर खरपतवार निकाल लेने चाहिए। जब पौधे घुटने तक ऊंचे हो जाएं, यूरिया की एक तिहाई मात्रा डालकर पौधे में मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। पौधों में नरमंजरी निकलते समय शेष बची एक तिहाई यूरिया से टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। किसान भाइयों, भरपूर उत्पादन के लिए फसल का कीट व बीमारियों से बचाव भी आवश्यक है। कटवर्म व तनाभेदक कीट मक्का की फसल को हानि पहुंचाते हैं। बुआई के समय फोरेट के प्रयोग से इन कीटों से बचाव किया जा सकता है। यदि कीट का प्रकोप हो तो जमाव के 10 दिन बाद क्लोरोपाइरीफॉस 20% ईसी के 15 मिलीलीटर को 10 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति नाली छिड़काव करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो 10 दिन बाद पुनः इसी रसायन के 18 मिलीलीटर को 14 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। पत्तियों का झुलसा रोग पर्वतीय क्षेत्रों में मक्का की एक गंभीर समस्या है। रोग नियंत्रण हेतु लक्षण जो पत्तियों के अनियमित आकार के धब्बों के रूप में प्रकट होते हैं के दिखते ही मैंकोजेब 75 WP के 40 से 45 ग्राम को 15 से 16 लीटर पानी में घोलकर 7 दिन के अंतराल में 2 छिड़काव करने चाहिए। स्वीटकॉर्न की सामान्य मक्का से के समान ही खेती की जाती है, लेकिन मक्का की दूसरी किस्मों के साथ स्वीटकॉर्न उगाने पर उन किस्मों के पराग कणों के प्रभाव से स्वीटकॉर्न के दाने के रंग व मिठास में प्रतिकूल परिवर्तन हो जाता है। अतः स्वीटकॉर्न की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इसे सामान्य मक्का की किस्मों से या स्वीटकॉर्न की भिन्न जीन वाली किस्मों से कम 350 मीटर की पृथक्करण की दूरी पर उगाना चाहिए या किस्मों की पुष्पावस्था में 10 से 15 दिन का अंतर रखना चाहिए। इसी प्रकार बेबीकॉर्न के लिए भी पृथक्करण आवश्यक है। साथ ही पराग बनने से पूर्व नरमंजरी भी निकाल ली जाती है, जिसे डिटेसलिंग कहते हैं, ताकि निषेचन ना हो पाए, क्योंकि निषेचन से बेबीकॉर्न की गुणवत्ता प्रभावित होती है। स्वीटकॉर्न हेतु फसल की कटाई दानों की दुधिया अवस्था में करनी चाहिए, जो पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतः पुष्पावस्था के 22 से 24 दिन में होती है। इस समय भुट्टे में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसके बाद शर्करा स्टार्च में परिवर्तित होने लगती है, जिससे मिठास व गुणवत्ता कम होने लगती है। इसी प्रकार बेबीकॉर्न फसल की कटाई पौधों में सिल्क आने के तुरंत बाद की जाती है। बेबीकॉर्न तोड़ते समय उसकी ऊपर की पत्तियों को नहीं हटाना चाहिए। पत्तियों को हटाने से बेबीकॉर्न जल्दी खराब हो जाते हैं। प्रतिदिन एक या एक दिन के अंतराल पर बेबीकॉर्न की तुड़ाई कर लेनी चाहिए। संकर किस्म से 3 से 4 तुड़ाई की जा सकती है। बेबीकॉर्न का छिलका तुड़ाई के बाद छायादार जगह पर उतार लेना चाहिए व ठंडे जगह पर इसका भंडारण करना चाहिए। बेबीकॉर्न को तुरंत मंडी या संसाधन इकाई में पहुंचा देना चाहिए।
1: स्वीटकॉर्न तथा बेबीकॉर्न मक्का की वैज्ञानिक खेती, इस विषय पर किसान भाई अभी पूर्व प्रसारित ये वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थे डॉक्टर GS बिष्ट। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब एक नज़र हमारे केंद्र से इस सभा के शेष और हमारी सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सबसे पहले इस सभा के शेष कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में दोपहर 2:45 पर फिल्म संगीत एक ही फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे, जो कि केंद्रित होगा संगीतकार शिव कुमार शर्मा पर। अपराह्न 3 बजे हम आपको सुनवाएंगे सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है शाम 5 बजे। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे रवि बासरीय संगीत सभा। हमारे ये दोनों कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और शाम 7:30 पर कुमावनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार। हमारे समाचारों के ये दोनों ही बुलेटिन हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 5:05 पर कुमावनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैल स्वर आप सुनते हैं, जिसमें आज की कलाकार होंगी सरिता पंत। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा शाम 5:15, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़े। उत्तरायण कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं शाम 5:45 पर। इस कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय रहेगा जल संरक्षण, स्वच्छता एवं पर्यावरणीय प्रबंध क्यों जरूरी, और साथ ही इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुमावनी और गढ़वाली लोकगीतों

का फरमाइशी कार्यक्रम बुराश। कुछ भक्ति रचनाएं भक्ति संगीत कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आएंगे। शाम 6:41 पर कलाकार होंगे कविता कृष्णमूर्ति, हरिओम शरण और साथी। प्रादेशिक संगीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 7 बजे। शाम 7:15 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे धान की सीधी बुआई तकनीक की उपयोगिता विषय पर जानकारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आरपी मीणा। इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे श्री मनोज भट्ट। फिल्म संगीत कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:40 पर। रात्रि 8 बजे मिली जुली गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस आप सुनेंगे। रात्रि 9:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष हम आपको सुनवाएंगे और सुगम संगीत का समय रहेगा रात्रि 9:30। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार।

एक ही फनकार कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त रेखा सिलोरी। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत स्वागत और साथ ही कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज की हमारे फनकार हैं संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा। श्रोताओं, कई फिल्मों में आपने शिव हरि के नाम से बेहद सुंदर मनभावन और मधुर संगीत सुना। ये संगीतकार जोड़ी पंडित शिव कुमार शर्मा और बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया की है। तो आज पंडित शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर वादक है, इनकी पुण्यतिथि है, इसलिए आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे इनके संगीतबद्ध चंद फिल्मी गीत।

श्रोताओं, पंडित शिव कुमार शर्मा एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और संतूर वादक थे, जिन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए संतूर को अनुकूलित करने का श्रेय दिया जाता है। एक संगीतकार के रूप में उन्होंने भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया के साथ शिवहरि नाम से सहयोग किया और फासले, चांदनी, लम्हे, परंपरा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। 13 जनवरी 1938 को जम्मू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। श्रोताओं, बचपन से ही इनके घर में संगीत का माहौल था और इनके पिता इनको तबला सिखाना चाहते थे। इनके पिता ने इन्हें 5 साल की उम्र से ही गायन भी सिखाना शुरू किया और तबला सीखना और संतूर सीखना पंडित शिव कुमार शर्मा ने साथ साथ शुरू किया। सुनते हैं शिवहरि के संगीत निर्देशन से सजी सिलसिला फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, वर्ष 1955 में पंडित शिव कुमार शर्मा ने अपने पहले लाइव प्रदर्शन में राग यमन की 1 घंटे की लंबी प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति में उनके दर्शकों ने उनको उत्साहवर्धन किया और उनके दर्शक इस प्रस्तुति को की सराहना करने के लिए मजबूर हो गए। श्रोताओं, अगर इनके डिस्कोग्राफी की बात करें तो उनमें शामिल है घाटी की पुकार, संतूर और गिटार, सम्मोहक संतूर। इसके अलावा कई रागों के भी एल्बम्स इनके निकले। और श्रोताओं, पंडित शिव कुमार शर्मा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे, जिनमें वर्ष 1985 में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाल्टीमोर शहर की मानद नागरिकता शामिल है। वर्ष 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और वर्ष 1991 में अकादमी पुरस्कार, वर्ष 2001 में पद्म विभूषण, 1991 में पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा कुछ अन्य पुरस्कार हैं, कॉल ऑफ द वैली के लिए प्लेटिनम डिस्क, फिल्म सिलसिला के संगीत के लिए भी प्लेटिनम डिस्क, फिल्म फासले के लिए गोल्ड डिस्क, फिल्म चांदनी के लिए प्लेटिनम डिस्क। श्रोताओं, 10 मई को आज के दिन वर्ष 2022 में मुंबई महाराष्ट्र में पंडित शिव कुमार शर्मा का देहांत हुआ और उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके संगीत की धुनें हमेशा संगीत प्रेमियों के कानों में मिसरी घोलती रहेंगी।

तो श्रोताओं, ये था आज का एक ही फनकार कार्यक्रम, जो कि केंद्रित था संगीतकार संतूर वादक शिव कुमार शर्मा पर। इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त रेखा सिलोरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत।

आज का सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं रेखा सिलोरी। आप सभी का प्रोग्राम में स्वागत और कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज फिर टूटेंगी तेरे घर नाजुक खिड़कियाँ, आज फिर देखा गया दीवाना तेरे शहर में। श्रोताओं, ये खूबसूरत शेर है उर्दू शायर कैफी आज़मी का। और श्रोताओं, आज है कैफी आज़मी की याद का दिन, यानी कि 10 मई वर्ष 2002 को आज ही कैफी आज़मी ने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा था। तो आज के सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम में कैफी आज़मी के लिखे चंद खूबसूरत नगमे मैं आपको इस प्रोग्राम में सुनवाऊंगी। प्रोग्राम का पहला नगमा है हकीकत फिल्म से, जिसे संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, कैफी आज़मी का वास्तविक नाम अतहर हुसैन रिज़वी था। इनका जन्म 14 जनवरी वर्ष 1919 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। श्रोताओं, भारतीय फिल्मों में उर्दू साहित्य लाने वाले कवि के रूप में कैफी आज़मी को याद किया जाता है। पीरज़ादा कासिम, जॉन एलिया और अन्य कवियों के साथ ही उन्होंने 20वीं सदी के कई यादगार मुशायरों में भाग लिया और हिंदी फिल्मों के लिए भी बेहद खूबसूरत से शेर लिखे। दिल की नाजुक रगे टूटती हैं, दिल की नाजुक रगे टूटती हैं, याद इतना भी कोई ना आए,

श्रोताओं, कैफी हाजमी के कविता संकलन सहित उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी आखिरी शब, सरमाया, आवारा सजदे, कैफियत, नई गुलिस्तान, उल्दू बिल्ड्स के लिए उनके द्वारा लिखे गए लेखों का संकलन मेरी आवाज़ सुनो, उनकी फिल्म के गीतों का चयन और देवनागरी में हीर रांझा की पटकथा, उनके शीर्षक गीत कर चली हम फिदा को, वर्ष 1964 की हिंदी फिल्म हकीकत के साउंड ट्रैक में दिखाया गया, उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताएं औरत, मकान, दायरा, सांप और बहु रूपनी है। और अगर उनके फिल्मों की बात करें तो उन्होंने फिल्मों में गीतकार, लेखक और अभिनेता के रूप में काम किया है। कैफी आजमी की कुछ बातचीत आगे भी आपसे होगी, लेकिन उससे पहले उनका लिखा पाकिजा फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, कैफी आजमी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 50 के दशक में वर्ष 1951 में रिलीज हुई फिल्म शहीद लतीफ के द्वारा निर्देशित बुजदिल से की। इस फिल्म में उन्होंने अपना पहला गीत लिखा। लेखक के रूप में उनका प्रारंभिक कार्य मुख्य रूप से नानू भाई वकील की फिल्मों जैसे यहूदी की बेटी, परवीन, मिस पंजाब मेल और ईद का चांद के लिए था, जहां ख्वाजा अहमद अब्बास और विमल रॉय जैसे निर्देशकों ने नया सिनेमा बनाने का प्रयास किया। वहीं साहिर लुधियानवी, जानेसार अख्तर, मजरूह सुल्तानपुरी और कैफी आजमी जैसे लेखकों ने हिंदी फिल्मी गीतों के लहजे और शब्दावली को बदल दिया, जिससे हिंदी फिल्मी गीतों को एक नई लहर आई जो कई वर्षों तक कायम रही। लेखक के रूप में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि चेतन आनंद की हीर रांझा थी, जिसमें फिल्म के सभी संवाद पद्य में थे। ये एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी और हिंदी फिल्म लेखन के इतिहास में महानतम कार्यों में से एक थी। श्रोताओं, फिल्म हस्ती जख्म की ये कव्वाली, जिसे कैफी आजमी ने लिखा है, ये आपको सुनवाती हूँ।

पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, ये माना मेरी जान।

0: बस सजा है, मजा इसमें इतना, मगर किस लिए है।
1: एक गीतकार के रूप में कैफे आजमी की कुछ फिल्में हैं कोहरा, अनुपमा, हकीकत, कागज के फूल, सात हिंदुस्तानी, शोला और शबनम, परवाना, बावर्ची, पाकीज़ा, हस्ते जख्म, अर्थ, रज़िया सुल्तान, नौनिहाल, भावना और हीर रांझा। श्रोताओं, कैफ़ी आज़मी की लेखनी इतनी खूबसूरत थी कि उन्होंने अपनी लेखनी से बड़े बड़े लोगों को प्रभावित किया, जिनमें उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। श्रोताओं, यहाँ पर सुनते हैं कैफ़ी आज़मी का लिखा भावना फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ें दी हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने।

श्रोताओं के अभी आजमी को सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले हैं। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कारों से भी उन्हें कई बार नवाजा जा चुका है। वर्ष 1974 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है।

नौनिहाल फिल्म के इसी नगमे के साथ आज के सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त रेखा सिलोरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

सदाबहार फिल्म गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज़ और NIR ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अपराह्न के ठीक 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अपनी अगली सभा में शाम 5 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।

एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं तेलंगाना में बेहतर बुनियादी ढांचे और निर्बाध कनेक्टिविटी की दिशा में एक बड़ा कदम है।
1: तेलंगाना हैदराबाद के हजारों नौजवानों को रोजगार का माध्यम बनेगा। यहाँ बनने वाली गाड़ियां, मशीनरी, यहाँ लगने वाले फूड प्रोसेसिंग उद्योग, ये तेलंगाना के श्रमिकों और किसानों को भी सशक्त करेंगे। अब हम अपनी उस विरासत को फिर से सशक्त कर रहे हैं। वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा।
0: प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने श्री जोसफ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद रही। प्रधानमंत्री ने सी जोसफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। मुख्यमंत्री सी जोसफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई सरकारी कार्यक्रमों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़े सरकारी कार्यक्रम शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और भाजपा नेता मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह और सोमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया है। कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत को राज्य मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। गुरुग्राम की धनशोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वजवाला एमवी होडियंस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। 1 सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में

0: बुनियादी संवाद कौशल सिखाने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16वें ओवर में 6 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में शाम 7:30 बजे रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत शामिल थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अल्बुरा केंद्र से बोल रहे हैं। शैलेश्वर कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रमेश जोशी का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत है।

शैलधर कार्यक्रम में श्रोता आवाज आप सुन रहे थे रमेश जोशी का गाया ही कुमाऊनी लोकगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है जानकारी हमारे केंद्र से, हमारी आज की सायंकालीन सभा के शेष तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। रविवासरी संगीत सभा आज रात्रि 10 बजे हम अपने दिल्ली केंद्र से रैली करेंगे। अब से कुछ देर बाद सायं 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा वाणी। कार्यक्रम उत्तरायण का समय रहेगा सायं 5:45, जिसमें आज आप सुनेंगे कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम बुराश। भक्ति संगीत कार्यक्रम में सायं 6:40 पर कलाकार होंगे कविता कृष्णमूर्ति और हरिओम शरण। कृषि समृद्धि किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम पासिंग 7:15 पर, जिसमें आज जानकारी का विषय होगा धान की सीधी बुआई तकनीक की उपयोगिता। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आरपी मीणा और संचालन करेंगे श्री मनोज भट्ट। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे पासिंग 7:40 पर। मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस का समय रहेगा आज रात्रि 8 बजे। फिल्म संगीत एक बार फिर आप सुनेंगे इंद्रधनुष कार्यक्रम में रात्रि 9:15 पर। सुगम संगीत हम आपको सुनवाएंगे आज रात्रि 9:30 पर। हमारी प्रातःकालीन सभा में कल प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे विचार बिंदु, तत्पश्चात भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। प्रातः 7:10 पर श्री रामचरितमानस गान और प्रातः 7:30 पर लोकमंजरी कार्यक्रम में कलाकार होंगे डूंगर राम और गंगाराम। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे कल प्रातः 8:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत नर्सर का समय रहेगा कल प्रातः 9:05। सबरंग कार्यक्रम में कल प्रातः 10:05 पर कलाकार होंगे गुलाम अली, अदनान सामी, नुसरत और मुजाहिद। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा कल प्रातः 11 बजे। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का प्रभास पाठन सोमनाथ गुजरात से सजीव प्रसारण हम आपको सुनवाएंगे कल प्रातः 11:10 पर, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समय एक बार फिर याद रखिएगा कल प्रातः 11:10। महिलाएं अपना कार्यक्रम सुनेंगी घर संसार कल दोपहर 12:30 पर, जिसमें कल जानकारी का विषय होगा घर की रौनक बढ़ाते हस्तनिर्मित उत्पाद विषय पर। श्रीमती प्रियंका बुलाकोटी हल्द्वानी जिला अल्पनैनीताल से हेमलता न्याल की क्षेत्र संकलित बातचीत। सुगम संगीत कार्यक्रम में कल दोपहर 1:15 पर कलाकार होंगे चंदन दास, भूपिंदर मिताली, बाबुल सुप्रियो और सोनाली वाजपेयी। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1281वीं कड़ी हम आपको सुनवाएंगे कल दोपहर 1:30 पर। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती की बातें कल दोपहर 2:30 पर। एक ही फनकार फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे कल दोपहर 2:45 पर और सदाबहार फिल्मी गीत आप सुनेंगे कल अपराह्न 3 बजे। हमारी सायंकालीन सभा में कल सायं 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम में कलाकार होंगे मोतीराम। युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युवा वाणी कल सायं 5:15 पर। कार्यक्रम उत्तरायण का समय रहेगा कल सायं 5:45। भक्ति संगीत कार्यक्रम में कल सायं 6:40 पर कलाकार होंगे हरिहरन और शर्मा बंधु। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम होगा ग्राम जगत कल सायं 7 बजे। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे कल सायं 7:40 पर। मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस का समय रहेगा कल रात्रि 8 बजे। फिल्म संगीत एक बार फिर आप सुनेंगे इंद्रधनुष कार्यक्रम में कल रात्रि 9:15 पर। सुगम संगीत हम आपको सुनवाएंगे

दस बजे और फिल्म संगीत एक बार फिर आप सुनेंगे कल रात्रि 10:30 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से हमारी आज की सायंकालीन सभा की शेष तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:15 हुए हैं। अभी वह साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा वाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी प्रिय श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र पवन का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम युववाणी में, जहां हर दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, नई नई बातें और कुछ खास पेशकश। श्रोताओं, आज मदर्स डे के इस खास अवसर पर हम दुनिया की हर माँ को दिल से नमन करते हैं। माँ केवल एक शब्द नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और ममता का सबसे सुंदर रूप है। युववाणी परिवार की ओर से सभी माताओं को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज के इस अंक में हम सर्वप्रथम आज की बात में बातचीत करेंगे अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहे विषय पर। उसके बाद मदर्स डे के अवसर पर आप सुनेंगे कुछ युवा साथियों के विचार और अंत में इतिहास के पन्नों से जानेंगे आज का इतिहास। और बातचीत व जानकारी के साथ साथ मनोरंजन का सिलसिला भी जारी रहेगा, जहां हम आपको सुनवाएंगे दिल के तराने, गाने नए पुराने। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत आज की बात के साथ। दोस्तों, किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति और परंपराओं से होती है। हमारे पहनावे, भाषा, त्योहार, खान पान, लोकगीत, लोक नृत्य और बड़ों के प्रति सम्मान, ये सभी हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी विविधता है। यहाँ हर राज्य की अपनी अलग बोली, अलग परंपरा और अलग संस्कृति है, लेकिन फिर भी सबको जोड़ने वाली भावना एक ही है, अपनापन और सम्मान। साथियों, आज का युवा नई नई चीजें सीख रहा है, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है, जो बड़े ही गर्व की बात है। लेकिन इसके साथ साथ अपनी जड़ों से जुड़े रहना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी संस्कृति को समझता है, वही अपनी पहचान को भी बेहतर तरीके से समझ पाता है। कई बार हम आधुनिक बनने की दौड़ में अपनी भाषा बोलने में झिझक महसूस करते हैं, पारंपरिक पहनावे को पुराना समझ लेते हैं, या फिर त्योहारों की असली भावना को भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि हमारी परंपराएं ही हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं और जीवन में संस्कारों का महत्व सिखाती हैं। हमारे लोकगीत, लोक कथाएं और पारंपरिक रीति रिवाज केवल मनोरंजन नहीं हैं, बल्कि वे हमारी पीढ़ियों के अनुभव और जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाने का माध्यम हैं। अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का मतलब यह नहीं है कि हम आधुनिकता से दूर हो जाएं,

बल्कि इसका अर्थ है नई सोच को अपनाते हुए अपनी पहचान और अपने संस्कारों को भी साथ लेकर चलना। अगर युवा पीढ़ी अपनी भाषा, अपने त्योहारों, अपने लोक संगीत और अपनी परंपराओं को अपनाए रखेगी तो हमारी सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचती रहेगी। तो आइए हम सब यह संकल्प लें कि आधुनिकता के साथ साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं का हम सम्मान करेंगे और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, आज की बात में फिलहाल इतना ही, और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं मदर्स डे के मौके पर युवाओं द्वारा व्यक्त किए गए कुछ खूबसूरत विचार। आइए सुनते हैं माँ के प्रति प्यार, सम्मान और भावनाओं से भरे ये संदेश।

0: माँ। आज मदर्स डे के अवसर पर मैं एक छोटी सी कविता अपनी माँ को डेडिकेट करना चाहूंगी। भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उसने माँ बनाई। धरती पर उतरी एक परी ममता की, जिसने गंगा बहाई। रातों को जाग कर सुलाती है, खुद गीले में सोकर हंसाती है। थकान हो चाहे कितनी भी, चेहरे पर शिकन नहीं आती है। उंगली पकड़कर चलना सिखाया, गिरने पर भी हंसकर उठाया। हार में भी जीत का मंत्र दिया है, माँ ने ही जीना सिखाया। तेरे आंचल की छांव में माँ, जन्नत सी लगती है दुनिया। हैप्पी मदर्स डे कह दो आज, तू ही है मेरी पूरी दुनिया।
1: मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
2: मेरा नाम दिनकर सेखड़ी है। मैं मदर्स डे पर अपने कुछ विचार साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले तो सभी माओं को हैप्पी मदर्स डे, एंड स्पेशली हैप्पी मदर्स डे मम्मी। कहने को तो माँ एक शब्द है, पर इसमें मेरा पूरा संसार बसता है। माँ को शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। जिसने जन्म दिया, बोलना सिखाया, वह ममता की मूर्ति है। माँ, मम्मी, माता, मोमी, पता नहीं मम्मी को क्या क्या बोलता हूँ। मम्मी सिर्फ एक शब्द नहीं, दिन की शुरुआत है। ना जाने मम्मी के बिना घर सूना लगता है। कहीं बाहर से जब भी घर आऊँ तो मम्मी को बुलाता हूँ। दिखाता नहीं, पर मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। मम्मी से लड़कर फिर मम्मी के पास ही जाता हूँ। उनको तंग करना, गुस्सा दिलाना अच्छा लगता है। मम्मी से डांट खाना, मार खाना कभी डराता ही नहीं है। मम्मी मार भी दे तब भी सामने से हंसी ही आती है। मम्मी की कमी घर से दूर आकर ही समझ आती है। जब मम्मी से दूर सिर्फ फ़ोन में उनसे बात हो पाती है। उनके हाथ का गर्म खाना, कपड़े धोकर देना, मेरी सभी इच्छाएं पूरी करना आज बहुत याद दिलाता है। फ़ोन पर भी मम्मी को यही चिंता रहती है, खाना खाया, ठीक है, कुछ चाहिए। मानो जैसा अपना पूरा जीवन हमारे ऊपर ही लगा देगी। कभी बहुत बुरा भी लगता है जब अपना मन मारकर मम्मी हमारे लिए ही करती है। अंत में बस दो पंक्तियां कहूँगा। मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, माँ के पैरों में तो वो जन्नत होती है। धन्यवाद। हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन, एंड आई लव यू सो मच मम्मी।

मैं नेहा सलाल, मैं अपनी माँ और दुनिया की हर उस माँ के लिए कुछ शब्द कहना चाहती हूँ जिन्होंने हमें बोलना सिखाया पर जिन पर बोलने के लिए शब्द हमेशा कम पड़ जाते हैं, वो है माँ। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरा एक एहसास है। जब हम बीमार होते हैं तो बिना कहे जिसे दर्द होता है वो माँ है। जब हम थक कर घर लौटते हैं तो जिसके हाथ का खाना सारी थकान मिटा देता है वो माँ है। कॉलेज की इस भागदौड़ में भी जब कभी मैं टूटने लगती हूँ तो फोन पर उनकी एक ठीक होना बेटा आवाज मुझे फिर से खड़ा कर देती है। किसी ने लिखा है, दवा जब असर न करे तो नजर उतारती है, माँ है जनाब वो कहाँ हार मानती है। घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छांव में न जाने।

कब बड़ा हुआ। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया कि सपने देखो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखो। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। माँ आप मेरे लिए मेरी दुनिया हो। हैप्पी मदर्स डे।

मेरा नाम सागर आर्या है और आज मदर्स डे के इस खास मौके पर मैं अपनी मम्मी के लिए दिल से कुछ कहना चाहता हूँ। शायद दुनिया में माँ जैसा रिश्ता कोई नहीं होता, क्योंकि माँ सिर्फ एक इंसान नहीं होती, वो हमारी पूरी दुनिया होती है। जब हम छोटे होते हैं तब माँ हमारी उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तब वही माँ हमें जिंदगी की सही राह दिखाती है। मम्मी खुद चाहे कितनी भी थकी हो, लेकिन हमारे चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए हमेशा तैयार रहती है। हमारी हर छोटी बड़ी बात, ज़रूरत का ध्यान रखना, बिना बताए हमारी परेशानियों को समझ जाना, ये सिर्फ माँ ही कर सकती है। मैं कई बार अपनी मम्मी पर गुस्सा कर देता हूँ, उनकी बात नहीं मानता या उन्हें कभी कभी दुख भी पहुँचा देता हूँ, लेकिन मेरी माँ फिर भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। शायद माँ का दिल ही ऐसा होता है जो कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि अगर इस दुनिया में सच्चा प्यार कहीं है तो वो मेरी मम्मी के दिल में है, क्योंकि माँ वो इंसान होती है जो खुद तकलीफ में रहकर भी अपने बच्चों को खुश देखना चाहती है। उनकी दुआएं ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब भी मैं परेशान होता हूँ, मम्मी की एक बात, उनका एक प्यार भरा हाथ सारी परेशानियाँ कम कर देता है। आज मैं अपनी मम्मी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ हर उस त्याग के लिए, हर उस प्यार के लिए जो उन्होंने बिना किसी उम्मीद से मुझे दिया। अगर मैं ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा बन पाया तो उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी मम्मी का होगा। अंत में अपनी मम्मी के लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। माँ वो रोशनी है जो कभी अंधेरा नहीं होने देती। माँ वो दुआ है जो कभी अकेला नहीं होने देती। जिसके होने से मैं खुद को सबसे अमीर मानता हूँ, वो कोई और नहीं, मेरी माँ है जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। हज़ारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हज़ारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, लेकिन माँ अकेले ही काफ़ी है बच्चों को, पूरी दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए। धन्यवाद एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू।

0: सुयाल, और आज मदर्स डे के इस खास अवसर पर मैं कुछ कहना चाहूंगी उस इंसान के लिए जो हमारे जीवन की पहली धड़कन होती है, हमारी माँ। माँ ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो एहसास है जिसके होने से ही दुनिया खूबसूरत लगती है। हमारी हर जिद में जिसने अपना सुकून छोड़ दिया, हमारी छोटी सी चोट पर जिसकी आंखें भर आई, हमारी एक मुस्कान के लिए जिसने खुद के दर्द छुपा लिए, वो माँ ही तो है। लेकिन सच कहूँ, माँ की सबसे बड़ी खूबसूरती ये नहीं कि वो हमारा ख्याल रखती है, बल्कि ये है कि वो अपनी पूरी जिंदगी बिना शिकायत के हमारे नाम कर देती है। कभी गौर कीजिएगा, घर में सबके सो जाने के बाद भी जो आखिरी आवाज आती है ना, वो माँ के काम करने की होती है। और सुबह सबसे पहले जो दुआ बनकर उठती है वो माँ ही होती है। माँ वो किताब है जिसे पढ़ने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी दुआएं किस्मत बदलने की ताकत रखती हैं। इस दौड़ती भागती हुई दुनिया में हम अक्सर आई लव यू माँ कहने में देर कर देते हैं, लेकिन माँ कभी देर नहीं करती, ना प्यार देने में ना माफ़ करने में। अगर जिंदगी एक मंदिर है तो माँ उसकी सबसे खूबसूरत प्रार्थना है। तो आज मदर्स डे पर बस इतना कहना चाहूंगी कि माँ आप हमारे जीवन की वो रोशनी हैं जिसके बिना हर खुशी अधूरी है। आप हैं तो मैं हूँ। हैप्पी मदर्स डे।
1: कामनी पंत, आज मदर्स डे के इस विशेष अवसर पर उन सभी माताओं को हृदय से नमन करती हूँ जो अपने प्रेम और त्याग और संस्कार से हमारे जीवन को सुंदर बनाती हैं। माँ केवल एक शब्द नहीं बल्कि भावना, शक्ति और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। माँ हमारे जीवन की पहली गुरु होती हैं जो हमें बोलना, चलना और सही रास्ते पर आगे बढ़ना सिखाती हैं। कहा जाता है कि

0: भगवान हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। वास्तव में माँ का प्रेम दुनिया का सबसे निस्वार्थ प्रेम होता है। वह स्वयं कष्ट सहकर भी अपने बच्चों को खुश देखना चाहती है। हमारे जीवन में माँ का योगदान शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है। वह हमें केवल पढ़ाई या जीवन जीने की कला ही नहीं सिखाती, बल्कि अच्छे संस्कार, धैर्य, करुणा और संघर्ष का महत्व भी समझाती है। जब हम जीवन में निराश होते हैं, तब माँ के शब्द हमें फिर से आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है। लोग अपने काम और व्यस्तताओं में इतने उलझ गए हैं कि कई बार अपने परिवार और विशेष रूप से अपनी माँ के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि माँ का स्थान हमारे जीवन में सबसे ऊपर है। जिस प्रकार एक वृक्ष अपनी जड़ों के बिना खड़ा नहीं रह सकता, उसी प्रकार हम भी माँ के प्रेम और आशीर्वाद के बिना अधूरे हैं। मदर्स डे केवल दिन नहीं, बल्कि अपनी माँ के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। हमें केवल इस दिन की ही नहीं, बल्कि हर दिन अपनी माँ का आदर करना चाहिए। उनके साथ समय बिताना, उनकी भावनाओं को समझना और उन्हें खुश रखना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। मैं यह कहना चाहूँगी कि समाज में हर उस महिला को सम्मान होना चाहिए जो माँ के रूप में अपने परिवार और बच्चों के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। एक माँ ही परिवार की शक्ति और समाज की नींव होती है। आज इस विशेष अवसर पर मैं अपनी माँ सहित दुनिया की सभी माताओं को नमन करती हूँ। उनकी ममता, त्याग और प्रेम को शब्दों में बांधना संभव नहीं है। माँ हमारे जीवन की वह रोशनी है जो हर अंधेरे में हमें सही रास्ता दिखाती है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी, माँ के चरणों में ही संसार का सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा आशीर्वाद छिपा होता है। आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: मैं करीना नगरकोटी मातृ दिवस के इस उपलक्ष्य पर माँ के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। माँ ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई, उसे नहीं पता गणित का फॉर्मूला कोई। माँ कभी नया शहर नहीं घूमी, ना ही उसे ज्ञान है भूगोल शास्त्र का। माँ कहीं बाहर काम पर नहीं जाती, नहीं आता है उन्हें ठीक ठीक हिसाब करना। पर इन चार दीवारी के बीच रहकर माँ ने ही सिखाया मुझे अपनी क्षमताओं से अधिक कार्य करने का फॉर्मूला। खुद घर में रहकर भी सिखाया मुझे स्वतंत्र होकर दुनिया देखना और सिखाया हिसाब, अपने दुखों का हाथ पकड़कर चलते हुए वास्तव में सुख खोजना। मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: जिंदगी की पहली टीचर माँ, जिंदगी की पहली दोस्त भी माँ, जिंदगी भी माँ क्योंकि जिंदगी देने वाले भी माँ।
1: मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो। माथा चूम के मुकद्दर बदलने का जादू उसी को आता है और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी ज्यादा करप्ट टेम्परेचर बताता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मदर्स डे के अवसर पर युवाओं के विचारों व माँ के नाम उनके संदेश पर आधारित हमारी खास पेशकश। आकाशवाणी अल्मोड़ा से इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी अपने रेडियो मित्र पवन के साथ। कार्यक्रम में आइए अब जानते हैं आज यानी 10 मई का इतिहास। दोस्तों, 10 मई सन 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में जीत के बाद तत्कालीन भारत की राजधानी अकबराबाद में प्रवेश किया था। साल 1857 में इसी दिन भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ था। 10 मई वर्ष 1981 में आज के दिन पहली बार बॉम्बे में रात्रि क्रिकेट मैच खेला गया था। साल 1994 में 10 मई का ही वो दिन था जब दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला

द्वारा प्रिटोरिया में एक ऐतिहासिक समारोह में राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की गई और 10 मई सन 2007 में आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कार्यस्थल पर होने वाले भेदभाव पर अपनी रिपोर्ट जारी की। दोस्तों, इसी के साथ इतिहास में आज के दिन कुछ महान हस्तियों का निधन भी हुआ था, आइए जानते हैं। 10 मई सन 2022 में आज के दिन प्रसिद्ध भारतीय संतूर वादक शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ था। साल 1936 में आज ही के दिन प्रसिद्ध चिकित्सक राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता मुख्तार अहमद अंसारी का निधन हुआ था, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। और 10 मई वर्ष 2002 में फिल्म जगत के मशहूर उर्दू शायर कैफी आजमी का निधन हुआ था। अब एक नज़र आज के दिन जन्मे उन प्रसिद्ध व्यक्तियों पर जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर प्रसिद्धि हासिल की। 10 मई सन 1905 में आज ही के दिन बांग्ला और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और अभिनेता पंकज मलिक का जन्म हुआ था। और साल 1986 में 10 मई को ही भारतीय शतरंज खिलाड़ी पेंटाला हरिकृष्णा का जन्म हुआ था। तो साथियों, ये थी देश और दुनिया के इतिहास से जुड़ी आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। कार्यक्रम में आगे बारी होगी आज के प्रश्न की, लेकिन उससे पहले ये प्यारा सा गीत आप सबके लिए।

साथियों, हर रोज की तरह आज भी हम लेकर आए हैं कार्यक्रम से जुड़ा आज का प्रश्न। लेकिन उससे पहले कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर और सही उत्तर बताने वाले श्रोता साथियों के नाम हम साझा कर रहे हैं। कल हमने प्रश्न पूछा था, बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आमार शोनार बांग्ला। जी हाँ साथियों, आमार शोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हमें भेजा है सोंगा छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार, सावित्री देवी और हेयांश कुमार ने। वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल, सुषमा और मायरा सरोशे ने। गुजरात गांधीग्राम से सही उत्तर भेजा है प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी ने। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल और पूजा ने। ग्राम नागर कोहरा से बबलू, जामुन और बेबी आराध्या ने। गुमला झारखंड से हमें सही उत्तर भेजा है SM जावेद ने। और कवर्धा छत्तीसगढ़ से सही उत्तर भेजा है विनय, नयन और सुमांशु ने। और साथियों, इसी के साथ अब प्रस्तुत है हमारा आज का प्रश्न। प्रश्न है, पेंटाला हरे कृष्णा का संबंध किस खेल से है? प्रश्न एक बार फिर से, पेंटाला हरे कृष्णा का संबंध किस खेल से है? इस प्रश्न का सही उत्तर हम अपने कल के संस्करण में आपको बताएंगे। और तब तक आप भी इस प्रश्न का सही उत्तर हमें ज़रूर भेजें हमारे कार्यक्रम के व्हाट्सएप नंबर 9411100112 पर। और दोस्तों, इसी के साथ अब समय हो चला है कार्यक्रम के समापन का। अभी अपने दोस्त पवन को दीजिए अनुमति, कल फिर आपसे होगी मुलाकात युवाणी कार्यक्रम के एक और नए अंक के साथ। और चलते चलते आप सभी से कहना सिर्फ इतना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।

अभी वह साथी सुन रहे थे अपने कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम उत्तरायण।

तू आपण नांदी न लीजी पूर जीवन संघर्षमय रहें और हमेशा आपण नांदी ने भलाई सोचें। तो हम लोगों का कर्तव्य हूँ कि हम आपण मैक ध्यान धरूं, वील हम उनके कशी नौ महीन अपने गर्भ में पालो और एक बाद हमर लीजी रात दिन एक करें, हम उनको भल शिक्षा दी और भल हमर लीजी खाण पीने की व्यवस्था करें, भल पहनावा व्यवस्था करें, कहला हम उनके कोई परेशानी है वो हम उनको मुक्त कराने की कोशिश करें। तो हमारे कर्तव्य हैं कि हम अपन मैं बाबू ध्यान धरूं, अपन मैं एक ध्यान धरूं और अपन है जो ठुल छन श्याण छन उनर हमेशा सम्मान करूं, आदर करूं और अपन है नानकला आदर सम्मान करूं। तो मैं सब चीज़ मिल जाल लेकिन मैं नहीं मिलो, ये बात का हमेशा ध्यान में धरण छ। और नारी जीवन तो एक न एक दिन मैं तो बढ़ना छ, चाहे कोई लछ कोई ले चल छ, जब संसार में है तो कहले की चक्र छो, जब कोई ले चिल पैद हैं फिर उगल में बड़न बढ़ूँ। तो हमेशा चेली नक सम्मान करण छ और उनर जैसे हम अपन चलोग लालन पालन करनू उसके लालन पालन अपन चेली नक करण छ, यो हम सब नक दायित्व हूँ। तो प्रकृति वी के वजल चले ले श्रोताओं, प्रकृति हरी भरी रो, यहाँ हमेशा साफ सफाई स्वच्छता ले रो और ये बात में हम उनके ध्यान धरण छ। और कहले कि जो जीवन में हम अरियाते ये में हम उनके पानी भोजन और हाओ, ये तीन चीज़ बहुत जरूरी छन, ये हमार स्वास्थ्य लीजिए या हम उनके जीवन धरण लीजिए। बिना पानी हम जीवन नहीं रह सकना, बिना हवल हम जीवन नहीं रह सकना। तो हम उनके अपन जो जल छ एक संरक्षण करने कोशिश करण छ और अपन चारों तरफ साफ सफाई हम उनके ध्यान धरण छ। दगड़े बहुत सारे हम उनके कहले कि हाउ हम उनके पेड़ों में जल मिले तो बोर्ड डाई लगन छी और जो हम उनके बहुत सारे बीमारी बटी बचू नहीं लें। कृषि और औद्योगिक जरूरतन को पूर्ण करने लीजिए, जलवायु परिवर्तन प्रतिकूल प्रभाव उनके कम करने लीजिए। जरूरी छ कि हम खूब पेड़ लगूं और पानी की बचत करूं। दगड़े भविष्य में जो उन्हीं वाली जो पीढ़ी छू के साफ पानी मिल पाओ और जल संरक्षण यह को जल्द जरूरी छ कि उन्हीं वाले दिनों में पानी कम समस्या हम उनके हैं सकें। तो वीक लीजिए हम उनके पानी के संरक्षित करना बहुत जरूरी छ। जनसंख्या वृद्धि दगड़ उदय जल एक मांग ले बढ़न लग रहे हैं, यह लीजिए जल संरक्षण बहुत जरूरी छ। हम उनके जो हमारे गाड़ के झड़ उनके स्वस्थ स्वच्छ धरने हमार प्रयास रहना चाहें, गंदगी गाड़ के घर में नहीं जो। और जो अगर गाड़ के घर में हम गंदगी डालना तो वो पानी का हम पीनू या हमार जो जानवर छन पशु छन उल पीनी तो उल बीमार है सकनी। तो हम उनके गाड़ के घर के गंद करण है थी, गंदगी वाले जो पानी छू के कहीं हम गड्ढे में देख लीजिए अलग से गड्ढे बड़े वेट उनके गड्ढे में डालूँ, गंदगी वाले पानी का हम अपन गाड़ के धरन में नहीं जान दूँ। और यही हमार फिर सिंचाई रूप में ले यो गाड़ के धरन पानी हम उनके प्राप्त हैं। तो हमार कर्तव्य हूँ कि हम स्वच्छता के लिए ध्यान धरूँ और अपन पर्यावरण के लिए ध्यान धरूँ। ठंडी हवा ठंडी पानी हम उनके तब मिलल जब हम खूब बोर्ड डाई लगूँ और जो हमार नल धार छन उनके हम भल ढंगल संरक्षित करूँ। तो गर्मी के दिन में हम उनको फिर नल धर याद हैं तो उनके हम संरक्षित धरण छ, उनर चारों तरफ खूब चौड़ पत्ती वाले बोर्ड लगून छन, यो कोशिश हमारे होनी चाहिए। श्रोताओं जैसे कि आज इतवार छ और आप लोगों का इंतजार होना अपन फरमाइशक गीतों, तो आपू के हम सुनूँ। सबसे पहले आपको सुनूँ शंकर प्रतीक गई यो गीत।

उत्तरायण कार्यक्रम सुनने सब श्रोताओं के गोकुलक नमस्कार। श्रोताओं, आज मातृ दिवस यानी कि मदर्स डे, और हर साल 10 मई हूँ यक मनाई जा, और 1908 बटी यह एक शुरुआत है। मदर्स यानी कि हमर ईज, जो हम उनके 9 महीने जेल अपने गर्भ में पालो और बहुत कठिनाई साथ हम उनका जन्म दे, और फिर हम उनके भल शिक्षा, हमर भरण पोषण, लालन पालन भल ढंगल करें, उमे के हम नमन करनू, उस सब में इनका नमन करनू

0: श्रोता हूँ, आपको फरमाइश यो गीत आपको सुनने छा गायक छी शंकर उप्रेती। यो गीत का सुनन चाहना छी ग्राम चौरा बटी श्री राम सिंह सागा रतन बिष्ट हयात बिष्ट पप्पू बिष्ट और इन्हें बहुत सा दगड़ी। और यो गीत के ग्राम ढोर व किशन सिंह अधिकारी, देव सिंह अधिकारी, प्रियांश और सोनू। तो आपको फरमाइश यो गीत आप सुनो।
1: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for ₹10.99 lakh with a battery EMI of just ₹3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
0: श्रोताओं, अखिल गीतक जो फरमाइश ग्राम पहल बटी भोपाल सिंह कनवाल और उनार परिवार वाल और ग्राम नौला बटी हरीश बिष्ट पप्पू नेगी और भुवन जोशी। यह सुनन चाहनी दीपा चौहाना गई यो गीत।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अखिल फरमाइश हम उनका रहे जो ग्राम काकड़ी काट भे छिन हरीश सिंह, देविन कांडपाल और शशि, दीपा और हंसा। यही गीतली जी बेरीनाग बटी छिन जगदीश सुप्याल और इनार परिवार वाल। यो सुनचानी दीवान सिंह कनवाल, लता तिवाड़ी और शीला पंथक गई यो गीत।

0: श्रोताओं, अब हम फरमाइश गीत आपको सुनने छा। गायक छी दीवान सिंह कनवाल, लता तिवाड़ी और शीला पंत।
1: Built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
2: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
0: श्रोताओं, अगिल गीत एक जी फरमाइश हम उनके ग्राम फड़का शैलीधार बटी, पंकज कार की, रोहित कार की, अंजू, प्रतिभा, दीपिका और शैलजा, ग्राम गर्भनार बटी छिन्न पान सिंह बिष्ट, आशीष बिष्ट और इनर परिवार वाल। यह सुन चाहनी रमेश जोशी गई यो गीत।

0: શ્રોતાઓ, આપણું એ ગીત શુણે છે. ગાયક છે રમેશ જોશી.
1: Inspiration built into every arrival. This may drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
1: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
2: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa.
0: श्रोताओं, हमें बहुत सारे श्रोता हम उनके व्हाट्सएप में फरमाइश भेजनी और वो यस फरमाइश भेज देनी जो हमारे यहाँ बटी जो गीत प्रसारित नहीं हों हमारे यहाँ बटी हमारे केंद्र बटी, चाहे वो देहरादून से, चाहे अल्माड़ से या पौड़ी से, जहाँ बटी जो गीत जो हमारे केंद्र बटी प्रसारित होनी वही गीत इनका हम आपको सुन सकनू. क्योंकि बहुत सारे गीत जो यूट्यूब में या कैसी दिन में होनी वो गीत यहाँ बटी शायद रिकॉर्ड नहीं हुन, यहाँ पर केवल वही गीत रे जो यहाँ बटी स्वर परीक्षा में पास होनी उनरा गीत या रिकॉर्ड होनी और उनरी फरमाइश हम आपको सुन सकनू. और जब जो लोग आप अगर हम उनको फरमाइश भेजला तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लिया 9411101111

द्वी द्वी तो यो नंबर में आपको हम उनका फरमाइश भेज सकता। और अगिल गीता लीजिए हम उनका फरमाइश रहे बागेश्वर गरुड़ बटी विक्रम जड़ौत पूरन दीपू दिनेश और अंजू बिहार खोला अलमड़ बटी अनिल कुमार अर्जुन कुमार राकेश कुमार और जितेश कुमार और चकुनी रानीखेत में सतीश मसी और न परिवार वाल यह सुनन चानी नयन नाथ रावल गई योगी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उत्तरायण। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:30 होने वाले हैं। अब उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ।
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी।
5: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। राज्यपाल गुरुमित सिंह ने लैंसडाउन में भुल्ली सशक्तिकरण केंद्र में संचालित विभिन्न प्रशिक्षण एवं उत्पादन इकाइयों का अवलोकन किया। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने का कार्य कर रही है और नई टिहरी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बहुउद्देश्य विधिक सेवा एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वास्थ्य युवाओं की अहम भूमिका है। राज्यपाल गुरुमित सिंह ने अपने 2 दिवसीय लैंसडाउन प्रवास के दौरान के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हुए सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं अधिकारियों से संवाद किया। राज्यपाल ने पहले वॉर मेमोरियल में राष्ट्र की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों

0: के साथ आयोजित सैनिक सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सैनिक जीवन, अनुशासन, समर्पण एवं राष्ट्रभक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है और भारतीय सेना सदैव देश की सुरक्षा एवं गौरव की प्रतीक रही है। इसके बाद राज्यपाल ने भुल्ली सशक्तिकरण केंद्र में संचालित विभिन्न प्रशिक्षण एवं उत्पादन इकाइयों का अवलोकन किया और वहां कार्यरत महिलाओं एवं कार्मिकों से संवाद किया। राज्यपाल ने केंद्र की कार्यों की जमकर सराहना की।
1: आज लैंसडाउन के अंदर गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर के भुल्ली सशक्तिकरण केंद्र, वुमेन एम्पावरमेंट केंद्र के अंदर में आज मैंने देखा कि कितना सुंदर कार्य मुखिया है। इनकी सोच से मैंने एक कॉफी शॉप देखी, उसके अंदर में किस प्रकार से क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी और डायनेमिज्म एक बहुत ही सुंदर स्टैंडर्ड की कॉफी शॉप को उन्होंने बनाया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सोच है कि किस प्रकार हम अपने महिलाओं को, अपनी बेटियों को एम्पावर करें ताकि उनकी पैशन, उनकी लगन, उनका जो हुनर है वो किस प्रकार से उनसे उनका अर्थव्यवस्था के अंदर में जायजा हो।
0: शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषाओं पर ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप समावेशी और समान शिक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष ब्रिजलाल और समिति के सदस्यों ने आज बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए, जिसके बाद समिति के सदस्यों ने बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास कार्यों का अवलोकन भी किया। उन्होंने यात्री सुविधाओं, सौंदर्यकरण, नदी तट विकास, पैदल मार्गों, सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं आधारभूत संरचनाओं को लेकर किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। समिति सदस्यों ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में परंपरा और आधुनिकता का संतुलित एवं आकर्षक स्वरूप विकसित किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को अधिक सुव्यवस्थित एवं सुगम सुविधाएं प्राप्त होंगी तथा धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिलेगी।
2: समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुन रहे हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और डॉक्टर धन सिंह रावत ने सतपुली के खैरासैण में नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय भवन का उद्घाटन किया। श्री महाराज ने कहा कि यह केवल एक भवन का उद्घाटन नहीं बल्कि क्षेत्र के युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने का प्रयास है। इस दौरान डॉक्टर रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी शहरों जैसी शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध हों ताकि वे प्रतियोगी दौर में पीछे न रहें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने का कार्य कर रही है। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं एवं रोजगार के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। नई टिहरी में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल द्वारा बहुद्देश्य विधिक सेवा एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। नगर पालिका परिषद सभागार में आयोजित शिविर में आमजन को निशुल्क कानूनी सहायता, सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न प्रमाण पत्रों की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने लोगों से अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। शिविर में राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, शिक्षा, पुलिस और पशुपालन सहित कई विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान आय, जाति, दिव्यांग एवं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए गए, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवा वितरण का कार्यक्रम किया। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणि ने बताया कि यह शिविर विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आयोजित किया जाता है।
3: ये शिविर मुख्यतः जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे मजदूर वर्ग है, उनको ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य मुख्यतः ये था कि जो समाज का जो सबसे कमजोर तबका है उस तक पहुंच सकें, उनको सरकारी सेवाएं या सुविधाएं वो उपलब्ध करा सकें,

0: और काफ़ी हद तक लोगों को बहुत सारी सामग्री वितरित की गई, स्टॉल लगाए गए, गवर्नमेंट की स्कीम्स का लोगों ने फ़ायदा उठाया, बहुत सारे बच्चों को जो मेधावी छात्र थे उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उनको ट्रॉफियाँ और सर्टिफिकेट प्रदान किया गया, लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले।
1: चमोली जिले के गोपेश्वर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज से दो दिवसीय जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रभारी जिला क्रीडा अधिकारी द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में जनपद की 8 सर्वश्रेष्ठ टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। विजेता टीम को 21 व उप विजेता टीम को 11,000 की नगद धनराशि और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। प्रतियोगिता के संयोजक दीपांकर परमार ने बताया कि जिला स्तरीय टूर्नामेंट में जिले की सर्वश्रेष्ठ 8 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। इसके साथ ही प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को भी सम्मानित किया जाएगा।
2: दिवसीय जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट स्टेडियम गोपेश्वर में करवाया जा रहा है और जिला स्तरीय ये फुटबॉल टूर्नामेंट है का जो उद्घाटन किया गया वो प्रभारी क्रीडा अधिकारी गोपेश्वर द्वारा कराया गया है। 8 टीमें इसमें हिस्सा ले रही है। हमारे द्वारा प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपए और द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपए दिया जा रहा है। खेल प्रतियोगिता बहुत ही अच्छी चल रही है।
1: राज्य में कल से मौसम एक बार फिर बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं मैदानी जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 4,500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। विभाग ने पर्वतीय जिलों में आकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। वहीं 12 और 13 मई को मौसम गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश, ओलावृष्टि और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों और पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। राज्यपाल गुरुमीत सिंह ने लेंसडाउन में भुल्ली सशक्तिकरण केंद्र में संचालित विभिन्न प्रशिक्षण एवं उत्पादन इकाइयों का अवलोकन किया। कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा, राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने का कार्य कर रही है और नई टिहरी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बहुउद्देश्य विधिक सेवा एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। भक्ति संगीत कार्यक्रम में आइए पहले सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की गाई है भक्ति रचना।

और अब श्रोतो भक्ति संगीत कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं हरिओम शरण का गाया ये भजन।

श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:50 होने वाले हैं। अब थोड़ी देर में गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी देहरादून बीटी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में अखिलेश चंद्र ग्यारोला। पहली मुख्य समाचार। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लैंसीडॉन में आयोजित सैनिक सम्मेलन में सैनिकों और पूर्व सैनिकों का कु उत्साहवर्धन के वॉर मेमोरियल में शहीदों तें श्रद्धांजलि अर्पित करी के विकास योजनाओं की समीक्षा के। नई टिहरी में बहुउद्देशीय विधिक सेवा एवं जागरूकता शिविर को आयोजन, आम लोगों तें निःशुल्क कानूनी सहायता और विभिन्न सरकारी सेवाओं की जानकारी उपलब्ध करेंगे। अल्मोड़ा का सल्ट क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हॉटमिक्स प्लांट पर प्रशासन ने कार्रवाई, कई अनियमितता मिलने पर प्लांट हुए सील। और राज्य का अलग अलग हिस्सों में भोल हल्की बारिश होने की संभावना, कखी कखी आंधी तूफाने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अपना द्विदिना का लैंसीडॉन दौरा का दौरान आज सैनिक सम्मेलन में शामिल हुए सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनका परिवारजनों का को उत्साहवर्धन के। ये दौरान वॉर मेमोरियल पहुंची के उन शहीदों तें श्रद्धांजलि दे और वीर नारियों तें सम्मानित के। राज्यपाल ने गढ़वाल राइफल्स की वीरता और राष्ट्र सेवा की भावना की सराहना के और बोली कि यह रेजिमेंट देश का गौरव और शौर्य की पछाण छ। उन बोली कि उत्तराखंड वीर सैनिकों की भूमि छ और यखा का युवा राष्ट्र सेवा की भावना हमेशा सी यखा के युवाओं में राष्ट्र सेवा की भावना हमेशा सी छ। ये दौरान गढ़वाल राइफल्स केंद्र का उत्कृष्ट योगदान खुण विशेष ट्रॉफी भी प्रदान किए गए। अपना द्वि दिना का कार्यक्रम का दौरान राज्यपाल ने जिला में चलने वाली विभिन्न विकास योजनाओं की भी समीक्षा की। बैठक में पर्यटन, सड़क, पेयजल, स्वरोजगार और अन्य विकास कार्यों की जानकारी दिए गए। उन अधिकारियों ते लैंसीडॉन में आधुनिक पुस्तकालय विकसित करने का और पर्यटन विकास का दगड़ पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिए। नई टिहरी में आज उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल का तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल द्वारा बहुउद्देशीय विधिक सेवा एवं जागरूकता शिविर को आयोजन किए गए। नगर पालिका परिषद सभागार में आयोजित ये शिविर में आम लोगों तें निःशुल्क कानूनी सहायता, सरकारी योजनाओं की जानकारी और विभिन्न प्रमाण पत्रों की सुविधा उपलब्ध करेगन। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट।
1: कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का रूप में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यपालक अध्यक्ष मनोज कुमार तिवारी और विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति आलोक महरा उपस्थित रहनी। ये अवसर पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने बोली कि शिविर का उद्देश्य न्याय तणी समाज को अंतिम मनखी तक पहुँचाण। उन्होंने बोली कि विधिक सेवाएं केवल न्यायालय तक सीमित नहीं रहन चेन, बल्कि घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद और श्रम विवाद जनी मामलों में भी निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जांदी। उन्होंने लोगों से अपना अधिकारों और कर्तव्यों का प्रति जागरूक रहने को आह्वान भी करी। शिविर में राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, शिक्षा, पुलिस और पशुपालन सहित बिझा विभागों ला स्टॉल लगाकर लोगों को समस्याओं का समाधान करी। ये दौरान आय, जाति, दिव्यांग एवं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाई गयी, जबकि स्वास्थ्य विभाग ला निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवाओं को वितरण भी करी। आकाशवाणी देहरादून का वास्ता समाचार कक्ष बटी जय वीर सिंह।
0: बागेश्वर जिला की सुंदरढुंगा घाटी में 15,092 फीट की ऊंचाई पर स्थित कनकाटा दर्रा ते युवा ट्रैकरों की एक टीम ने 3 दिनों में सफलतापूर्वक पार किया। यु दर्रा सुंदरढुंगा घाटी का कठिन और रोमांचक ट्रैकों में एक मने जांदू। औखा पहाड़ी बाटा, बर्फ सी ढकिया ट्रैक और ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी जनी चुनौतियों का बावजूद दलन यु अभियान पूरू के। ट्रैक का दौरान खराब मौसम का कारण मुश्किल बढ़ियन पर टीमन संयम और आपसी तालमेल सी यात्रा पूरी के। माउंटेन गाइड और अभियान दल का लीडर जीतू दानू ने बताया कि सुंदरढुंगा क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता ये ट्रैक तें खास बनाउंदी। उन बोली कि इना अभियान युवाओं तें एडवेंचर टूरिज्म की ओर आकर्षित करने का साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों तें नई पहचान दिलाउंदन।
2: ये जो कनकाटा पास ट्रैक था, ये टोटल 4 लोग थे, इसमें 3 लोगों ने कनकाटा पास पूरा किया और एक जो मेंबर थे हमारे वो सुखराम से वापस आए, उसी रूट से सामान लेकर वापस आए, वो बैकअप टीम में थे। और इसमें पूरी सेफ्टी के साथ पूरा सेफ्टी गियर हमारे पास उपलब्ध था और इसको हमें पूरा करने में जातुली 3 दिन लगे। 5 तारीख से ये शुरू किया था हमने और 7 तारीख को कम्प्लीट हो गया था ये हमारा।
0: उद्योग विभाग राज्य कर्मचारी संघ का पदाधिकारियों ने आज ग्राम्य विकास, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग

0: उद्योग मंत्री भरत सिंह चौधरी दगड़ी देहरादून में शिष्टाचार भेंट के। ये दौरान कर्मचारी प्रतिनिधियों ने स्थानांतरण, पदोन्नति, मृतक आश्रित नियुक्ति और संविदा कर्मचारियों से जुड़िया विभिन्न मुद्दों का बारह माह श्री चौधरी तय मांग पत्र सौंपी। मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कर्मचारियों की समस्याओं और सुझावों तय गंभीरता से सुनी को बोली कि सभी मामलों को नीतिगत और न्यायोचित तरीका से समाधान किए जालू। उन संबंधित अधिकारियों तय समस्याओं का त्वरित निस्तारण का निर्देश भी दिनन। श्री चौधरी ने बोली कि कर्मचारी कै भी विभाग की कार्यप्रणाली की महत्वपूर्ण कड़ी होंदन और उनकी समस्याओं को समयबद्ध समाधान सरकार की प्राथमिकता छ।
1: प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जानु छ। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड है फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छ।
0: अल्मोड़ा जिला का सल्ट क्षेत्र का झीमार मा अवैध रूप से संचालित होने लग्या हॉटमिक्स प्लांट पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई के और प्लांट सील कर दिए। संयुक्त निरीक्षण टीम ने जांच का दौरान कई गंभीर अनियमितता पायन जैका बाद यह कार्रवाई हुए। बतायू जानू छ कि पिछला करीब दुई महीनों बिटी प्लांट को संचालन बिना आवश्यक अनुमति का किए जानू छ। स्थानीय लोगों ने पर्यावरण और सुरक्षा तय खतरा बताए कि ये की शिकायत प्रशासन तय कहते हैं। मामला मुख्यमंत्री पोर्टल तक पहुंचना का बाद प्रशासन, खनन विभाग और संबंधित अधिकारियों की टीमन मौका पर पहुंची के निरीक्षण के। जांच में पता चली कि प्लांट का पास संचालन से संबंधित आवश्यक अनुमति नीच है, साथ ही चिमनी निर्धारित मानकों से कम ऊंचाई की पाए गए और परिसर का चारों ओर नियमानुसार चार दीवारी भी नीच है। खनन अधिकारी राहुल नेगी ने बताया कि कई नियमों का उल्लंघन तय देखी कि प्रशासन ने प्लांट तय तत्काल प्रभाव से सील कर दिए।
2: इसमें मौके स्थल पर पाया गया कि इनके द्वारा सीटीओ और सीटीए की परमिशन नहीं ली गई थी और पोर्टल भी नहीं खोला गया है खनन विभाग से, जिस कारण से इसको अवैध मानते हुए इसको मौके स्थल पर सीज किया गया। ये मगरेतर कार्रवाई है तो एसडीएम साहब पर इसमें स्थित रिपोर्ट दी जाएगी, तब तक प्लांट बंद रहेगा।
0: उत्तराखंड में भोल बिटी मौसम का फिर बदलना का आसार छन। मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और बारिश ने लेकर चेतावनी जारी की। मौसम विभाग के अनुसार राज्य का पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती, वखी मैदानी जिलों में कखी कखी हल्की बारिश और गरज का दगड़ी बौछार पड़ने की संभावना छन। 4,500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती। विभागन पर्वतीय जिलों में बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं का अनुमान लगे। वखी 12 और 13 मई तक मौसम गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने की संभावना छ। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कखी कखी तेज बारिश, ओलावृष्टि और 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवा चल सकती। मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा पर जाने वाला यात्रियों और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाला लोगों तय सतर्क रहने की सलाह दीनी। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और चट्टान गिरने की आशंका भी जताए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पौड़ी जिला का सतपुली स्थित खैरासैण में नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय भवन को उद्घाटन किया। ये सी स्कूली छात्रों तय अपना इलाका में ही बेहतर उच्च शिक्षा सुविधा मिल सकली। सतपाल महाराजन बोली कि आधुनिक सुविधाओं दगड़ी सुसज्जित ये महाविद्यालय में विद्यार्थियों तय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हुएली। वखी डॉ. धन सिंह रावतन बोली कि सरकार पर्वतीय इलाकों में शिक्षा सुविधाओं तय मजबूत करने का वास्ता लगातार काम करनी छ, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का युवाओं तय भी आधुनिक शिक्षा को लाभ मिल सके। ये कबाद सतपाल महाराजन सतपुली झील निर्माण कार्यों को निरीक्षण के और अधिकारियों तय गुणवत्ता का दगड़ी समयबद्ध तरीका से कार्य पूरा करने का निर्देश दिन। उन बोली कि करीब 56 करोड़ रुपयों की लागत से बननी ई झील का पूरा होने से इलाका में पर्यटन और रोजगार तें बढ़ावा मिले। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लैंसिडॉन में आयोजित सैनिक सम्मेलन में सैनिकों और पूर्व सैनिकों को उत्साहवर्धन के। वॉर मेमोरियल में शहीदों तें श्रद्धांजलि अर्पित करी के विकास योजनाओं की समीक्षा के। नई टिहरी में बहुउद्देशीय विधिक सेवा एवं जागरूकता शिविर को आयोजन। आम लोगों तय निशुल्क कानूनी सहायता और विभिन्न सरकारी सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराए गए। अल्मोड़ा का सल्ट क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित होने लग्या

0: हॉटमिक्स प्लांट पर प्रशासन ने कार्रवाई, कई अनियमितता मिन पर प्लांट हुए सील। और राज्य का अलग अलग हिस्सों में भोल हल्की बारिश होने की संभावना, कखी कखी आंधी तूफाने की चेतावनी। धन्यवाद।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं समूह स्वरों में गाए भोजपुरी लोकगीत।

0: श्रोतो, प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुन रहे थे समूह स्वरों में गाए भोजपुरी लोकगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि समृद्धि।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा।
2: किसान भाइयों एवं बहनों नमस्कार, मैं मनोज भट्ट कृषि समृद्धि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे समक्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी मीणा जी उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: आज हमारा चर्चा का जो मुख्य विषय है धान की सीधी बुआई तकनीकी की क्या उपयोगिता है, तो इस संबंध आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में पानी की कमी, मजदूरों की समस्या और खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए धान की DSR तकनीकी जो किसान के लिए एक उपयोगी और आधुनिक विकल्प बनकर उभर रही है, तो इसी संबंध पे आज हम डॉक्टर मीणा जी से चर्चा करेंगे।
3: जी,
2: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, DSR तकनीकी क्या है और ये जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जो पारंपरिक धान की किसान भाई बुआई करते हैं उससे किस प्रकार से ये भिन्न है?
3: जी, सभी किसान भाई और बहनों को नमस्कार। जैसा कि आज का विषय है DSR डायरेक्ट सीड राइस, यानी कि धान की सीधी बुआई तकनीक। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है धान की सीधी बुआई, पर पहाड़ों में तो किसान भाई पहले से ही सीधी बुआई करते आ रहे हैं, तो मतलब इस तकनीकी में क्या

0: क्या फर्क है और इस तकनीकी की सभी जो बिंदु है उस पर अगर हम गौर करें और किसान भाई उसी तरह से काम करें तो ज्यादा उपज कैसी ली जा सकती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि धान जितना भी क्षेत्र में जो भारतवर्ष में धान लगाते हैं उसकी क्या क्या विधियां हैं। जैसे कि आप हम पोत तैयार करके, ज्यादातर किसान ऐसा भी करते हैं उत्तराखंड में भी, स्पेशली जो प्लेन्स वाला जो एरिया है, कि धान की वो पोत तैयार करने के बाद में और खेत की पहले मथाई करते हैं, पडलिंग करते हैं, उसके बाद में उसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेड राइस। दूसरा जो पहाड़ों में जो किसान भाई जिसको उपराऊ धान बोलते हैं, किसान भाई बहन जो बारिश आधारित जो धान की खेती करते हैं और उसमें क्या करते हैं, छिटकुआ विधि द्वारा सीधी वो बीज डाल देते हैं और ऊपर से जो आपका जो हल, देसी हल चला देते हैं, उससे धान का कहीं बीज का बीज कहीं उगता है कहीं नहीं उगता है और कहीं खरपतवार का ज्यादा प्रकोप हो जाता है, किसी तरह का पोषक तत्व का प्रबंधन सही से नहीं कर पाते हैं, तो उसकी जो उपज है उतनी अच्छी नहीं मिलती है
1: जी।
0: तो ये सीधी बुवाई तकनीकी में क्या है कि आपको सही किस्म का चुनाव, सही लगाने का तरीका, खेत की तैयारी आप कैसे करो और पोषक तत्व जल प्रबंधन या खरपतवार प्रबंधन सही तरीके से करके आपको जो ट्रांसप्लांटेड राइस है उसी की तरह आपको उपज लेना, एक ऐसी एक तकनीकी
1: जी।
0: तो आज हम इसके बारे में चर्चा।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बात आपने अभी बताई कि जो DSR तकनीकी जो है वो पारंपरिक जो प्रति क्षेत्र पारंपरिक धान की जो लगाते हैं उससे किस तरह से भिन्न है
0: जी।
1: अब डॉक्टर साहब ये बताइए कि DSR जो तकनीकी, इसके क्या मुख्य लाभ होंगे अगर किसान भाई इसको अपनाते हैं तो
0: जी। जैसा कि मैंने कहा कि पहाड़ में जो किसान भाई हैं सीधी बुवाई द्वारा जो धान की जो खेती करते हैं, पहली बात तो यह है कि धान जो जमीन है जो हल्की है, उसमें हम सीधी पोत तैयार करके और मथाई करके हम नहीं कर सकते हैं, तो इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं अगर हम सही तरीके से करें तो सबसे पहली बात यही आती है कि ये पक्के जल्दी तैयार हो जाता है, लगभग आपके लगभग 15 दिन या 20 दिन आपकी जो ट्रांसप्लांटिंग विधि द्वारा आप जो धान जो तैयार करते हैं उसे उसकी तुलना में जल्दी पक्के तैयार हो जाती है। साथ में जो पानी की आवश्यकता है, जो पानी की एक प्रमुख समस्या है किसान यहाँ पे जो पहाड़ों में है, तो लगभग 20-25% इसको जो पानी की जो है उसकी भी जो इसको कम जरूरत पड़ती है। और एक चीज और, जो आपका जो ट्रांसप्लांटेड राइस होता है जो पौध तैयार करते हैं, उसमें पौध तैयार करने में, जमीन की मथाई करने में, बुआई में, इसमें बहुत सारी लेबर लगती है, बहुत सारे मजदूरों की जरूरत पड़ती है, और जब खासतौर पर जब सीजन का टाइम होता है तो मजदूर नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसी अवधि में इसमें मजदूरों की मतलब जो लागत है बहुत कम देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो धान के साथ साथ ना कुछ हम GHG एमिशन बोलते हैं, मतलब ऐसी गैस निकलती है जो पर्यावरण के ऊपर उनका जो दुष्प्रभाव है, तो वो गैसेज भी इसके अंदर कम निकलती है, तो इस तरह से जो लागत है लागत इसमें कम लगती है और समय की बचत होती है, जल्दी पक्के तैयार हो जाता है। साथ में जो जमीन के ऊपर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जो आप पडलिंग करते हो, बार बार जुताई करते हो, उससे जो नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं वो प्रभाव कम देखने को मिलते हैं। पोषक तत्व की जो दक्षता है, जो आप जो नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, पोटेशियम ऐसे जो आप उर्वरकों का प्रयोग करते हो उसकी दक्षता है जो इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस तरह से डायरेक्ट की राइस जो जो आपकी जो सीधी बुवाई पद्धति इसके ये लाभ है।
1: डॉक्टर साहब काफी अच्छे आपने इसके बारे में बताया कि किस तरह से ये इससे जो पारंपरिक विधि से भिन्न है और इसके क्या लाभ है। तो डॉक्टर साहब DSR जो तकनीकी है धान की बुवाई की, इसमें भूमि की जो तैयारी किसान भाई किस तरह से करें।
0: जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि किसान भाई यहाँ क्या करते हैं, जमीन हल्की है, एक बार जुताई की, मेड़ भी ढंग से नहीं बनाते हैं और ऐसे ही उसकी जो छिटकुआ विधि द्वारा डाल देते हैं
1: जी।
0: तो मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले आप खेत को समतल करें, खेत की मेड़ बनाएं, और आप ये इस बात को ध्यान में रखें कि खेत का पानी खेत में ही रहे, आपका खेत का पानी बाहर ना जाए, अगर जाए भी तो सही तरीके से जल निकास का इस तरह से करो कि पानी का मिट्टी का कटाव ना लगे और पानी आराम से निकल के जाए। तो सर हमारा जो पहला उद्देश्य ये है कि आप पहले अच्छी से जुताई करो, जुताई करने के उपरांत उसके ऊपर पाटा लगा के उसको आप समतल कर लो, जमीन आपकी भुरभुरी, क्योंकि आपको सीधी बुवाई आपको करनी, आपको ध्यान में रखना है कि कहीं भी जमीन ऊंची ना हो कहीं नीची नहीं हो, जहां जमीन ऊंची होगी तो वहां पे अंकुरण सही से नहीं होगा, जहां जमीन नीची है पानी के बराबर से हो सकता है आपकी शुरुआत में धान को नुकसान हो। तो इस तरह से आपकी जमीन को आप एकदम भुरभुरी और समतल और चारों तरफ मेड़ बंदी आपकी जमीन की होनी चाहिए
1: जी। डॉक्टर साहब ये तो बात रही भूमि की तैयारी की, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीज एक महत्वपूर्ण पार्ट किसी भी जो है फसल में वो करता है, अदा करता है
0: जी।
1: तो इसमें DSR विधि के लिए धान की किस किस्म का चयन करें और उसकी बुवाई किस तरह से किसान भाई को करनी चाहिए।
0: जब भी हम किस्म की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं बताऊं उसी किस्म पे आपको गौर करना, ऐसा नहीं। जब भी आप किस्म का चुनाव करते हो तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि आप सीधी बुवाई कर रहे हो। सीधी बुवाई में क्या है कि ऐसी किस्मों का चुनाव करना है जिनकी जिनकी जो जड़ है उनका विकास, उनकी वृद्धि बहुत ज्यादा होती हो, उनका उनका क्षेत्रफल ज्यादा होता हो, साथ में वो किस्में जो जल्दी पककर तैयार होती हो और उनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं जाती हो, तो ऐसी किस्मों का आप इसके लिए आप चुनाव कर सकते हो जिनकी मतलब जड़े गहरी हो ताकि वो नीचे गहराई तक पानी आप वो अच्छे से ले सके। हमारे संस्था ने कुछ किस्में विकसित की है जो कि उपराऊ यानी कि सीधी बुवाई वाले इसी तकनीक के लिए सबसे उपयोगी पाई गई है। कुछ किस्में जैसे कि विवेक धान 154, 157, 159 जो अभी नई किस्म है। इसके साथ

0: साथ कुछ किस्में ऐसी है जो सिंचित क्षेत्र के लिए है, पर उनमें विशेष जो उनके गुण है जैसे कि वेलदान 85, 86, 88 और वेलदान 89, जिसको हम वेल बारीक धान भी कहते हैं। ये जो किस्में हैं ये क्या जल्दी पककर तैयार होने वाली किस्में हैं, तो इसलिए इन किस्मों का भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। साथ में किसान भाई अपनी लोकल किस्मों का भी कभी कभी करते हैं, उनके स्वाद उनका अपना उनसे जुड़ा हुआ रहता है। तो जो लोकल किस्मों में जो उनको किसान भाइयों को सबको अनुभव रहता है कि जिनकी जड़ों का विकास, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा, जिनकी जड़ों का विकास अच्छा हो तो जल्दी पककर तैयार होती हो, तो वो ऐसी किस्मों का चुनाव खुद के स्तर पर किसान भाई कर सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं किस्म की तो हमने करी, तो इसके लिए बीज दर कितनी रखेंगे किसान भाई और क्या बुआई की गहराई रहेगी, इस संबंध में थोड़ा बताएं।
0: इसके लिए सबसे पहले हम बीज दर की बात कर रहे हैं। किसान भाई जब छिटकुआ विधि द्वारा, जहाँ पहाड़ों में मड़ुए की बात भी करते हैं, मड़ुए की भी छिटकुआ विधि द्वारा करते हैं, तो जहाँ बीज 2-3 गुना डालते हैं उसी तरह वो ही सेम चीज धान के साथ भी करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ज्यादा, जब आपने खेत की तैयारी अच्छे से की है तो डर किस बात का, ज्यादा बीज आपको डालना भी नहीं है क्योंकि उससे लागत ही बढ़ती है, साथ में घना हो जाता है और घना होने के बाद आप प्रॉपर थिनिंग नहीं कर पाते हो। थिनिंग नहीं कर पाते हो तो फिर क्या है कि उसकी जो बाली है वो अच्छे से नहीं बन पाती ज्यादा घना होने की वजह से।
1: जी
0: तो सबसे पहले हम बीज दर की बात करेंगे, तो सीधी बुआई के लिए लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि आप मोटा मोटा अगर आप रखो तो लगभग 500 से 600 ग्राम बीज एक नाली जमीन के लिए पर्याप्त रहता है। और फिर बात आती है इसको लगाएं कैसे, कि आपने जैसे सीधी बुआई की बात की, मैंने कहा छिटकुआ विधि द्वारा नहीं करना है तो लगाए कैसे, जैसे आप गेहूं की बुआई करते हो 22.5 सेंटीमीटर पे लाइन से लाइन की दूरी, उसी तरह आप चाहो तो इसकी 20 सेंटीमीटर पे भी इसकी बुआई आप लाइन से लाइन की दूरी कर सकते हो। आप 22.5 सेंटीमीटर भी रखना चाहो तो रख सकते हो, अगर आप 25 सेंटीमीटर रखते हो तो भी चलेगा, पर आपको इस बात का ध्यान में रखना है जब आप 25 सेंटीमीटर लाइन से लाइन यानी पंक्ति से पंक्ति दूरी रखते हो तो पौधे से पौधे की दूरी लगभग 10 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। पर जब हम सीधी बुआई कर रहे हैं गेहूं की तरह, हम सीधी जब आपकी जिसको हम बोलते हैं कूड़ बोलते हैं, उमरा बोलते हैं, कूड़ बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, जिसके अंदर आप हल से सीधा बीज आप डालोगे तो पौधे से पौधे की दूरी आप सही से मेंटेन नहीं कर पाते हो। तो ऐसी अवस्था में हम मोटा मोटा आइडिया लेके रखते हैं कि कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर आपकी पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपको बीज उसमें नहीं डालना। अब तीसरी बात आती है इसकी गहराई। गहराई एक बहुत ही मुख्य है क्योंकि आप जब छिटकुआ विधि द्वारा आप जब करते हो और उस पर आप पाटा चला देते हो, हल चला देते हो, तो बहुत कभी कभी बहुत गहरा चला जाता है बीज, तो उसमें जो अंकुरणता उसकी जो प्रभावित होती है, ये सेम चीज़ अन्य जो फसलें जैसे कि मड़ो उसके ऊपर भी लागू होती है। तो आप लगभग 3 से 3.5 सेंटीमीटर इसकी जो गहराई है सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जब नमी ठीक हो उस गहराई पे आप बीज डालो, अंकुरण एकदम सही होगा।
1: जी डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि जो हम DSR विधि में बुआई करते हैं, जो किसान भाई भी करते हैं घर में पारंपरिक छिटकुआ विधि से, उसमें खरपतवार काफ़ी आ जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो इसके लिए प्रबंधन किसान भाई किस तरह से करेंगे?
0: बिल्कुल, पहाड़ों में जैसे कि हम देखते हैं तिपतिया
1: जी,
0: तिपतिया बहुत ही मतलब भयानक खरपतवार है और उपराऊ धान के अंदर खरपतवार का प्रकोप ज्यादा होता है। हम बात करें ट्रांसप्लांटेड या पडलिंग व जो मथाई करके जो धान तैयार करते हैं उसकी तुलना में, तो सब चीजों का प्रबंध अगर किसान भाई सही से उपयोग करे तो। अब आपको इस बात का ध्यान में रखता हुआ एक, जब भी आप खरपतवार की बात करते हो तो खरपतवार नाशियों का जो प्रयोग करते हैं, वैसे तो किसान भाई पहाड़ के अंदर गुड़ाई करते हैं, इसके अंदर जैसे 2 गुड़ाई इसके लिए पर्याप्त रहती है, पहली गुड़ाई लगभग बुआई के 20 से 25 दिन और दूसरी गुड़ाई जो है लगभग 45 दिन के उपरांत आप कर सकते हो। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, जब भी आप गुड़ाई करते हो, पहली गुड़ाई करते हो तो 1 नाइट्रोजन की डोज आप डालो, दूसरी गुड़ाई करते हो तो 1 नाइट्रोजन की जो स्प्रिट डोज है वो आप और डालो, ताकि खरपतवार को पोषक तत्व ना मिले और फसल को मिले और फसल जल्दी अपने जो है ग्रोथ पकड़ ले। तो इस तरह से आप गुड़ाई कर सकते हो। साथ में हम रसायन की बात करें तो जैसे आप बुआई करे हो तो 2 तरह से आप जो है खरपतवार नाशियों का प्रयोग कर सकते हो। पहला तो है प्री इमरजेंस, दूसरा है पोस्ट इमरजेंस। तो प्री इमरजेंस के अंदर पेंडामेथिलीन है 30 EC, जो सबसे कारगर जो खरपतवार नाशी, लगभग सभी फसलों के लिए ये कारगर है। ये चौड़ी पत्ते वाले, संकरी पत्ते वाले दोनों प्रकार के जो खरपतवार उनके लिए उपयोगी है। लगभग 1 किलोग्राम सक्रिय उत्पाद 1 हेक्टेयर यानी 50 नाली जमीन के लिए पर्याप्त रहता है। तो आप इस तरह से आप प्रति नाली जितना अपना क्षेत्र आपका जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ये तो हो गया प्री इमरजेंस, यानी कि आपकी जो फसल है उसको लगभग 20 से 25 दिन तक ये खरपतवार नहीं आने देगा। उसके बाद क्या है कि आपको लगभग 25 दिन बाद में पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड है, जैसे कि 20 बार सोडियम है, उसकी जो मात्रा है लगभग 20 से 25 ग्राम सक्रिय उत्पाद 1 हेक्टेयर के अंदर लगभग 350 लीटर पानी के अंदर आप मिला के उसको 1 हेक्टेयर जमीन के लिए, नहीं कि 1 नाली के लिए, आप उस हिसाब से आप अपनी नाली का अपना जो क्षेत्र

0: उस हिसाब से आप इसको प्रयोग में लेते हुए 25 से 30 दिन बाद आप प्रयोग में लेंगे तो आपके लगभग 40 से 45 दिन तक कोई किसी तरह का खरपतवार नहीं आएगा और आपकी जो फसल है जो खरपतवार रहित रहेगी। इस तरह से आप जो खरपतवार का प्रबंधन आप कर सकते हो।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने बात बताई एक प्री इमरजेंस और एक पोस्ट इमरजेंस, तो जैसे हमारे किसान भाई सुन रहे हैं तो प्री इमरजेंस का मतलब भी उनको बताइए और पोस्ट इमरजेंस का क्या मतलब?
0: जी प्री इमरजेंस का मतलब है कि आज आपने बुआई की बुआई के लगभग 1 से 3 दिन के बीच के अंदर, यानी कि आपने बीज डाला, बीज का अंकुरण होने से पूर्व में आपको खरपतवारनाशी का प्रयोग में डालना। एक बात का और ध्यान रखना, बीज की गहराई सही होनी चाहिए वरना प्री इमरजेंस जो खरपतवारनाशी आपकी फसल का अंकुरण को थोड़ा प्रभावित कर सकता है, तो आपको 1 से 3 दिन उससे ज्यादा नहीं लेना है। तो ये प्री इमरजेंस में, पोस्ट इमरजेंस मतलब कि खरपतवार निकल गया अब कब डाले, तो यानी कि मैंने बोला कि पोस्ट इमरजेंस यानी 25 से 30 दिन के बाद में, यानी कि फसल लगने के 25 से 30 दिन के बाद के अंदर आपको वो डालना है।
1: जी, जब खरपतवार निकल जाए।
0: जी
1: जी डॉक्टर साहब, DSR विधि में पोषक तत्व का प्रबंधन किसान भाई किस तरह से करेंगे?
0: अच्छा, ये बहुत ही मुख्य चीज आपने बोली। पहाड़ों में किसान भाई क्या करते हैं कि जो आपकी जो खाद है उसकी उससे आप जितने भी पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं, पर अन्य जो पोषक तत्वों के साथ साथ मैं एक मुख्य बात बताना चाहूँगा कि डाइजेस्टिव राइस के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि आयरन, उसकी कमी देखने को मिलती है। तो उसके लिए आप जो है जो आपका जो फेरस सल्फेट है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से आप या तो अप्लाई करो, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो लगभग 25 दिन और एक 40 से 45 दिन यानी कि 2 बार आप उसका 0.5% का आप स्प्रे आप उसमें कर सकते हो ताकि उस तरह का कमी का प्रभाव ना आए। साथ में आप हम नत्रजन की बात करें तो नत्रजन लगभग 80 से 100 किलोग्राम नत्रजन 1 हेक्टेयर यानी कि लगभग 1 किलोग्राम जो आपका जो नाइट्रोजन है 1 नाली जमीन के लिए पर्याप्त है। इसी तरह से फॉस्फोरस लगभग 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सफिशियंट होता है। तो इस तरह से आप पोषक तत्वों का प्रबंधन आप कर सकते हो।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल चर्चा चल रही है कि संतुलित उर्वरक प्रबंधन की, हमारी जो केंद्र सरकार भी इस बात पर जोर दे रही है, तो संतुलित उर्वरक प्रबंधन का जो है प्रयोग हम किस तरह से करें?
0: अभी सरकार का अभियान चल रहा है कि बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर यानी कि आप जो खाद यूज कर रहे हो उपयोग कर रहे हो उसका सही से उपयोग कैसे करना है। तो पहाड़ों में क्या है कि पहाड़ों में बहुत कम उपयोग करते हैं और प्लेन्स में बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, तो इसका मूल उद्देश्य ये है कि आप संतुलित मात्रा में जब भी आप अच्छी किस्म लेते हो, अच्छा प्रबंधन करते हो और पोषक तत्वों का प्रबंधन आप सही से नहीं करोगे तो फसल की उपज आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपकी आपकी जमीन का जो पोषक तत्वों का मान कितना है, तो आप जमीन की टेस्टिंग कराओ, मिट्टी की आप सही तरीके से जांच कराओ, मिट्टी में पोषक तत्वों का मान कितना है और आप कौन सी फसल ले रहे हो उसकी क्या उसकी जो डिमांड है, उसके आधार पर आप जो कार्बनिक खाद और अकार्बनिक खाद दोनों का मिला के जिसको हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बोलते हैं, तो इस तरह से आप प्रबंध करें ताकि पोषक तत्व की ज्यादा दक्षता मिले और उपज ज्यादा मिले, इस तरह से आप कर सकते हैं।
1: जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज आपने हमारे किसान भाई बहनों को जो है धान की सीधी बुआई तकनीक की क्या उपयोगिता है इस संबंध में पूरी विस्तृत जानकारी दी। हमारे किसान भाई और भी जानकारी ले सकते हैं इस संबंध में, वे हमें पत्र भी लिख सकते हैं, तो हमारा पता नोट कीजिए, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अल्मोड़ा, पिन संख्या 2636601। इसके अतिरिक्त आप हमें हमारे निःशुल्क फोन संख्या 1800-1803-111 पर प्रातः 9 बजे से शाम 5:30 तक हमें फोन करके संपर्क कर सकते हैं।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:30 होने वाले हैं। अब कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार थोड़ी देर में हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

राजधानी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों का दगड़, मी गीता भंडारी। पहली मुख्य समाचार। राज्य

0: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंगल लैंसडोन में सैनिकों और पूर्व सैनिकों को उत्साहवर्धन करो, वार मेमोरियल में शहीदों के श्रद्धांजलि अर्पित कर विकास योजनाओं की समीक्षा करी, नई टिहरी में बहुदेशीय विधिक सेवा और जागरूकता शिविरों का आयोजन, आमजन के निःशुल्क कानूनी सहायता और अलग अलग सरकारी सेवाओं की जानकारी दी गई, अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में अवैध रूपल संचालित हार्ट मिक्सिंग प्लांट में प्रशासनिक कार्रवाई, कई अनियमितताएं मिलने के बाद प्लांट के सील करो, और राज्य के अलग अलग हिस्सों में भूल हल्क द्योग संभावना और कैके अंधड़क चेतावनी। अब समाचार विस्तारल। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंगल अपन दुई दिनों के लैंसडोन दौरे के दौरान आज सैनिक सम्मेलन में शामिल होवे सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनर परिवार वालों का उत्साहवर्धन करो। यह बीच उनुलवार मेमोरियल पहुंच वीर शहीदों के श्रद्धांजलि अर्पित कर और वीर श्रेणियों के सम्मानित करो। राज्यपाल गढ़वाल राइफल्स वीरता और राष्ट्र सेवा भावना को सराहना कर वीर कौ की रेजिमेंट देशक गौरव और शौर्य पछाण रही छू। उन्होंने कौ की उत्तराखंड वीर सैनिकों की भूमि छू और यहाँ के जवानों में राष्ट्र सेवा भावना हमेशा रह छ। यह बीच गढ़वाल राइफल्स केंद्रक बेहतरीन योगदानक लिजी विशेष ट्रॉफी ले दी गई। अपन दुई दिनों कार्यक्रमक दौरान राज्यपाल जिला में चल रही अलग अलग विकास योजनाओं के लिए समीक्षा करी। बैठक में पर्यटन, सड़क, पेयजल, स्वरोजगार और दूसर विकास कामों की जानकारी दी गई। उन्होंने अधिकारियों के लैंसडोन में आधुनिक पुस्तकालय विकसितकरण और पर्यटनक दगर पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देने निर्देश दिए। नई टिहरी में आज उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीतालक तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल द्वारा बहुउद्देशीय विधिक सेवा और जागरूकता शिविरक आयोजन करी गई। नगर पालिका परिषद सभागार में आयोजित यह शिविरक आयोजन के निःशुल्क कानूनी सहायता, सरकारी योजनाओं की जानकारी और अलग अलग प्रमाण पत्रों की सुविधा मिलन। एक रिपोर्ट।
1: कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति व राज्य विविध सेवा प्राधिकरण कार्यपालक अध्यक्ष मनोज कुमार तिवारी व विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति आलोक मेहरा उपस्थित रही। यो मौके पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी को कि शिविर का उद्देश्य न्याय के समाजक अंतिम जानी तक पुजोर छू। उनको की विविध सेवाएं केवल न्यायालयों जाने सीमित न बल्कि घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद और श्रम विवाद जस मामलों में ले निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा। उन लोगों थे अपने अधिकार और कर्तव्यों प्रति जागरूक पूर्णक आह्वान करो। शिविर में राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, शिक्षा, पुलिस और पशुपालन दगड़ कई विभागों ठ्याल लगाबेर लोगों थे समस्याओं का समाधान करो। यो दौरान आय, जाति, दिव्यांग व जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ले बनाई गयी, जबकि स्वास्थ्य विभाग निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और दवा वितरण करो। आकाशवाणी देहरादून लीजिए समाचार कक्ष बैठे ममता पांडे।
0: बागेश्वर जिला सुंदर ढूंगा घाटी में स्थित 15,092 फीट ऊंच कनकाटा दर्रा के युवा ट्रैकर्स एक टीम तीन दिनों में सफलतापूर्वक पूर कर दी। यह दर्रा सुंदर ढूंगा घाटी कठिन और रोमांचक ट्रैकों में मानी जा। दुर्गम पहाड़ी बाटों, ह्योल ढकी ट्रैक और ऊंचाई में ऑक्सीजनजनक कमी जस चुनौतियों के बावजूद ले दलक यह अभियान पूर करो। ट्रैक दौरान खराब मौसम ले मुश्किल बढ़ाई तबले टीमल संयम और आपसी तालमेल यात्रा पूरी करो। माउंटेन गाइड और अभियान दलक लीडर जीतू दानुल बता कि सुंदर ढूंगा प्राकृतिक सुंदरता यह ट्रैक खास बनू। उन्होंने कहा कि यह अभियान जवानों के साहसिक पर्यटनक तरफा लुभुणक दगड़ ही पर्वतीय क्षेत्रों के पछाण दिलू।
2: ये जो कनकाटा पास ट्रैक था, ये टोटल चार लोग थे, इसमें तीन लोगों ने कनकाटा पास पूरा किया और एक जो मेंबर थे हमारे वो सुखराम से वापस आए, उसी रूट से सामान लेकर वापस आए, वो बैकअप टीम में थे। और इसमें पूरी सेफ्टी के साथ पूरा सेफ्टी गियर हमारे पास उपलब्ध था और इसको हमें पूरा करने में जातुली तीन दिन लगे। 5 तारीख से ये शुरू किया था हमने और 7 तारीख को कम्प्लीट हो गया था ये हमारा।
0: उद्योग विभाग राज्य कर्मचारी संघक पदाधिकारियों आज ग्राम्य विकास, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्राम उद्योग मंत्री भरत सिंह चौधरी दगड़ देहरादून में शिष्टाचार भेंट करी। यह दौरान कर्मचारी प्रतिनिधियों बदली, पदोन्नति, मृतक आश्रित नियुक्ति और संविदा कर्मचारियों से जुड़ी अलग अलग मामलों को लेकर श्री चौधरी को मांग पत्र सौंपी। मंत्री भरत सिंह चौधरी कर्मचारियों की समस्याओं और सुझावों के

0: मानल सुनबीर कह कि सभ्य मामलों नीतिगत और न्यायिक हिसाबल समाधान करी जल। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के समस्याओं के जल्द सुलझौनक निर्देश ले दी। श्री चौधरी कह कि कर्मचारी कैल विभाग कार्यप्रणाली खास हिस्सा हुनी और उनर मुश्किलक बखत पर सुलझुण सरकारक पहली प्राथमिकता छू। अलवर जिलाक सल्ट क्षेत्र में झीमार में अवैध रूपल चलने हाट मिक्सिंग प्लांट पर प्रशासन ठूल कार्रवाई कर बेर प्लांट के सील करहाली। संयुक्त निरीक्षण टीमें जांचक बखत कतु के गंभीर कमी पाई, एक बाद कार्रवाई करी गई। बताई जा कि पिछिल करीब द्वि महीनों बटी प्लांटक संचालन बिना जरूरी अनुमति करी जानो छी। स्थानीय लोगों पर्यावरण और सुरक्षा के खतरा बताए और एक शिकायत प्रशासन थे करी। मामला मुख्यमंत्री पोर्टल तक पहुंचनक बाद प्रशासन खनन विभाग और संबंधित अधिकारियों टीमल मौक पर जयबेर निरीक्षण करो। जांच में सामणी में आई कि प्लांटक पास संचालनक जरूरी इजाजत नी छी। दगड़ ही चिमनी निर्धारित मानकों से कम ऊंचाई पर पाई गई और परिसरक चारों तरफ नियमानुसार बाड़ नी लगाई गई छी। खनन अधिकारी राहुल नेगील बता कि कतु के नियमक उल्लंघन के देखबेर प्रशासन प्लांट के तुरंत प्रभाव से सील कर दे।
1: मौके स्थल पर पाया गया कि इनके द्वारा सीटीओ और सीडीए की परमिशन नहीं ली गई थी और पोर्टल भी नहीं खोला गया है खनन विभाग से, जिस कारण से इसको अवैध मानते हुए इसको मौके स्थल पर सीज किया गया। ये मगरेतर कार्रवाई हेतु एसडीएम साहब पर इसमें स्थित रिपोर्ट दी जाएगी। तब तक प्लांट बंद रहेगा।
0: उत्तराखंड में भूलबटी मौसम एक बारी फिर से बदलनक आसार छिन। विभागल गड़गड़ाट चाल चमकण और हाव बयाव और दियो को लेबर चेतावनी जारी करी छू। कतुके जागों में हल्क से मध्यम बरखा है सके वे मैदानी जिलों में कैके हल्की बरखा गरज कदगड़ बौछार पड़ने की संभावना छू। 4,500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी है सके। विभागल पर्वतीय जिलों में चाल चमकण और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तेज हाव बयाव चलण अनुमान जताई छू। वे 12 और 13 मई को मौसम गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने की संभावना छू। उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग बागेश्वर और पिथौरगढ़ जिलों में कै कै तेज बरखा डावपड़न और 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हवा चलने की संभावना जताई छू। मौसम विभागल चारधाम यात्रा में जाने वाले यात्रियों और पर्वतीय क्षेत्रों में रोने वाले मैसों के सतर्कता से रोने की सलाह दी। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और चट्टान गिरने की संभावना जताई छू।
2: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताज़ा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावतल पौड़ी जिला सतपुली स्थित खैरासैण में नयू राजकीय महाविद्यालय भवनक उद्घाटन करो। येल छात्र छात्राओं को अपनी क्षेत्र में भल उच्च शिक्षा सुविधाएं मिल सकल। सतपाल महाराज को कि नई सुविधाओं से सुजसित यह भवन विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेल। वे डॉक्टर धन सिंह रावतल को कि सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम करने तब वे ग्रामीण क्षेत्रों के जवानों को ले आधुनिक शिक्षा का लाभ मिल सकल। एक बात सतपाल महाराज सतपुली झील निर्माण कामों का निरीक्षण करो। अधिकारियों के गुणवत्ता दगड़ समयबद्ध तरीका से काम पूर्ण करने का निर्देश दी। उन्होंने कहा कि करीब 56 करोड़ डबलोक लागत से बनने यह झील पूर्व होने से क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार के बढ़ावा मिलल। चंपावत जिलाक रोनीवाल पशुपालकों के आईटीबीपी के दगड़ जुड़बेर स्वरोजगार को ठूल मौक मिलो। आईटीबीपी और पशुपालन विभागक बीच है ही समझौता से वहां रोनीवाल पशुपालकों 36वीं बटालियन आईटीबीपी लोहाघाट के 376 किलो जिंदा कुखड़ों की आपूर्ति करी। जिलाधिकारी मनीष कुमार निर्देश में पशुपालन विभागक टीमल मौक में पहुंचबेर कुखड़ों के स्वास्थ्य और गुणवत्ता की जांच करी। आपूर्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाई धरण लीजिए आईटीबीपी अधिकारियों और विजिलेंस टीमें निरीक्षण करो। पशुपालन विभाग के अनुसार यह पहल से स्थानीय पशुपालकों के अपने उत्पादों के लिए सुनिश्चित बाजार मिलना है और ग्रामीणों की आजीविका के बढ़ावा मिलना है। अंत में मुख्य समाचार एक बारी फिर। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह लैंसडाउन में सैनिक और पूर्व सैनिकों का उत्साहवर्धन करो। वार मेमोरियल में शहीदों के श्रद्धा

अंजलि अर्पित कर विकास योजनाओं की समीक्षा करी। नई टिहरी में बहुउद्देशीय विधिक सेवा और जागरूकता शिविर का आयोजन, आमजन के निःशुल्क कानूनी सहायता और अलग अलग सरकारी सेवाओं की जानकारी दी गई। अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हार्ट मिक्सिंग प्लांट में प्रशासन ने कार्रवाई, कई अनियमितता मिलन पर प्लांट को सील करो। और राज्य के अलग अलग हिस्सों में भूल हल्क उद्योग संभावना और कह अंधड़क चेतावनी। एक दगड़ कुमाऊनी में समाचार समाप्त होनी। नमस्कार।

0: कार्रवाई, कई अनियमितता मिलन पर प्लांट को सील करो और राज्य अलग अलग हिस्सों में भूल हल्क उद्योग संभावना और कह के अंधड़क चेतावनी। एक दगड़ कुमाऊनी में समाचार समाप्त होनी। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: शुद्धो कार्यक्रम में आइए पहले सुनते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा, सलील चौधरी का संगीतबद्ध, फिल्म छाया का गीत। इस गीत को गाया लता मंगेशकर और मुकेश ने।

0: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
1: छोटी सी बात, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म में यशोदास और आशा भोसले को। गीत रचना योगेश की है और संगीत रचना सलील चौधरी की है।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस। आइए पहले सुनते हैं गुलाम अली को।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से लेके जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर आज हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ विजय लोकपल्ली। विजय, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीता। आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू डांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। और एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता कल से गांधीनगर में शुरू होगी। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 4 गेंद शेष रहते ही 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के लिए उर्विल पटेल ने 23 गेंदों में ताबड़तोड़ 65 रन की पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया, जबकि शहबाज अहमद और दिग्विजय राठी ने लखनऊ के लिए 2-2 विकेट लिए। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए थे। लखनऊ के लिए जॉश इंग्लिश ने 33 गेंदों में 85 रन की पारी खेली। चेन्नई की ओर से जेमी ओवर्टन ने 3 विकेट लिए। वहीं रायपुर में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच इस समय मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 11 ओवर में 3 विकेट खोकर 91 रन बना लिए थे। बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। तो पहले मैच की बात की जाए, चेन्नई वापस लगता है कमबैक के मूड में नजर आ रही है। विजय,
1: हाँ जी, इसमें अगर आप देखें, हिस्ट्री उठा के देखिए, चेन्नई की खासियत है कि जब आपको लगता है कि ये टीम गई, वो कुछ ऐसा पलटती है टूर्नामेंट का रास्ता कि कंटेंडर हो जाती है। और यहाँ पे भी मुझे लगता है कि जिस ढंग से उन्होंने वापसी की है, उनके प्लेयर्स फॉर्म में आ रहे हैं, और ख़ास करके उर्विल जैसे अगर खिलाड़ी हैं उनके पास, जो मतलब किसी भी क्षण अपने दम पे मैच बदल सकते हैं, तो चेन्नई को किसी कभी भी आप रूल आउट नहीं कर सकते।
0: जी बिल्कुल, आपने उर्विल का जिक्र किया और आज के मैच के स्टार कह सकते हैं, युवा खिलाड़ी है, लेकिन जो छक्के लगाए हैं आज, जो गेंद को बाउंड्री पार फेंका है, क्या कहेंगे इस तारीफ के लिए, इस खिलाड़ी के लिए।
1: एक टाइम था जब मैं 14-15 साल का था, मैं सलीम दुर्रानी जी आते थे तो देखने जाता था, एक छक्का देखने को मिल जाएगा। यहाँ तो एक ही खिलाड़ी 8-8 छक्के मार रहा है। आप आज गेम बदल गया है, उनका टेक्निक बदल गया है, और उर्विल जो है वो मारते दम से हैं। मैं हाँ, क्योंकि गुजरात में बड़ौदा में उनका बहुत रेपुटेशन है बड़े बड़े छक्के मारने का, और आज दिखाई दिया उन्होंने बड़े स्टेज पे कि कितने प्रतिभाशाली खिलाड़ी है वो।
0: जी बिल्कुल, अपनी प्रतिभा दिखाई। अगर दूसरे मुकाबले की बात कर ली जाए जो इस समय खेला जा रहा है, जहां आरसीबी और मुंबई इंडियंस आमने सामने है, मुंबई इंडियंस के लिए

0: होने के लिए बहुत कुछ इस प्रतियोगिता में बचा नहीं है। टीम 9वें स्थान पर है, और अगर आरसीबी की बात की जाए तो टॉप चार में बने रहना इस समय आईपीएल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है। रोज टेबल बदलती है, कभी आप ऊपर कभी आप नीचे, चौथे नंबर पर है आरसीबी। कितना सेफ महसूस कर रही होगी अपने आप को
1: आरसीबी का? सबसे मेन ये है कि उनको ना वो कॉन्फिडेंस है अब के जो है वो डेफिनेटली प्लेऑफ में जगह बनाएंगे, और उनके पास वो क्षमता भी है, खिलाड़ी भी हैं। ये फैक्ट है कि विराट के होने से टीम को बहुत फर्क पड़ता है। और जहाँ तक मुंबई की बात है, वो तो बिल्कुल फिसलते चले गए हैं। मेरे ख्याल से अब तो हम कह सकते हैं कि वो तो आउट ऑफ रेकनिंग है, और वही हाल लखनऊ का है। लखनऊ का भी कोई टैक्टिक्स समझ में नहीं आते हैं, और ख़ास करके शक्ति आज जब जो हमने देखा कप्तानी भी कोई मतलब थोड़ी निराशाजनक थी।
0: जी बिल्कुल, एक जो आपकी अंक तालिका में स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं आपके प्रदर्शन में नजर आती है, आपके डगआउट में नजर आती है, और ऐसा ही शायद इन टीमों के साथ भी देखने को मिल रहा है। और अब क्रिकेट के बाद बात करते हैं उन निशानों की जिन्होंने भारत के लिए आज पदकों की बारिश की। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहत की तिकड़ी ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया।
2: Kumari on the line.
3: Nine.
2: Kumari into the nine. And that is a very impressive performance from India here in Shanghai.
4: भारतीय महिला रिकर्व टीम ने आज फाइनल मुकाबले में शानदार खेल कौशल और संयम का प्रदर्शन किया। भारतीय तिकड़ी ने उतार चढ़ाव भरे फाइनल मुकाबले में शूट ऑफ में चीन को 5-4 से हराकर 2021 के बाद तीरंदाजी विश्व कप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। 4 सेट के मुकाबले के बराबरी पर समाप्त होने के बाद मैच शूट ऑफ में चला गया। निर्णायक क्षण में जब दबाव चरम पर था, तब अनुभवी दीपिका कुमारी ने दबाव के बीच इस यादगार जीत को पक्का करने की जिम्मेदारी संभाली और शूट ऑफ के आखिरी तीर पर महत्वपूर्ण 9 अंक हासिल किए। विश्व कप में यह भारत का दूसरा पदक है। इससे पहले कल प्रवीण जाधव ने कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश के पदकों का खाता खोला। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस उपलब्धि पर भारतीय टीम को बधाई दी है। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: विजय, अगर ये कहा जाए कि तीरंदाजी में विश्व कप के पहले चरण में और दूसरे चरण में भारत की साख बचाती हुई नजर आई। भारत की बेटियां, पहली बार भी एक ही पदक था जो मैक्सिको में खेला गया पहला चरण, और आज दीपिका का वो 9 पॉइंटर, क्या कहेंगे इस प्रदर्शन पे, क्योंकि जो सेमीफाइनल में इस टीम ने करिश्मा किया शायद उसको मेजबान चीन को हरा करके आज दोहराया है।
1: हाँ, जो आप बता रहे थे कि कोरिया को हराया, कोरिया और चाइना को एक ही टूर्नामेंट में बैक टू बैक आपने हरा के रिकव, मैं कहूँगा मुझे सबसे बड़ी इस जीत में ये अच्छा लगा कि दीपिका जो है उनका जो टेम्परामेंट है वो उन्होंने दिखाया यहाँ पे, और कितना प्रेशर होगा आप समझिए। उनको पता है कि इतने 9 पॉइंट लेने हैं इस शॉट में, और उन्होंने लिए वहाँ से जो है, और वो भी शूट ऑफ बहुत कठिन होता है शक्ति। और यहाँ पे मैं कहूँगा दीपिका के लिए मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि पीछे जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही थी उनकी बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, लेकिन उन्होंने अच्छी वापसी की है। और एशियन गेम्स वाले ईयर में, इस साल एशियन गेम्स भी हैं, तो इसमें आप आर्चरी से बड़ी उम्मीदें हैं।
0: जी बिल्कुल, आर्चरी से उम्मीदें होंगी जहाँ पे एशियन गेम्स भी हैं, और कुछ वर्ष बाद जब ओलंपिक में उतरेंगे तो दीपिका शायद उस मेडल की कसक को भी पूरा करने में सफल साबित हों इसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए।
1: हाँ, दीपिका से उम्मीद है क्योंकि वो उस लायक हैं, मतलब वर्ल्ड लेवल की आर्चर हैं, और ऐसा कुछ कमाल करेंगी तो उनके लिए अच्छा है, उनके करियर के लिए भी अच्छा है।
0: जी बिल्कुल। और अब तीरंदाजी के बाद बात करते हैं निशानेबाजी की, जहां कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू डांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिश्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने एकदम सटीक लगाए। दूसरे स्थान पर रही जहां इटली के साथ ये टीम थी, लेकिन क्योंकि क्वालिफिकेशन में हम इटली से पीछे थे इसलिए इस बार ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा, और चीनी ताइपे ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, इटली ने रजत पदक जीता। तो सबसे अच्छी चीज़ तो यह है कि ये स्पर्धा अब ओलंपिक खेलों का भी हिस्सा है, तो ऐसे में हमारी दावेदारी जो है नज़र सब खेलों की, खिलाड़ियों की ओलंपिक जैसे आयोजनों पे होती है, तो एक अच्छा संकेत कि खिलाड़ी आ रहे हैं और मेडल्स लेकर के आ रहे हैं, पहला मेडल है इस जोड़ी का।
1: जी हाँ, और अगर आप देखिए ये भी वही स्पोर्ट है जिसमें भारत ने हमेशा अच्छा किया है, और विश्व स्तर पर कहें या एशियन स्तर पर कहें अच्छा परफॉर्म करते हैं, और लगातार आपको टैलेंट मिलता जा रहा है।
0: जी बिल्कुल, अब तक इंडिविजुअल्स में हम देखते थे कि लगातार भारत के मेडल्स आ रहे हैं।

0: थे आई एस एस एफ की प्रतियोगिताओं में, लेकिन अब मिक्स्ड में और टीम लेवल पे भी भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मिस्र के गीजा में विश्व स्क्वाश प्रतियोगिता के दूसरे दौर में आज वीर चोटरानी का मुकाबला मिस्र के मुस्तफा असल से होगा, जो कि विश्व नंबर एक खिलाड़ी हैं वर्तमान में। वीर चोटरानी ने पहले राउंड में हमवतन अभय सिंह को हराया था, और अगर बाकी खिलाड़ियों की बात की जाए तो रमित टंडन और सेंथिल कुमार का सफर भी समाप्त हो चुका है इस अभियान, इस प्रतियोगिता से, और अभय सिंह भी बाहर हो चुके हैं। तो एकमात्र चुनौती है, और उम्मीद होगी विजय की आज कुछ बेहतर करें और अगले दौर में पहुंचें।
1: हाँ, उन पे उम्मीदें तो रहेंगी, क्योंकि अभय को जो है आप हरा के आगे पहुंचे हैं, और चोटरानी भी ऐसा नहीं है कि कोई जो है मंझे खिलाड़ी नहीं है, पर यही है कि जब तक आप एक खिताब नहीं जीतेंगे आप उस रैंकिंग में नहीं आते हैं।
0: जी बिल्कुल, अपनी पहचान बनाने के लिए वो खिताब की दरकार होगी। अभय को हरा करके हौसला मिला होगा और उम्मीद होगी कि खिताब की दौड़ में भी एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आए। गुजरात के गांधीनगर में कल से एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। भारत 44 वर्षों में पहली बार एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। एक रिपोर्ट।
2: चैंपियनशिप के लिए 28 देशों के लगभग 180 एथलीटों ने पंजीकरण कराया है। यह प्रतियोगिता आगामी राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के लिए योग्यता मार्ग में योगदान देने के कारण महत्वपूर्ण है। ओलंपिक और विश्व चैंपियनों से सजी स्टार खिलाड़ियों की सूची में कई ओलंपिक पदक विजेता और विश्व चैंपियन इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। पिछले वर्ष इस प्रतियोगिता में चीन 31 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष पर था। इस आयोजन में उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान के दल भी हिस्सा लेंगे, जबकि भारत, चीन और श्रीलंका चैंपियनशिप में 16-16 भारोत्तोलकों के साथ सबसे बड़ी टीम उतारेगा। भारत को घरेलू मैदान पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। भारतीय टीम में राष्ट्रमंडल खेलों की विजेता विंध्या रानी देवी और अजीत नारायण, निरूपमा देवी, लवप्रीत सिंह, बेदा बरात भराली जैसे बड़े भारोत्तोलक शामिल हैं। शेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: काफी दिग्गज खिलाड़ियों से सजी हुई भारतीय टीम है, लेकिन शायद एक खिलाड़ी की कमी इस टीम को खले। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू, इसके पहले गुजरात में अच्छा प्रदर्शन दिया है, लेकिन भारत को शायद उनकी कमी खलती भी नजर आएगी।
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनका इश्यू है इंजरी, वो बार बार चोटिल हो जाती हैं, तो उससे वो उनके प्रिपरेशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आपके आपके दिमाग में बैठ जाए कि चोटिल होने का डर, उसमें फिर आपकी परफॉर्मेंस भी लड़खड़ाती है।
0: जी बिल्कुल, और अगर इस आयोजन से इतर एक बात और भी देखा जाए, पहलू की गुजरात मेज़बानी कर रहा है, 44 साल में पहली बार भारत के पास मेज़बानी होगी, और गुजरात यहां से हर प्रतियोगिता दर प्रतियोगिता अपनी उस अभिभावकता को भी साबित करना चाहेगा, क्योंकि अब आपको राष्ट्रमंडल खेल जैसे बड़े आयोजन की मेजबानी करनी है। कितना बड़ा एक अवसर, या फिर कह सकते हैं कि एक वार्म अप की तरह ये आयोजन होने वाले हैं इस प्रदेश के लिए।
1: बिल्कुल, वार्म अप आपने सही शब्द इस्तेमाल किया है यहाँ पे, और मैं ये कहूँगा कि कभी भी आप देखें भारत जब मेजबानी करता है ना, सबसे आगे ही रहता है, कभी कमियां नहीं रहती है। इंटरनेशनल लेवल के बहुत बहुत टूर्नामेंट्स कराए हैं, और गुजरात तो बहुत बड़ा हब उभर के आ रहा है। अगर आप देखें कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी जो है तैयारी होगी, और आगे आप ओलंपिक का दावा कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी अगर आपको मिला तो वो भी सब सब कहते हैं कि बेस्ट होगा गुजरात।

0: रहता है ना, सबसे आगे ही रहता है, कभी कमियां नहीं रहती है। इंटरनेशनल लेवल के बहुत बहुत टूर्नामेंट्स कराए हैं और गुजरात तो बहुत बड़ा हब उभर के आ रहा है। अगर आप देखें कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी जो है तैयारी होगी, और आगे आप ओलंपिक का दावा कर रहे हैं तो वहाँ पे भी अगर आपको मिला तो वो भी सब कहते हैं कि बेस्ट होगा गुजरात उसको होस्ट करने के लिए। सो ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक प्रिपरेशन है।
1: जी बिल्कुल, एक तैयारियों के रूप में इसको आंका जा सकता है, जो कि गुजरात ही दावेदारी कर रहा है ओलंपिक के लिए, तो कितना तैयार है 2036 की इस दौड़ के लिए या आजमाने के लिए, तमाम इस प्रकार के तमाम जो टूर्नामेंट हैं आपके लिए काफी सहायता करते हुए नजर आएंगे। फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई खिलाड़ियों के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी भागीदारी की। इस बार संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना के सहयोग से ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी प्रिया मलिक और दीक्षा मलिक ने युवाओं को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। दीक्षा मलिक ने कहा कि हर इंसान को संडे ऑन साइकिल का हिस्सा बनना चाहिए।
2: मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सब लोगों को इतना एनर्जी में देख के, और बड़ा अच्छा लगा कि लोग इतना एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ रह के इतना अच्छे से खेलते हैं, साइकिलिंग करते हुए।
1: तो एक अभियान जो धीरे धीरे पूरे जन आंदोलन का रूप ले रहा है। विजय, रोज संडे के दिन लोग अपनी छुट्टी के सुबह के आलस को त्याग करके उतरते हैं, साइकिल चलाते हैं और एक फिटनेस का संदेश और साथ ही साथ एक संदेश एक अच्छे पर्यावरण के लिए।
0: बहुत ही लोकप्रिय भी है, और आप देखिए दिल्ली में बहुत सारे अब साइकिलिंग क्लब्स उभर के आए हैं, वो इस कारण से कि सबको लगता है कि एक संडे के दिन कम से कम आप सुबह जाके साइकिलिंग करेंगे, आपकी एक्सरसाइज भी होगी और एक पार्टिसिपेशन होता है, मास पार्टिसिपेशन, जहाँ पे नए नए दोस्त आप बनाते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा वेंचर है।
1: जी बिल्कुल, और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी फुटबॉल की, जहाँ पे इंडियन सुपर लीग में इस समय नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और चेन्नई एफसी के बीच मुकाबला जारी है, जहाँ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 2-0 की बढ़त बना ली है और इसके पहले केरला ब्लास्टर्स ने मोहम्मदन क्लब को 3-1 से हराया है। तो फुटबॉल भी भारत में, अगर लीग खेलों की बात की जाए, आईपीएल ने एक पूरी नज़ीर पेश की हमारे सामने कि किस तरह लीगों में आपके लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर मौजूद है, एक अच्छा पूल मिलता है, एक अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। फुटबॉल में ये लीग काफी सार्थक साबित होती हुई नजर आ रही है अब तक।
0: जी हाँ, और ये तो फुटबॉल का साल है, अब सारी नजरें एक महीने में अमेरिका की तरफ होंगी जब वर्ल्ड कप विश्व कप फुटबॉल होगा। और ये आपने बात कही, आईपीएल है या आईसीएल आईएसएल है, ये सब टूर्नामेंट्स और ये लीग बहुत बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है, जो आपको एक बुनियादी स्तर पर खिलाड़ियों को एक अच्छा पूल प्रदान करने में काफी सहायक साबित होती है। चलते चलते एक बार स्कोर बोर्ड पे वापस नजर घुमा लेते हैं, जहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। मुंबई इंडियंस ने इस समय 14 ओवर में 4 विकेट खोकर 125 रन बना लिए हैं और तिलक वर्मा 33 गेंदों में 43 रन बना करके अभी भी डटे हुए हैं, तो टीम के लिए एक छोर भी संभाले हुए हैं और रन की गति को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। विजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन

0: योजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबिल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह

0: आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
0: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन्द्र तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपुर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
3: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heat wave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees.

0: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for ₹10.99 lakh with a battery EMI of just ₹3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
1: और अब श्रोताओं आइए सुनते हैं मखदूम मोहिउद्दीन का लिखा और जयदेव का संगीतबद्ध फिल्म गमन का गीत। इस गीत को गाया छाया गांगुली ने।

0: और अब श्रोता ये सुनते हैं फरीदा खानम को।
1: आज जाने

तो इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं मेहंदी हसन को। कलाम ख्वाजा परवेज का है।

और अब श्रोताओ आइए सुनते हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह को कलाम कतील राजस्थानी का है।

और अब श्रोताओ सुगम संगीत कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं सोनू निगम को कलाम फैज़ अनवर का है।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। अब थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: बारहवीं राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में आपके लिए प्रस्तुत है विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वीणा रिसाइटल बाय विद्वान डी श्रीनिवास। Accompanying him on Mridangam is Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam, Shri M. Chandrakant.
0: Vidwan D. Srinivas, Telangana ke ek agrini Karnatak sangeetkar hain. Ek sangeet parampara wale parivar mein janme, Srinivas ne 7 saal ki umr mein apni maa Srimati D.L. Tulsi ke margdarshan mein veena siksha ka Shri Ganesh kiya. 9 saal ki umr tak ve ek baal pratibha ban chuke the. इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादी विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर ईमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत

0: के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
1: विद्वान डी श्रीनिवास, ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन फ्रॉम तेलंगाना, वॉज बॉर्न इन टू ए म्यूजिकल लीनिएज। ही बिगैन द आर्ट ऑफ वीणा एट द एज ऑफ 7 अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर श्रीमती डी एल तुलसी। बाय द एज ऑफ 9 ही वॉज ए चाइल्ड प्रोडिजी। The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top grade veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. E. Mani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar style plucking pushed the boundaries of veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
0: Aaj raat ke prasaran mein विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
1: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट विद्वान डी श्रीनिवास इज अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास ने अपने वीणा वादन की शुरुआत राग गौला में मैसूर वासुदेवाचार की एक रचना से कर रहे हैं जो आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास बिगिन्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार इन द राग गौला सेट टू आदि ताल।

0: अब आप राम स्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: Now you will listen to a composition of Ramaswamy Sivan in the rag Sarasangi set to Khanda Chapu Taal.

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे, जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल, विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदि ताल त्रिस्र गति।

0: था तन्या वर्तनम, जिसे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: That was Taniyavartanam played on mridangam by Sri Yashwant Hampiholi and on ghatam by Sri M. Chandrakant.
0: विद्वान डी श्रीनिवास अपने वीणा वादन का समापन सदाशिव ब्रह्मेंद्र की एक रचना से कर रहे हैं, जो राग अहिर भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास concludes his Veena recital with a composition of Sadashiva Brahmendra in the rag Ahir Bhairavi set to Aditaal.

0: इसके साथ ही आज की रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. He was accompanied on Mridangam by Sri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
4: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
3: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
4: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर

बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एम के स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: India is set to host the prestigious 2026 Asian Weightlifting Championships in Gandhinagar, Gujarat from tomorrow, marking the country's first time hosting the event in 44 years. The sporting event will conclude on the 17th of this month. Around 180 athletes from 28 countries will compete in one of Asia's biggest weightlifting events of the year. And that is the end of this news bulletin.
1: FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी स्टूडियो घड़ी के मुताबिक रात्रि के ठीक 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सायंकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। अपनी प्रातःकालीन सभा में कल प्रातः 5:55 पर हम फिर आपके समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।